मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 37 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर

0: किया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं समूह सौर में गाए मातृ वंदना से।

समूह स्वर में गाए इस देशभक्ति गीत के बाद अब प्रस्तुत है भजन। स्वर है आसित और हेमा का। जब मन श्रद्धा से भर जाता है तो हर घर मंदिर बन जाता है और हर स्वर भक्ति का दीप जला देता है। प्रभु को बुलाने के लिए बड़े आडंबर की नहीं बल्कि सच्चे मन और निर्मल भावों की आवश्यकता होती है। भक्ति, प्रेम और समर्पण से सजे इस सुंदर भजन का आइए आनंद लेते हैं।

जब थकने लगे, जब चारों ओर उलझने ही उलझने दिखाई दे, तब प्रभु का नाम ही वो सहारा है जो मन को शांति और आत्मा को नई ऊर्जा देता है।

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:20 हुए हैं। अब सुनिए चिंतन। आलेख है शैल दुआ का और स्वर है नारायण सिंह बघेल का।
1: जीवन क्या है, क्या है अस्तित्व मानव का? गौर से सोचें तो हमारा जीवन बहती हुई नदिया की तरह है, जो चलायमान है, ठहरती नहीं। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं को लेकर जन्म लेता है। जन्म से ही ईश्वर की कृपा उसके साथ रहती है। कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। न उनमें कोई कपट होता है, न छल होता है, न ही वे किसी को चोट और दुख पहुंचाते हैं। वे तो मासूम भोले ईश्वर के स्वरूप होते हैं। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मनुष्य में बुराइयां आती जाती हैं और वो ईश्वर से दूर होता

0: चला जाता है। सांसारिकता में मनुष्य स्वयं को खो देता है। वो अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाता है कि अध्यात्म उसे केवल साधु संतों की वाणी लगती है। ये सोच आती जा रही है कि अध्यात्म केवल बुजुर्गों के लिए है, इन सबका युवा जीवन में क्या काम। लेकिन मनुष्य ये नहीं समझता कि यदि युवा अवस्था में हम ईश्वर को भूल जाते हैं तो क्या वो हमारा साथ बुढ़ापे में देंगे। वैसे तो ईश्वर हर पल हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम उसे माने या ना माने। ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है। सब परमेश्वर की मर्जी से ही होता है। हमें अपने धर्म ग्रंथों से, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों न हो, उसे पढ़कर सुनकर कुछ सीखना चाहिए, न कि ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये सर्वविदित है। जब इस संबंध में शंका या संशय, अविश्वास की स्थिति अधिक क्रियायमान होती है, तभी ईश्वर से हमारी दूरी बढ़ती जाती है और हम विभिन्न रूपों से अपने को सफल बनाने का निरर्थक प्रयास करते रहते हैं, जिसका परिणाम नकारात्मक ही होता है। ये तो असंभव सा जान पड़ता है कि मिट्टी के बर्तन मिट्टी से अलग पहचान बनाने की कोशिश करें। तो क्या कहें, ये विषय विचारणीय है। आध्यात्म की अनुभूति सभी प्राणियों में समान रूप से निरंतर होती रहती है। स्वयं की खोज तो सभी कर रहे हैं, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से। हम क्षणिक संबंधों, क्षणिक वस्तुओं को अपना जानकर उससे आनंद मनाते हैं, जबकि हर पल साथ रहने वाला शरीर भी हमें अपना ही गुलाम बना देता है। हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाते। हमें महसूस भी नहीं होता कि हमने ये काम किया है। जब हमें सत्य की समझ आती है, तब तक जीवन का अंतिम पड़ाव आ जाता है और पश्चाताप के सिवाय कुछ हाथ नहीं लग पाता। ऐसी स्थिति का हमें पहले ही ज्ञात हो जाए तो शायद हम अपने जीवन में पूर्ण आनंद की अनुभूति के अधिकारी बन सकते हैं। हमारा इहलोक और परलोक भी सुधर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ये ज्ञान क्या हम अभी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, जब मनुष्य ध्यान या योग करता है तो उसकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ जाती हैं, परिस्थितियों से निपटने का साहस बढ़ जाता है। चाहे कैसे भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों, व्यक्ति उसका सामना आसानी से कर लेता है, अपने और अपने साथ रहने वालों को संभाल लेता है। आध्यात्म द्वारा व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है, उसके विचारों में नवीनता आती है। आध्यात्म अर्थात स्वयं का अध्ययन करना और अपने अंदर की बुराइयों को, दुर्बलताओं को, कमियों को पहचान कर उसे छोड़ देना या दूर करना और अपने गुणों का विकास करना ही अध्यात्म का मकसद होना चाहिए। एक संत ने इसे बताते हुए कहा था कि सभी अपने स्मरण करें कि सुबह अपनी आंखें खोलने से पहले हमारी जो चेतना सर्वप्रथम जगती है, उस क्षण हमें किसका स्मरण होता है। बस उसी का स्मरण अंत समय में भी होगा। अगर किसी को भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य चीज का स्मरण होता है तो अभी से वे अपने आप को सुधार लें और निश्चित कर लें कि हमारी आंखें खुलने से पहले हम अपने चेतन मन में ईश्वर का ही स्मरण करेंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। नहीं तो हम जीती बाजी भी हार जाएंगे।
1: ये था चिंतन। आलेख था शैल दुआ का और स्वर था नारायण सिंह बघेल का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः की 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर है सुरेश वाडकर का और संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की

ही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

0: अभी श्री रामचरितमानस का गायन प्रसारित किया गया। स्वर था सुरेश वाडकर का और संगीतकार थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
1: सपाय सुनतो खेतीहार दादा दीदी मन, तुम्ही तो सपाय जानास कि धान चो फसल संगे संगे खेती कमानी का जे साग चो फसल बोले खूबे जरूरी है। और जसन की जमियाने जुगे करुण भेंडी कुमड़ा और लाह बीती साग, जसन की लाऊ काकड़ी करेला ए सपाय चो कमानी होए से, और ए सपाय साग ने आम के नगद आमदनी बले मिरे से। जसन की भेंडी बले गोटोक नगद फसल आए, मानतर ए साग ने कयक ठन रोग राई बले धरे से और ए फसल के खूबे नुकसान करे से, और ए चो कसन दखा रखा करवा ए गोट के बले आमी तुमके सांगू से। जसन की सबले पहिल भेंडी के फुतका नाव चो कीड़ी जो परको खूबे रह से, ए कीड़ी नानी नानी और हरदिया रंग चो होए से, और ए कीड़ी मन रस के चुहकुन सपाय साग चो कमानी के खूबे नुकसान करे सो, और ए कीड़ी भेंडी पाना चो खाले रह से, जेचोले बूटा चो बाढ़ ठेबुन जाए से और फर बले खूबे कम होए से। ए चो रोकधाम काजे फास्पो मीडान 85 EC 200 ले धरून 250 ml नहाले डायमिथेट नाव चो जोन ओखत रहे से, एके 30 EC 650 ले धरून 750 ml चो मात्रा ने छिचुन देतो राय। मांतर ए फसल फरतो समयाने इंडोसल्फान 35 EC नहाले मेलाथियान 50 EC के 1 L 2.5 acre चो हिसाब ने छिचुन देतोर होए से। दुआ ओखत डारतो जोन 5 दिन चो पाछे फर के टोड़तोर होए से, ते काय दुआ ओखत ने खूबे मात्रा ने दुआई रहे से तो तुरते पाछे हुनके नी टूटा तो रहे 5 दिन चो पाछे फर के टोड़तोर होए से। फर के काना कर कीड़ी खूबे नुकसान करे से। ए कीड़ी मन शुरू समयाने फर चो छाली चो उपरे काना करून भीतरे अलून गुदा के खाए से, जे चोले पाना कमचुन जाए से, जे चोले बूटा चो ऊपर चो जो खेंदी आए हुन बले सुखुन जाए से। फूल तो समयाने कीड़ी चो प्रकोप जुगे होए से, जे चोले फल फूल बनतो पहिल ची नसुन जाए से। एचो बले दखा रखा करतो काजे कीड़ी बीती जोन बूटा के झिकुन देतो रहे पाछे हुनके जरान देतो रहे, जे चोले कीड़ी बले मरुन जा दे। फर बेरा कीड़ी चो प्रकोप होतो समयाने फास्पो मीडान नाव चो उखत होए से, एके 250 ml नहाले कार्बोरिल 50% झपके घोरी भूत बीती गुंड के 1.5 kg के 1.5 acre चो हिसाब ने बिखरून देतो राय। सबले पहल तो फर तोड़तो पाछे इंडोसल्फान 35 EC के 1200 ml के सिंथेटिक पायरेथियाइड, जसन के रिप कार्ड डेसिसिस सुमी मिसडान सिम्बूस के 300 ले धरून 500 ml 1.5 acre चो हिसाब ने छिचुन देतो राय, और खूब

0: खुबी नगद बले रहेसे और जे जेबे जो काम फेर पड़ ली जाले नी फेर अखत के फेर एकार बूटा ने डारून देतो रहेसे। और जसन भिंडी चो फसल ने कीड़ी संगे संगे रोग राई बले खुबे नुकसान करे से और ये रोग राई ने खुबे नुकसान करतो बीती रोग हो से ए आए उकठा रोग। ए रोग बले जन कोनी बले भिंडी फसल ने जसन भिंडी नानी रहो नल बाढ़तो समय ने खुबे जोटे से जे चले बूटा सुखुन जाए से और रोग चो कोनी समय ने बूटा और जो संगे संगे फर के बले खुबे नुकसान करे से जे चाने आम के भेड़ी जो फल खुबे कम मिरे से और एचो नगद दखा रखा कर तो का जे सबले पहल तो आम के एक बूता कर तो राय की बीड़ा के नगद जो पुन दे तो राय जे चोले हुन थान जो भीतर जो कीड़ी रहे से हुन झपके मरुन जाए से और बीच बंडा तो समय ने एक गोट के जुगे करुन ध्यान दे तो राय की माटी के उल्टा पलटा कर लो ने रोग राय कम बले धरे से। तो सफाई खेतीहार दादा दीदी मन जे भी आमी सफाई गोट के ध्यान देनु जाले भेंडी फसल चो कमानी आम के नगद तो मिरे दे खातो काजे नगद कौरी भेंडी बले आम के मिरे दे और एके हाट पसरा ने आमी बिकलू जाले नी आम के नगद पैसा बले मिरे दे।
1: अभी कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चो गोट का प्रसारण किया गया। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में आज सुनिए बुहरिया पाड़। वादक कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप बोहरिया पाठ सुन रहे थे। वादक कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर हम पेश करते हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आज इसमें आप सुनेंगे स्वास्थ्य की बातें क्रम में डॉक्टर चितरंजन पाढ़ी से ली गई भेंट वार्ता, भेंट करता होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर और विषय होगा पथरी रोग। सुबह 7:30 पर हल्बी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा और होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर बस्तर की विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का आनंद लीजिएगा, कार्यक्रम होगा लोक मंजरी। सुबह 9:00 लोकगीतों के कार्यक्रम झुमझुमा में सुनिएगा हल्बी लोकगीत, गायक कलाकार होंगे दयो और साथी एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर हम लेकर आएंगे पुरानी फिल्म तलाश के गीत। सुबह 10:00 हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम गुलशन में शीर्षक बरसात पर आधारित फिल्मी नगमे। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुरुदूम में सुबह 10:30 पर मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल्बी गीतों का प्रसारण किया जाएगा। एक ही कलाकार सुबह 11:00। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित होगा जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद इरफान पर। दिन में 11:30 पर

हम पेश करेंगे गैर फिल्मी गीत गजल का कार्यक्रम सबरस कला और कलाकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12 बजे। दिन में 12:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। दोपहर 1:05 पर कृषि सामयिकी बेड़ा खाड़ा चौकोट का पुनः प्रसारण किया जाएगा। श्रोता सुमन, ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हम लेकर आते हैं रोजाना दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों में शाम 5:05 पर सुनेगा देशभक्ति गीत। शाम 5:10 पर युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे। शाम 7:00 आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोता सुनते हैं आज सुनेंगे अपना कार्यक्रम आमचो गांव। हल्बी लोकगीत सुनेगा रात 8:00 कार्यक्रम कूड़े फूल में, स्वर होगा नीलूराम और साथियों का। रात 8:30 पर कार्यक्रम पीलामन काजीगोठ में सुनेगा पंचतंत्र की कहानी, प्रस्तुति होगी उर्वशी पाणिग्राही की। पुरानी फिल्मों से हम पेश करेंगे रात 9:15 पर। रात 9:30 पर शासकीय योजनाओं की जानकारी लिए कार्यक्रम वाट में जानिएगा जैविक खेती मिशन के बारे में, प्रस्तुति होगी दीपिका ठाकुर की। रात्रि 10:00 परिचर्चा का विषय होगा मानव अधिकार आज की आवश्यकता, प्रतिभागी होंगे बलदेव मौर्य, जगन्नाथ बघेल और मंधर राम नाग। परिचर्चा का संचालन करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। और रात्रि 10:30 पर आनंद उठाइएगा पुरानी फिल्मों के गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा में। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तन्त्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते 92,675,000,000,000,000 रूप्यकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्य अस्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढ समन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25,100,000 दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमन्त्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनं उभयोर्देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखण्ड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं सञ्जातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तन्त्रेण सञ्चालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एकदिनांकतः उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20/26 तथा उत्तराखण्ड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20/19 इत्येतेः सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तन्त्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है।

0: कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं बल्कि एक अच्छे विचार से होती है। जब मन में सकारात्मकता को, वाणी में मधुरता हो और कर्म में ईमानदारी हो तो हर दिन अपने आप एक उत्सव बन जाता है। आइए इसी उत्साह और उल्लास के साथ आज की इस नई सुबह का स्वागत करें। आकाशवाणी जगदलपुर के सभी श्रोताओं का मैं मनिंदर सिंह देवगुण अभिनंदन करता हूं। आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

0: ऐसा होता है जो अपने ज्ञान, अनुभव और सेवा भाव से उस उम्मीद को फिर से जीवित कर देता है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे चिकित्सक होते हैं। उनके लिए हर मरीज एक केवल एक नाम नहीं बल्कि एक अनमोल जिंदगी होती है, जिसे बचाने के लिए वे दिन रात धूप छांव, त्योहार और अपनी खुशियों की परवाह किए बिना निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। श्रोताओं, 1 जुलाई का ये दिन भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन महान चिकित्सक, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति को समर्पित है। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानवता की सबसे महान सेवाओं में से एक है। कहा भी गया है कि जहां दवाइयां अपना असर छोड़ देती हैं, वहां डॉक्टर का विश्वास और उसका हौसला मरीज को जीने की नई वजह देता है। आज हम उन सभी डॉक्टरों को दिल से सलाम करते हैं जो अपनी मेहनत, समर्पण और करुणा से अनगिनत परिवारों की मुस्कान वापस लौटाते हैं। उनकी सेवा का मूल्य शब्दों में नहीं आंका जा सकता। तो आइए, आज के इस विशेष अवसर पर हम सभी चिकित्सकों के प्रति अपना सम्मान और आभार व्यक्त करें और यही कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और लंबी आयु प्रदान करे, ताकि वे इसी समर्पण के साथ मानवता की सेवा करते रहें। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। अगले कार्यक्रम की तरफ हम चलते हैं, मगर उससे पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का
0: हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का

0: आए दिन हमारे शरीर में कुछ न कुछ ऐसे रोग होते रहते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी कभी कभी होती है और कभी कभी हम उस रोग से अनभिज्ञ भी होते हैं। एक ऐसा रोग है पथरी, जिसे हम अंग्रेजी में किडनी स्टोन भी कहते हैं। हम में से कई लोगों को पथरी का पता काफी देर से चलता है कि उन्हें पथरी है। पथरी के बारे में हमें बहुत सारे खान पान में परहेज करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे खान पान की चीजें हैं जिन्हें हमें खानी भी पड़ती है, अपने दैनिक जीवन में शामिल करना रहता है। कई हमारे दिनचर्या में बदलाव भी हमें करने रहते हैं ताकि पथरी का रोग हटाया जा सके। पथरी के रोग से संबंधित हमारे मन में जो भी सवाल हैं और जो भी आपके मन में भी शंका है, उन सभी शंकाओं को आज हम स्वास्थ्य की बातें कार्यक्रम से दूर करने की कोशिश करेंगे। पथरी के बारे में और भी अधिक जानकारी लेने के लिए और भी चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आयुष मेडिकल ऑफिसर श्री चितरंजन पाढ़ी जी को। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
1: शुक्रिया।
0: तो जैसे हमने शुरुआत में ही बताया कि आज हम पथरी रोग के बारे में अपने इस कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को जानकारी देने वाले हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये पथरी रोग, जिसे हम किडनी स्टोन भी कहते हैं, वो है क्या और वो क्यों होता है?
1: आजकल देखा जाए तो ये एक कॉमन बीमारी हो चुका है। मैं बस्तर में काफी 20 साल से काम कर चुका हूं और अभी मेरा जो पोस्टिंग है मुंडागांव क्षेत्र में है। मैं अक्सर देखता हूं हर महीने में एक या दो मरीज ऐसे हमें हमारे पास आते हैं और बाद में जब डायग्नोज किया जाता है तो उसको पथरी निकलता है। मैं देखा हूं कि यहां का जो खान पान है, यहां का जो रहन सहन है और यहां का जलवायु, ये खास करके बहुत प्रभावित करता है लोगों को। और पथरी एक ऐसी बीमारी है जब शरीर में जल मात्रा आपकी कम हो जाता है तो आपकी शरीर की जो अम्ल है, जिसको एसिड कहते हैं, वो एसिड की मात्रा जब बढ़ जाता है तो शरीर में हमारी ऐसी कुछ केमिकल्स रहते हैं जो क्या होता है, हमारी मेटाबॉलिज्म को, चयापचय को प्रभावित करता है। पहले बचपन में हमारे एक धारणा था, जैसे हम चावल खाते हैं या कुछ चीज खाते हैं उसमें कंकड़ पत्थर चला जाता है तो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो अगर हजम नहीं होगा तो पत्थर बन जाएगा, पर वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। वो हमारी शरीर की जो केमिकल्स है वो अपने आप सूख जाते हैं, कुछ कैल्शियम ऑक्सैलेट बन जाते हैं, कुछ यूरेट्स बन जाते हैं जो हार्ट शेप ले लेते हैं और वो फिर पथरी के रूप ले लेता है। पथरी अक्सर हम देखते हैं किडनी में तो कमन स्थान होता है और साथ में यूरिनर ब्लडर जो होता है हमारा, पेशाब की थली, वहां भी होता है, गॉल ब्लडर में भी होता है और यूरेटर जो पेशाब की जो नली होता है किडनी से आकर पेशाब तक आता है वहां भी होता है। तो ये कमन स्थान होता है पथरी का। और मुख्य जो लक्षण उसमें देखा जाता है, पेशेंट जब आते हैं कहते हैं मेरे कमर में दर्द होता है, साथ में वो दर्द ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, वो दर्द आपको पेशाब की नली तक जाते हुए आपको महसूस होगा कि दर्द वहां नहीं रहते हुए पेशाब के रास्ते तक भी जाता है, साथ में पेशाब में जलन भी महसूस होगा, पेशाब कभी कभी बूंद बूंद भी आ सकता है और ये दर्द कमर तक भी, पीछे तक भी जाता है और कभी कभी मरीज को उल्टी की शिकायत भी होता है, फीवरिश बुखार जैसा महसूस होता है। ये कॉमन लक्षण है और कॉमन जो पहचान हम आसानी से कर लेते हैं। अगर उसको हम भेजते हैं सोनोग्राफी के लिए पता चलता है कि किडनी में स्टोन है या कड़र में स्टोन आ जाता है, ये उसके कॉमन लक्षण है। और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, मरीज आके बताता है कि डॉक्टर साहब बहुत जलन होता है, पेशाब बूंद बूंद कर आता है और साथ में पेशाब में खून भी आता है, तो हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं पथरी पेशाब की नली के रास्ते में रुकावट डाल रहा है। वह पथरी टुकड़ा होकर अगर पेशाब की नली के रास्ते में आ जाता है, वहां अगर अटक जाता है, क्योंकि वहां छोटी होता है रास्ता, तो वहां क्या करता है, इंजरी करता है, अंदर में जख्म करता है, जिसकी वजह से पेशाब में खून भी आता है। तो ये कॉमन लक्षण होता है
0: जी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, जैसे पेशेंट आपके पास आते हैं और ज्यादा गंभीर उनकी स्थिति है तो क्या सर्जरी अनिवार्य हो जाता है या फिर किसी दवाई से आप उसको गलाकर बाहर निकाल सकते हैं?
1: मैं तो अक्सर देखा हूं 10 से 15 मिलीमीटर तक पथरी की जो बीमारी है वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है। हाँ, अगर स्टोन बहुत बड़ा साइज है, किसी कारण से रुकावट हो जाता है, तो उस क्षेत्र में सर्जरी की सलाह दी जाती है, नहीं तो अक्सर दवाई से ठीक हो जाता है। अगर पेशेंट पानी की मात्रा अच्छी ले, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में अम्ल को बैलेंस करने के लिए, अल्कलाइन मीडियम लाने के लिए हमें पानी की बहुत जरूरत होता है। अपने शरीर का वजन अगर 20 किलो है तो कम से कम 1 लीटर पानी तो लेना है, अगर आप 40 किलो के 2 लीटर है, 60 किलो के 3 लीटर, इस हिसाब से हमें पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। दूसरी ऐसी खान पान जो हमारा शरीर की एसिड को न्यूट्रल करे, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, मूली, लौकी, जितने भी आप लंबा सब्जियां देखेंगे ना, ये सब हमारे एसिड की मात्रा को कम करता है, पेशाब ज्यादा लाता है और हमारे किडनी की फंक्शन को स्वस्थ रखता है। तो इसलिए

0: इस पानी की मात्रा बढ़ाने के साथ इस प्रकार की भोजन की मात्रा को, आहार को भी संतुलित करते हैं। साथ में आजकल क्या होता है, देखा जाता है लोग फास्ट फूड की ज्यादा यूज करते हैं, तली हुई भुने हुए चीजें, मसालेदार चीजें, अंडा, मटन, शराब, यहाँ तो कमन बस्तर में पाया जाता है क्योंकि यहाँ का वो कल्चर है, रीति रिवाज है। तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर के जो खून है वो गाढ़ा बन जाता है, और क्योंकि खून को फिल्टर किडनी ही करता है, क्योंकि वो किडनी के ऊपर भी दबाव पड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो जो हमारे शरीर से गंदगी निकल जाना चाहिए वो ना निकल के वहां संचित होके धीरे धीरे बड़ा आकार होते होते वो पथरी का रूप ले लेता है।
1: जी, और ऐसे गांवों में या फिर आम जनता में ऐसी बातें चलती हैं कि कुछ खान पान अगर हम लें तो पथरी जो है वो गल भी जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ में कुल्थी का दाल होता है,
0: हाँ,
1: कहते हैं कि
0: बिल्कुल,
1: कुल्थी
0: बिल्कुल।
1: का दाल अगर लें तो फिर पथरी
0: हाँ,
1: गल जाता
0: बिल्कुल।
1: है, और नींबू संतरा जैसे ये साइट्रिक फ्रूट्स भी अगर आप
0: फ्रूट
1: लें
0: है,
1: तो भी पथरी गल जाता है, तो क्या ये
0: हाँ
1: बात सही है?
0: बिल्कुल सही है, क्योंकि

0: बट उबालने के बाद उसके पानी को पी लीजिए, दाल को घर वालों को खाने के दे दीजिए, ठीक है।
1: जी
0: और अक्सर ऐसे हम देखते हैं पत्थर चट्टा भी, आप नाम सुने होंगे है ना, हम बचपन में पुस्तक में रख लेते थे, और उसको अगर भी थोड़ी सी काली मिर्च के साथ खाया जाए वो भी मदद करता है। ऐसे घरेलू उपाय में भी इसको किया जाता है। एक पुनर्नवा एक साग होता है ना, उसको भी अगर यूज करते हैं वो भी पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है, किडनी और लीवर ये दोनों को स्वस्थ भी करता है। गोखरू एक कांटेदार बीजा टाइप का आता है, वो भी मदद करते हैं। और एक आता है जैसे श्वेत पर्पटी बोल के नाम बोला जाता है, जो कि अक्सर क्या करता है, हमारी जो संरचना बनी हुई है किडनी में उसको गलाने में मदद करता है ना। श्वेत पर्पटी आयुर्वेद में इसको यूज किया जाता है। अगर आप 1 ग्राम की मात्रा में इसको यूज कर देते हैं पानी के साथ, ऐसे भी ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जिसको हम आसानी से आयुर्वेद में भी यूज करते हैं। और आयुर्वेद में हमारे एक चिकित्सा है, मैं गया था पुणे, उसको कहते हैं विद्ध चिकित्सा। विद्ध मतलब बिना दवाई से भी हम हमारे अंगूठ, हमने दोनों पैर में जो अंगूठा होता है ना, वहां कुछ पॉइंट्स है शरीर में, उसको अगर हम पंक्चर कर देते हैं एक बहुत बारीक नीडल से, अगर पंक्चर भी कर लेते हैं विद्ध से भी, मैं देखा हूं किडनी की जो पेन है, क्यों बहुत जो मरीज आता है ना छटपटा हुआ पेन में आता है, 1 सेकंड में कम हो जाता है, ये मैं देखा हूं। और अगर आप 2-3 सीटिंग कर लेते हैं, वहां की जो यूरेथ्रा में जो फंसा हुआ किडनी की स्टोन है वो धीरे धीरे क्या होता है पैसे से निकल भी जाता है। मैं पेशेंट को एक बार किया, एक मरीज का 2-3 दिन बाद वो पथरी लाके मेरे को दिखाया कि डॉक्टर साहब निकल गया, साथ में दवाई भी दिया था, वो क्रिया भी किया था। मतलब एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन में जो हम इंजेक्शन भी लगाते हैं उससे तुरंत क्रिया ये विद्ध कर्म करता है आयुर्वेद में।
1: जी जी
0: जी।
1: और डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि कोई एक बीमारी अगर हमारे शरीर में हुई है तो उसके कारण फिर अन्य बीमारियां भी हमारे शरीर को लगती हैं। तो क्या पथरी होने के बाद और भी अन्य कोई बीमारी है जो पथरी के कारण होती है?
0: पथरी के कारण ऐसे बीमारी हो सकता है, जैसे मान लो पथरी आप हो गया और आप उसको अनदेखा किए और आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपकी किडनी धीरे धीरे खराब होने की संभावना रहता है। एक तो यूरिन जिसको बार बार इन्फेक्शन रहता है उनको स्टोन फॉर्मेशन होने की संभावना है, अगर आपने उसको भी नजरअंदाज कर दिया और उस पथरी को भी इलाज नहीं की तो आपकी किडनी खराब होने के भी चांसेस रहता है। किडनी अगर खराब हुआ तो आपकी बीपी भी शूट हो सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि हमारा हर ऑर्गन एक दूसरे से रिलेटेड होता है, कोई एक फंक्शन हमारा शरीर में एक जैसा नहीं होता है, एक बीमारी दूसरे को कारण भी बनता है। और आयुर्वेद में हर चीज का बीमारी का मूल कारण बताया गया है, रोगा सर्वेपि जायन्तु मन्दाग्नौ, मतलब अगर हमारा शरीर की अग्नि मंद है, अगर डाइजेशन आपकी अच्छा नहीं है और आपने फिर भी खा लिया तो वहीं से हमारा शरीर में क्या होता है विष पैदा होता है, जिसको हम आम कहते हैं, मतलब टॉक्सिन कहते हैं। 90% बीमारियों का जो कारण होता है हमारी गलत खान पान जीवन शैली की पद्धति है। जो व्यक्ति आलसी है, खाना पीना नहीं कर, मन अच्छे से व्यायाम नहीं करता है, पानी अच्छे से नहीं पिएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, शरीर ऐसे ही उसकी क्या रहेगा, मंद रहता है, उसकी भूख नहीं लगता है, फिर भी हम जीभ की लालसा की वजह से, स्वाद की वजह से भोजन ले लेते हैं, वो भोजन क्या होता है अक्सर जाके हमारा आम व टॉक्सिन पैदा करता है, वो धीरे धीरे वो संचित होकर हमारा शरीर में हमारा मेटाबॉलिक प्रक्रिया को आघात करता है, परिणाम तो हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है, उसमें एक पथरी भी हो सकता है।
1: जी जी। हाँ। हम बस्तर क्षेत्र की बात करते हैं तो बस्तर क्षेत्र में जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे शराब, मांस, मदिरा इन सब का काफी चलन है और जिसके चलते यहाँ पे पथरी रोग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बस्तर के जो लोग हैं वो बहुत कामकाजी भी होते हैं, वो काफी एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहने के बावजूद भी पथरी हो सकता है?
0: बिल्कुल रह सकता है। क्या होता है किसी क्षेत्र का जो भौगोलिक परिवेश होता है ना, वहाँ का पानी जैसे रहता है, मान पानी किसी एरिया में हार्ड रहता है, हार्ड इन द सेंस जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर हमारे शरीर में होना चाहिए, जो नॉर्मल मिनरल्स मान लो कैल्शियम, आयरन, एक्जालेट व जो भी पानी में जो केमिकल्स रहता है, मिनरल्स, उसकी मात्रा में कभी कभी मान लो बढ़ोतरी रहता है, हमें तो पानी टेस्ट करके थोड़ी ना पीते हैं, जिस एरिया में जो पानी मिला हम पी लिए है ना, और जो खाना मिला हम खा लिए, वो पचा या नहीं पचा, वो शरीर में क्या नुकसान कर, उसको तो हम ध्यान नहीं दिए। तो भौगोलिक कारण भी इसमें काम करता है, पानी की संरचना मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स व मिनरल्स रहते हैं वो भी एक डिपेंड करता है।
1: जी जी
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहब एक स्वस्थ दिनचर्या व्यक्ति की कैसी होनी चाहिए ताकि उसे आगे जाकर ना पाचन संबंधी कोई समस्या हो, ना यूरिनरी ट्रैक जैसे पथरी है उनकी कोई परेशानी हो, तो एक स्वस्थ दिनचर्या कैसी होनी चाहिए?
0: स्वस्थ दिनचर्या में आयुर्वेद में कहा गया है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अर्थात अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे के बीच उठ जाइए, पहले उठ के ही कुनकुना पानी पीजिए, बैठ के पानी पीजिए, फिर थोड़ा बहुत टहलिए, टहलने के बाद क्या होता है बाद थोड़ा बहुत हाथ पैर को ऐसे कसरत भी कराइए, इससे क्या होता है हमारा शरीर का जो बेग है, मोशन है, टॉयलेट साफ होने की जो क्रिया अपने आप शुरू हो जाता है। एक बार टॉयलेट आपका साफ हो गया, इसके बाद क्या होता है आप सवेरे उठ के कुनकुने नींबू पानी पीजिए, आप

0: वो एक भले उस वो एसिडिक गुण है, परंतु खाली अगर नींबू पियेंगे बिना नमक व शक्कर के वो अल्कालाइन का काम करता है, ठीक है, वो पाचन को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद आप दातुन करिए, ब्रश करिए, 8 से 9 बजे के बीच आप नाश्ता कर लीजिए। हाँ, फिर भी वही बात आता है, अगर आपको अच्छे से भूख लग रहा है तो लीजिए। अगर रात का पचा हुआ भोजन अभी तक आपको पचा नहीं है, आपके पेट में भारीपन है और पेट आपका अच्छे से साफ नहीं हुआ है, तो नाश्ता मत लीजिए। इसलिए कहा गया लंघनम, लंघनम मतलब थोड़ी देर के लिए फास्ट, 8-10 घंटा के लिए फास्टिंग कर लीजिए, उपवास रह लीजिए। इससे क्या होता है, रात का बचा हुआ भोजन भी पच जाए। जब आपको भूख अच्छे से लगेगा तो आप भोजन करिए। भोजन कैसे करना है, जो आपकी पचाने की क्षमता आप हर के जानते हैं, मैं क्या खाने से मेरे शरीर में पचेगा, क्या खाने से नहीं पचेगा, उस अनुसार भोजन करिए। साधारणतः हम तो यही सलाह देंगे जो इजीली पच जाए, सादा शाकाहारी सात्विक भोजन हमारे लिए शरीर के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारा शरीर की बनावट सात्विक भोजन के लिए बना हुआ है। हमारा दांत, हमारा नाखून मांसाहार के लिए नहीं बना है, हमारा इंटेस्टाइन जो पाचन संस्थान उसके लिए भी नहीं बना है। हमारे शरीर में जो परिमाण से एसिड सिक्रेशन होता है वो मांस मटन को पचाने के लिए नहीं हुआ है। तो मैं तो आग्रह करूंगा, हो सके अपना जीवन सात्विक जीवन शैली बनाइए, सादा शाकाहारी भोजन, मूंग दाल मसूर दाल, ये जो पचने में आसानी होता है, मूंग और मसूर का दाल होता है, हरी सब्जियां आप लीजिए रोज, और कितने आप पचा पाएंगे उसी अनुसार भोजन लीजिए। भोजन के बाद तुरंत पानी मत लीजिए, ठीक है, भोजन के आधा एक घंटा पहले या एक घंटे बाद आप पानी लीजिए, है ना। शाम को या सवेरे आप थोड़ा बहुत अगर टाइम है तो आप 2-3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करिए, शाम को थोड़ा बहुत आप मेडिटेशन योगा करिए, माइंड को फ्रेश करिए, अच्छा संगीत सुनिए, अच्छे दोस्तों के माहौल से बढ़िए, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आए। जिससे क्या होता है, हमारा शरीर की जो बनावट मन से ही कंट्रोल होता है, ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। हमारा मन अगर स्वस्थ रहेगा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए पहले के जमाने में भी लोग क्या करते थे, शाम के होने से भागवत टुंगी में बैठते थे, आपस में प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे, आपस में अच्छी गपशप करते थे, मनोरंजन भी होता था, इससे मन खुशी हो गया। तो आज की जो जीवन शैली क्या हो गया, सब आपने देखे मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो इससे हम क्या इनपुट ले रहे हैं दिन भर, आप देख लीजिए। अच्छा चीज तो बहुत कम लेते हैं, है ना, दुनिया भर की रील देखते हैं, नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। जहाँ मन मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, मन अगर सही नहीं है तो शरीर कहाँ सही होगा।
1: जी जी, आजकल लोग पश्चिमी देशों को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं का ब्रेकफास्ट भी आजकल लोग अपना रहे हैं, जिसमें ब्रेड रहेगा, दूध रहेगा, अंडा रहेगा, तो क्या ये सही ब्रेकफास्ट है या फिर सही नाश्ता है, या फिर हमें कुछ बदलाव करने चाहिए अपने?
0: बिल्कुल सही नहीं है, है ना। हमने क्या बताया, वहाँ क्यों लोग ब्रेड बटर अंडा खाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो जलवायु पैदाइशी, वहाँ जैसे हमारा जो चावल गेहूं इस प्रकार आसानी से होता नहीं है, ठंडा क्लाइमेट है वहाँ का, है ना। तो वहाँ का जीवन शैली बहुत बेस्ट जीवन शैली है, वो लोग कुकिंग भी ठीक से नहीं करते, रेडीमेड कौन सा चीज जल्दी हो जाएगा उसी को ये करते हैं, परंतु हमारे पास तो ऐसे नहीं है। घर में महिलाएं हैं, पुरुष भी साथ में मदद देते हैं, तो हम आसानी से हम ये चीज को घर में गर्म गर्म नाश्ता बना के खा सकते हैं। चाहे पोहा खाइए, चाहे आप रोटी खाइए, उपमा खाइए, खिचड़ी बनाइए, है ना। हमारी जलवायु के हिसाब से हमारा हर देश, हर जाति और हर क्षेत्र का अलग अलग नाश्ता रहता है। कहाँ इडली डोसा पसंद है, तो कहीं पोहा पसंद है, तो कहाँ रोटी पसंद है, कोई तो बासी चावल पसंद है। तो मेरे ख्याल में वो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल भी कहा गया हमारा आंत अगर सही रहेगा, हमारा आंत मतलब हमारा इंटेस्टाइन, ये हमारा सेकंड ब्रेन होता है, सेकंड ब्रेन मतलब पेट अगर सही रहता है तो हमारा दिमाग भी सही रहता है। आप देखिए, जिस दिन आपका पाचन सही नहीं है, पेट साफ नहीं हुआ है, अपचन हुआ है, आपके मन में भी चिड़चिड़ा गुस्सा आता है कि नहीं आता है?
1: जी जी।
0: क्यों? क्योंकि हमारा पेट का सीधा असर मन से है। तो हमारा नाश्ता भी क्या होना चाहिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते

0: क्योंकि हमारा पेट का सीधा असर मन से है। तो हमारा नाश्ता भी क्या होना चाहिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते नहीं है, पेट साफ नहीं हुआ है, अपचन हुआ है, आपके मन में भी चिड़चिड़ा गुस्सा आता है कि नहीं आता है?
1: जी जी।
0: क्यों? क्योंकि हमारा पेट का सीधा असर मन से है। तो हमारा नाश्ता भी क्या होना चाहिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते

0: क्योंकि हमारा पेट का सीधा असर मन से है। तो हमारा नाश्ता भी क्या होना चाहिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते तो हम इसको विरेचन दे के उस बीमारी से उसके टॉक्सिन को निकालते हैं। वो भमन विरेचन से पहले हम क्या करते हैं, स्नेहा मतलब इस प्रकार का तेल या घी का यूज कराते हैं और साथ में स्वेदन मीन्स आपको गर्माहट, शरीर को गर्माहट देते हैं जैसे पसीना आ जाए जिसके वजह से। इससे क्या होता है, हमारा शरीर की जो अंदर में जो दोष छिपे हुए हैं वो ढीले हो जाते हैं। इसके बाद दवाई देकर हम इसको भमन विरेचन या बस्ती मेडिकल ऑयल हो या क्वाथ हो इसे एनिमा देकर उसको सफाई करते हैं। ये एक शोधन चिकित्सा जिसमें 90% बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और समन चिकित्सा मतलब सिर्फ सिंपल मेडिसिन है। अगर आपका शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत शुरुआत है, स्टोन की साइज 5 mm 7 mm है, तो हम सिंपल उसको जो निदान परिवर्धन मतलब कुछ चीजें जो रेस्ट्रिक्शन में देते हैं कि भाई इसी वजह से आपको हुआ है, इस चीज को आप मत यूज करिए, है ना। अपना लाइफ स्टाइल को सुधारिए, थोड़ा कसरत करिए, पानी अच्छा पीजिए, संतुलित आहार लीजिए, है ना, सरल आसानी से पचने वाला चीज लीजिए जो आपके शरीर के लिए बेनिफिट हो, और साथ में दवाइयां देते हैं, है ना, जैसे इसमें चंद्र प्रभा, बटी, गुप्तरा, दिगुगुल, पुनर्नवा, काढ़ा, है ना, ये सिंपल सिंपल दवाइयां भी देते हैं, है ना। और साथ में जैसे आपने बताया कुल्थी का दाल वगैरह यूज करना, ये बहुत कॉमन सेड चीज है ना। अक्सर ये 2-3 दवाई से भी मैंने देखा हूँ 90% लोगों का पथरी निकल जाता है। और कोई बार मेरे को मरीज लाके देखा है डॉक्टर, ये देखिए, है ना
1: जी जी। हाँ, तो पंचकर्म की आपने बात की, अगर किसी व्यक्ति को अपने शरीर में कोई भी परेशानी है,
0: हाँ,
1: तो वो पंचकर्म कर सकता है, या फिर अगर कोई परेशानी नहीं है, उसको लग रहा है कि उसके शरीर में जो विषाक्त तत्व है वो बढ़ गए हैं, तो क्या अभी उनका पंचकर्म किया जाता है?
0: हमारे यहाँ जिला आयुर्वेद अस्पताल है और महारानी अस्पताल है, है ना, ये बस्तर जिला के लिए ये खास 2 यूनिट है, बाकी गांव के क्षेत्र में पंचकर्म सुविधा नहीं है। तो आप एक बार आके पहले अपनी परीक्षा करवाइए, आपके दोष माने क्या क्या आपकी बढ़ी, है ना, बढ़ी हुई है, वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, वहाँ स्टाफ भी हैं, आपको सलाह देंगे कि एक्चुअली आपको पंचकर्म की जरूरत है या नहीं है, है ना। क्योंकि ऐसे बोल देने से लोग तो पंचकर्म नहीं करेंगे, आपको आना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास और सलाह लेना कि मेरे की परेशानी ये है, उसी अनुसार मेरे को क्या कराना है।
1: तो यहाँ पे इलाज हो जाएगा महारानी अस्पताल और जिला आयुर्वेदिक
0: अस्पताल? हाँ, महारानी अस्पताल में हमारा आयुष विंग है, है ना, और जिला अस्पताल में भी आयुष विंग है, दोनों जगह पर पंचकर्म की सुविधा है, दवाई भी निःशुल्क दिया जाता है, सलाह भी आपको दिया जाएगा, योग प्राणायाम योगा शिक्षक भी है, आपको अच्छा गाइडेंस भी देंगे, डाइट लाइफ स्टाइल को कैसे करना है, बहुत सारी सुविधा सरकार ने भी बना कर रखा है सबके लिए। और हर गांव में जैसे जहां जहां हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां भी हमारा आयुष विंग है, वहां आयुर्वेद के और कहीं कहीं सीएस में होम्योपैथिक की दवा केंद्र भी है, तो वहां भी हम निःशुल्क दवाई आयुर्वेद की दवाई भी देते हैं। तो वहां भी आप आकर अगर सामान्य परेशानी है तो आप कर सकते हैं, सामान्य क्या जैसे जैसे मैं लक्षण बताइए आसानी से वहां भी आप आकर इलाज कर सकते हैं।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब आपने पथरी से संबंधित और स्वस्थ दिनचर्या क्या होनी चाहिए उससे संबंधित और खान पान कैसा होना चाहिए ऐसी बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी है, और भी कोई बात रह गई हो और आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहते हैं तो कहें।
0: मेरे तो यही सबको ये एक सलाह है कि शरीर सही है तो मन सही है, तो शरीर हमारा पूंजी है, शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, अगर

0: ऐसे दिनचर्या अपनाएं जिससे हम मेरे शरीर भी सही रहे। मैं क्यों जाके डॉक्टर को, नर्सिंग होम को डॉक्टर को पैसा क्यों दूं? स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, भाग्य हमारी मुट्ठी में, ये कहा जाता है। भाग्य ऊपर वाला लेख के नहीं देता है, हम जैसा चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं थोड़ा एक्टिव रहूं, अपनी जीवन शैली को बदल दूं, हाँ संतुलित आहार लूं और ये जो नशीले चीज से दूर रहूं, थोड़ा एक्टिव रहूं, तो इसी से 70-80% बीमारियां हम ठीक सकते हैं। हाँ एक्सीडेंट हुआ, कोई अनचाही बीमारी हुई, महामारी हुई, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, परंतु 80% चीजें हमारे कंट्रोल में है। तो स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। और जहां जहां हमारा आयुष केंद्र है वहां आयुष के डॉक्टर भी हैं, वो आपको अगर किस प्रकार की परेशानी है आपको सलाह बिल्कुल दे सकते हैं। निःशुल्क
1: जी। तो आपसे बात करके हमें अच्छा लगा और आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
2: अभी आप स्वास्थ्य की बातें क्रम में पथरी रोग विषय पर डॉक्टर चितरंजन पाड़ी से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थी चंद्र ऋषि ठाकुर। अब नमस्कार जगदलपुर में सुनिए हल्बी समाचार बुलेटिन।

आकाशवाणी जगदलपुर आए हल भी समाचार बुलेटिन संगे मैं माधुरी आज जो मूल खबर मन की बात कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक मन ले पानी के बचान रातों काजे कैच द रेन अभियान में भाग धरतो काजे गुहार कर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी त्रे रूप टाप सोलर लगा तो लोग मन के अगर बिजली जो लाभ मिले दे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा अपने बस्तर दौरा ने कांकेर नारायणपुर और कोंडागांव जिला जो दौरा करला। बस्तर गोंचा महापर्व देव स्नान चंदन यात्रा पूजा रुसुम संगे मुड़ो एवर खबर सरसराली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेलो 28 जून के आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम ने बल्ला कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन उपरे ध्यान देऊन भारत एबर समुद्र ले धरून आकाश तक आगर सुरक्षित अरु आत्मनिर्भर बने से। श्री मोदी बल्ला कि जून महीना ने स्वदेशी C-295 विमान चो पहिल उड़ान संगे भारत अदाय बड़े सफलता पावली से। श्री मोदी बल्ला कि ये महीना कोलकाता ने 3 ठान युद्ध पोत मन के पानी ने उतराला अरु DRDO चो लंबा दूरिया चो क्रूज मिसाइल चो सफल परीक्षण होली से। पश्चिम एशिया ने युद्ध बेरा प्रधानमंत्री लोकमन ले सहयोग चो अपील करू रला हुंचो समर्थन करतो काचे प्रधानमंत्री लोकमन चो आभार बले मानला। प्रधानमंत्री देश चो लोकमन ले पानी बचातो काजे बरसा पानी के बचान राखतो काजे कैच द रेन अभियान ने ढिलाई नी देतो गोट के बले बल्ला। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा 29 जून के नई दिल्ली ने स्वास्थ्य क्षेत्र का जे कैक डिजिटल काम मंचो मूर करला जेथा आरोग्य सेतु चो दूसर चरण आयुष्मान सारथी चैटबॉट आयुष्मान एप ई सुश्रुत क्लिनिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय अरु भारत चो डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा के और पक्की बनातो काम आसे। आपलो संबोधन ने श्री नड्डा एके सरकार चो उपलब्धि बलते सांगला कि एचो ले देश डिजिटल रूप ले आगर मजबूत बने दे। श्री नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो नेतृत्व ने स्वास्थ्य सेवा के आगर बढ़ातो काम चो बारे सांगते बल्ला कि एचो ले लोग मन के झपके और सस्ता इलाज मिरे से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कर्नाटक चो राज्यपाल थावरचंद गहलोत गेलो 29 जून के संत कबीर दास जयंती चो महका ने रायपुर चो सोन पैरी ने होलो कबीर जयंती महोत्सव ने भाग धरला। कार्यक्रम के संबोधित करते मुख्यमंत्री बल्ला कि संत कबीर दास चो आदर्श जाति पंथ ले ऊपर सामाजिक सद्भाव आत्मचिंतन अरु लोक कल्याण चो संदेश दाय से। ए मौका ने मुख्यमंत्री घोषणा करला कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना चो समय के 3 महीना काजे बढ़ातो रोली से। एचो ले आगर लोग मन सर चार्ज माफी और दूसर वाट मंचो लाभ धरून आपलो बाचलो बिजली बिल के पटान सक दे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भीतरे रूप टॉप सोलर लगातो लोग मन के आगर बिजली मिरे दे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया बाटले तय कर लो बाय बैक दर के लागू करतो मुरहोली से। मंजूरी मिलो पाछे ग्रिड ने पठालो उपराहा सोलर बिजली चो पैसा के उपभोक्ता चो आगे ए तो बिजली बिल ने क्रेडिट चो रूप ने हुनके मिरे दे। नेट नीटनिंग व्यवस्था चो उपराहा बिजली चो हिसाब राखतो रह दे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय चो स्थापना चो 5 बरस पूरा हो तो महका ने छत्तीसगढ़ ने 29 जून ले सहकारिता

सप्ताह मनाए जाए से 6 जुलाई तक चलतो ये अभियान दाए प्रदेश ने सहकारिता के बढ़ातो का जे कई कार्यक्रम हो दे। रायपुर ने तो 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर सहकार मेला अरु संगोष्ठी हो दे। ये कार्यक्रम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि चो रूप ने आमर दे। सहकार मेला ने सहकारिता क्षेत्र ने उपलब्धि अरु सफल मॉडल चो प्रदर्शन किए जाए दे। 6 जुलाई के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अन्न भंडारण बल्लो ने अरण राखतो ठान पैक्सो गोदाम चो 9 ठान गोदाम बनातो काजे भूमि पूजन कर दे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा आपलो बस्तर दौरा ने कांकेर नारायणपुर और कोंडा गांव जिला चो दौरा करला। श्री शर्मा 26 जून के कांकेर ने नक्सल पीड़ित परिवार और शहीद जवान मंचो परिवार संगे भेंट करला। ये भीतरे उप मुख्यमंत्री वीर शहीद मन के हर हमेशा सुरता करतो का जे चिन्हा बना तो घोषणा भले करला। ये काम के विशेष अभियान चलान करतो का जे सांगते हुन बल्ला कि गांव ने सामुदायिक भवन चौक चौराहा अरु दूसर सार्वजनिक ठान मंचो नाव शहीद मंचो नाव ने राखतो हो दे। संग ने जोन ठान ने नक्सल हिंसा चो बड़े बड़े घटना हो रही हुन ठान मन ने स्मारक भले बने दे। हुता है श्री शर्मा कांकेर जिला पंचायत चो बस्का खोली ने सर्व आदिवासी समाज प्रमुख मंचो बस्का धरला। बस्का ने बस्तर ने नक्सल उन्मूलन चो पाछे सपाई क्षेत्र ने विकास सामाजिक एकता अरु आदिवासी संस्कृति अरु परंपरा के बचान राखतो का जे चर्चा होली। हुन समाज प्रमुख मन के बल्ला की सांस्कृतिक धरोहर अरु चिन्हा के बचान राखतो काम समाज चो मूर काम हो से। उप मुख्यमंत्री अंतागढ़ विकास खंड ने बोरा गांव चो CAF कैंप परिसर ने चौपाल लगान सरकार चो जन कल्याणकारी योजना चो लाभ सपाय लोग मन लगले अमरातो उपरे जोर दिला। हुन अधिकारी मन ले बल्ला कि ए तो 2.5 महीना भीतर हर गांवकारी लोग मन के बैंक खाता चो सुविधा मिरो जेचो ले शासन चो योजना चो लाभ सीधा हितग्राही मन के मिरो। उप मुख्यमंत्री गांवकारी मन के जैविक खेती के अपनातो संगे संगे गोरस रोजगार के करतो गुहार भले करला। आपलो दौरा चो दूसर दिन 27 जून के उप मुख्यमंत्री नारायणपुर ने शहीद परिवार अरु नक्सल पीड़ित परिवार चो लोग मन ले भेंट करून हुन मन चो समस्या के सुनला। उप मुख्यमंत्री पुनर्वासी जुआन मन ले भेंट करून विकास काम ने पूरे तो गुहार करला। संगे संग हुन जिला पंचायत भवन चो बस्का ठान ने समाज प्रमुख मंचो बस्का धरला। यही मंझी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कोंडागांव जिला चो ग्राम मर्दापाल चो करहार गांव चो हफ्तावार हाट ने आमरून लोग मन ले भेंट करून कैक ठान गोठ उपरे चर्चा बले करला। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े गेलो 27 जून के सुकमा जिला चो जगरगुंडा चिंतलनार पुवर्ती अरु सिलगेर चो दौरा करला। ए भीतरे हुन पुवर्ती अरु सिलगेर चो आंगनबाड़ी केंद्र चो निरीक्षण करला। संग ने अन्न प्राशन अरु गोद भराई कार्यक्रम ने शामिल होला। कार्यक्रम ने शामिल होन हुन मेहरार मनले चर्चा बले करला। श्रीमती राजवाड़े सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र लस्के पारा छिंदगढ़ चो पोषण वाटिका ने पीला मन संगे मुनगा अरु पपाया बूटा के मंडाला। ये मौका ने हुन हर घर मुनगा घर घर सुपोषण चो संदेश देते लहरा पानी के बचान राखतो संगे मिलजुल होन रतो गुहार करला। हुताय श्रीमती राजवाड़े बीजापुर ने आयोजित पत्रकार वार्ता ने बल्ला की माओवाद मुक्त बीजापुर एबर विकसित बीजापुर बने से। एबर केंद्र अरु राज्य सरकार चो कोशित ले विकास काम हो से अरु सरकार चो योजना मन चो लाभ सपाय लोग के मिरे से। श्रीमती राजवाड़े बल्ला कि जिला ने सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य आंगनबाड़ी संचार अरु दिगर जरूरी सुविधा मन अमरे से। सूचना अरु प्रसारण मंत्रालय भीतरे पत्र सूचना कार्यालय PIB रायपुर बाटले गेलो 27 जून के जगदलपुर ने वार्तालाप मीडिया संवाद कार्यशाला चो आयोजन होली। कार्यशाला के संबोधित करते केंद्रीय आवासन अरु शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू गेलो 12 बरस ने केंद्र सरकार चो फ्लैगशिप योजना अरु उपलब्धि के सांगला। हुन बल्ला की सेवा सुशासन अरु गरीब कल्याण चो कल्याणकारी नीति ले बस्तर नक्सलवाद चो अंधियार के चिरून एबर विकास चो उजर ने जाय से। हुताय कार्यक्रम चो अध्यक्षता करते सांसद महेश कश्यप बल्ला की बस्तर चो आदिवासी समाज चो उन्नति बाढ़ती अरु सुरक्षा काजे काम होय से ये कार्यशाला ने जनप्रतिनिधि मीडिया प्रतिनिधि मन भाग धरला अरु बस्तर ने विकास लागून काम उपरे चर्चा करला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भीतरे पेटेहारीन अरु पीलाहारीन मेहरार मंचो पंजीयन काजे

15 जून ले चलतो खास अभियान ने छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक सफलता धरून देश भर ने पहिल ठान पावली से। प्रदेश के अभियान चो पहिल 9 दिन ने तय लक्ष्य चो 72% के पूरा करून सफलता पावली। ये अभियान ए तो 15 जुलाई तक चले दे। ये उपलब्धि का जे मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय और महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सफाई हितधारक मन के बधाई दिला से। प्रदेश ने एबर टायर चो बिना आयरन केज व्हील बीती ट्रैक्टर मन एबर सड़क ने नी चले दे, ये चो ऊपरे रोक लगली से। परिवहन विभाग ये नियम के नी मानतो लोग ऊपरे चलानी कार्यवाही करे दे। असन टायर चो उपयोग बेड़ा बुता काजे सोझे बेड़ा ने करतोर नियम होली से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 3 भाषा नीति उपरे दिशा निर्देश जारी कर ले से। बोर्ड बाटले सांगलो रासे की कक्षा 10वीं चो ये समय चो बैच के नुआ भाषा नीति चो पालन नी करुक पड़े दे। बोर्ड ये भले बल्ली से की कक्षा 7वीं 8वीं अरु 9वीं ने पढ़तो ये समय चो पीला मन के बले कक्षा 10वीं ने आमरतो तक तीसर भाषा ने बोर्ड परीक्षा दे तो जरूरत नहीं रहे दे। बोर्ड बाटले बल्लो राशि की कक्षा हिसाब ले समान मन समय ने दिए जाए दे। मुख्यमंत्री IT फेलोशिप का जे ऑनलाइन आवेदन 7 जुलाई तक हो दे। ये योजना भीतर MTech डाटा साइंस अरु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रवेश धर तो चयनित पीला मन के हर महीना 50,000 रूपया फेलोशिप दिए जाए दे। ट्यूशन फीस जो पूरा खर्चा राज्य सरकार दे। मुख्यमंत्री IT फेलोशिप कार्यक्रम नवा रायपुर जो IIIT NR ने संचालित, हर महीना 50,000 रूपया फेलोशिप दिए जाए दे। ट्यूशन फीस जो पूरा खर्चा राज्य सरकार दे। मुख्यमंत्री IIT फेलोशिप कार्यक्रम नवा रायपुर जो IIIT NR ने संचालित।

0: कर ली से। काउंसलिंग विकासखंड स्तर ने 30 जून के होली होता है, जिला स्तर ने काउंसलिंग 3 जुलाई के और खास पिछड़ी जनजाति समूह अरु आरक्षित वर्ग काजे 4 जुलाई के अरु आरक्षित वर्ग काजे फिर 6 जुलाई के हो दे। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अरु अन्य पिछड़ा वर्ग चो पीला मन का जे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भीतरे ऑनलाइन आवेदन करतो 20 जून ले मूर होली से। आदिवासी विकास विभाग बाटले सांगलो हिसाब ले छात्रवृत्ति का जे ऑनलाइन आवेदन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल चो माध्यम ले करतो होय दे। हुताय नुआ आवेदन 1 अगस्त ले लिए जाए दे। बस्तर गोंचा महापर्व 29 जून ले जगदलपुर चो श्री जगन्नाथ मंदिर ने देव स्नान चंदन यात्रा पूजा विधान संगे मूर होली। एम होगा ने भगवान जगन्नाथ देवी सुभद्रा अरु बलभद्र चो पंचामृत चंदन अरु इंद्रावती नदी चो पवित्र पानी ले रुसुम हिसाब ले मंत्र जाप करून महा अभिषेक होली। एचे संगे भगवान चो अंसर काल बले मूर होली से जोन 14 जुलाई तक चले दे। ए समय ने श्रद्धालु मन भगवान चो दर्शन नी पाउक सक दे। आरण्यक ब्राह्मण समाज चो अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे सांगला कि बस्तर गोंचा पर्व भीतरे रुसुम हिसाब ले सपाई पूजा विधान हो दे। हुन सांगला कि 15 जुलाई के नेत्र उत्सव पूजा संगे भगवान जगन्नाथ देवी सुभद्रा अरु बलभद्र चो दर्शन मिरे दे। हुताय 16 जुलाई के श्री गोंचा रथ यात्रा पूजा संगे भगवान जगन्नाथ के सिरासार भवन ने बसातो रोय दे, जेथा 9 दिन तक दर्शन करतो लोग मन भगवान चो दर्शन करुक सक दे। बस्तर गोंचा समिति चो संरक्षक ईश्वर खंबारी सांगला कि 25 जुलाई एकादशी ने बस्तर गोंचा पूरा होय दे। सरासरी ने मूर खबर एक हार फिर मन की बात कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोग मन ले पानी के बचान राखतो काजे कैच द रेन अभियान ने भाग धरतो काजे गुहार करला। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भीतरे रूफ टॉप सोलर लगातो लोग मन के आगर बिजली चो लाभ मिले दे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा अपने बस्तर दौरा ने कांकेर नारायणपुर अरु कोंडा गाँव जिला चो दौरा करला और बस्तर गोंचा महापर्व देव स्नान चंदन यात्रा पूजा रुसुम संगे मूर होली। एचे संगे हल्दी समाचार बुलेटिन चो ये अंक था सरे से जुहार।
1: अभी आप सुन रहे थे हल्बी समाचार बुलेटिन। नमस्कार, जगदलपुर में अब पेश है मधुर गीतों की मधुरिमा।

कभी कभी मोहब्बत की शुरुआत शब्दों से नहीं बल्कि एक मासूम सी नजर से होती है। कोई अनजाना चेहरा कब दिल की धड़कनों का हिस्सा बन जाता है इसका एहसास भी नहीं होता, और जब प्रेम सच्चा हो तो पूरी दुनिया उसी एक चेहरे में सिमट जाती है।

जिंदगी की राहों में हर किसी को किसी ऐसे हमसफर की तलाश रहती है जो सिर्फ साथ ही नहीं चले बल्कि हर खुशी हर एहसास को अपना बना ले। कभी कभी कुछ मुलाकातें बिल्कुल अप्रत्याशित होती हैं जिसकी कल्पना तक न की हो। वही शख्स दिल की दुनिया का सबसे खास हिस्सा बन जाता है।

मौसम ने आज फिर कोई पैगाम सुनाया है, हवाओं ने दिल को मुस्कुराना सिखाया है। मौसम ने आज फिर कोई पैगाम सुनाया है, हवाओं ने दिल को मुस्कुराना सिखाया है। चलो कुछ दूर यूं ही गीतों के संग चलते हैं, चलो कुछ दूर यूं ही गीतों के संग चलते हैं। हर सफर को संगीत ने खूबसूरत बनाया है।

0: नमस्कार जगदलपुर, अभी आप हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिमी

0: राष्ट्रीय में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से

0: सहायता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है, तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है।

0: श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार। 20 श्रृंखला आज से, और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।

0: अभी आप कार्यक्रम लोक मंजरी में बस्तर के विभिन्न बोलियों में लोकगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम झुमझुमा में हल्बी लोकगीत। गायक कलाकार हैं दयो और साथी।
1: Hey, my son, do I take you some

Sotile, le, le, le, le, revelos, Sotile.

ಗಾಂಧಿ ಕಡೆ ಕಡೆ ಪೋಕನಾಥೂರು

0: झुमझुमा कार्यक्रम में अभी आप हल्बी लोकगीत सुन रहे थे। गायक कलाकार थे दयो और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का।

0: झुमझुमा कार्यक्रम में अभी आप हल्बी लोकगीत सुन रहे थे। गायक कलाकार थे दयो और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का

0: 12% GST लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
5: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
7: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा की सुनहरी में ऐसी हैं जिनकी कहानी जितनी दिलचस्प होती है उनका संगीत उतना ही अमर बन जाता है। आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं ऐसी ही एक फिल्म जिसका नाम है तलाश।

फिल्म तलाश सीने पर्दे पर आई सन 1969 में। फिल्म का स्क्रीन प्ले, स्टोरी, निर्माता और निर्देशक का सफल काम निभाया ओपी रलहान ने। एहसान रिजवी ने फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। अब फिल्म का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में।

फिल्म तलाश वो फिल्म है जिसमें रहस्य है, रोमांस और भावनाओं का सुंदर संगम देखने को मिलता है। पर्दे पर राजेंद्र कुमार का सशक्त अभिनय, मधुर संगीत और दिल को छू लेने वाली गीत, इन सब ने तलाश को अपने दौर की एक यादगार फिल्म बना दिया।

फिल्म तलाश का संगीत अपने समय की सबसे बड़ी खूबियों में से एक माना जाता है। इन मधुर धुनों को स्वरबद्ध किया था महान संगीतकार सचिन देव बर्मन ने, जिनकी रचनाओं में सादगी, मधुरता और

आत्मीयता का अद्भुत मेल सुनाई देता है। गीतों को अपने खूबसूरत अल्फाजों से सवारा था मजरू सुल्तानपुरी ने, और जब इन शब्दों को सुरों के साथ मिला दिया तो उन्हें अपनी आवाजों से अमर बनाया लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे, सचिन देव बर्मन और महेंद्र कपूर ने।

के बैनर तले फिल्म तलाश में अपने अभिनय का परचम फैलाया था राजेंद्र कुमार, जो राजकुमार राजू की भूमिका में नजर आए। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर मधु और गौरी के रूप में थी। इसके अलावा अन्य कलाकार थे ओपी रहलान, बलराज साहनी, हेलन, सुलोचना लटकर, जीवन, हरी शिवदासानी, मदनपुरी, टुनटुन और जयश्रीटी। फिल्म तलाश एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें प्रेम, बिछड़न, गलत फहमियों और जीवन की अनिश्चितताओं को भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी का केंद्र है एक संपन्न और संवेदनशील युवक राजेंद्र कुमार, जो जीवन साथी की तलाश में है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सरल, संस्कारी और आकर्षक युवती से होती है, जिसका किरदार शर्मिला टैगोर ने निभाया है। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच अपनापन और प्रेम का अंकुर फूट पड़ता है और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता जाता है। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी राह भी आसान नहीं होती। परिस्थितियां अचानक करवट लेती हैं, कई गलतफहमियां जन्म लेती हैं और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। किस्मत उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां प्रेम की परीक्षा भी होती है और विश्वास की भी।

फिल्म की कहानी आगे बढ़ते हुए कई भावनात्मक उतार चढ़ाव, पारिवारिक घटनाओं और अप्रत्याशित मोड़ों से गुजरती है। कभी उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो कभी बिछड़ने का दर्द। अंततः सच्चाई सामने आती है। गलत

कमियां दूर होती है और प्रेम अपनी मंजिल तक पहुंचता है। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भावपूर्ण कहानी के साथ साथ इसका मधुर संगीत है। सचिन देव बर्मन के संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के गीतों ने इस फिल्म को एक अलग पहचान दी। यही वजह है कि तलाश आज भी अपने गीतों और भावनात्मक प्रस्तुति के कारण पूरे सिनेमा के प्रेमियों के बीच याद की जाती है।

0: खेल रहे हो? शादी नहीं की, प्यार भी नहीं?
1: इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

0: एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पुरानी फिल्म तलाश के गीत। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय सुबह के 9:55 होने वाले हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम रायपुर से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सहित आज से देशभर में लागू हो रही है वीबीजी रामजी योजना। 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में करीब 183 रूपये की कमी की गई। और मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना आज से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में लागू हो रही है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार आजीविका संवर्धन और आधारभूत विकास को नई गति देने के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2026-27 के बजट में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कल 2 जुलाई को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड की गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रूपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त कर दी है। अब किसानों को पिछले खरीफ वर्ष की भांति उनकी पात्रता

के अनुसार एकमुश्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं किसी समिति में यदि स्टॉक की कमी है तो किसानों को किश्तों में यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की स्वीकृति जारी की है। इसमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक के शिक्षक शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 150 एमबीबीएस सीटों की मान्यता का नवीनीकरण प्रदान किया है। इससे नए सत्र में 150 विद्यार्थियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने आज प्रदेश के बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मारवाही, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा सहित कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा, प्रदेश के बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मारवाही, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा सहित कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज

0: और सरगुजा सहित कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवाएं पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। गुलशन कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं शीर्षक संगीत और आज का शीर्षक है बरसात। कार्यक्रम का पहला गीत कुमार शानू और अलका याग्निक का गाया हुआ फिल्म बरसात से सुनिए। गीत लिखा है जमीर ने और संगीतकार हैं नदीम शवन।

तो ये शीर्षक बरसात पर अभी आपने फिल्म बरसात का गीत सुना। अब अगला गीत सुनिए फिल्म गोपी किशन से। बोल समीर के हैं, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने, आवाज पूर्णिमा के साथ कुमार शानू की है।

गुलशन कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शीर्षक संगीत और आज का शीर्षक है बरसात। फिल्म का नाम अजनबी, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर, शब्द रचना आनंद बख्शी की और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

बरसात शीर्षक पर आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलशन में फिल्मी नगमे। अब फिल्म का नाम है पेंटर बाबू, जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और साथियों की। नगमा निगार हैं कमार जलालाबादी और मौसीकार हैं उत्तम जगदीश।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में पेश है बरसात शीर्षक पर आधारित फिल्म अंदाज का गीत। गीत लिखा है समीर ने और सुरीला संगीत दिया है नदीम शवन ने।

अभी आप कार्यक्रम गुलशन में शीर्षक बरसात पर आधारित फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम उर्दू में आज प्रस्तुत है हल्बी गीत। कलाकार हैं मेघनाथ पटनायक और साथी।

मेघनाथ पटनायक और साथियों का गाया आप सुन रहे हैं हल्बी लोकगीत। कार्यक्रम है गुड़दुम। लीजिए अब सुनिए अगला गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी, यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान, बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक, तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर

0: প্রায় 07782226666। ফোন ইন কিষাণবাণী, আপন মঞ্চো সওয়াল, আপন মঞ্চো কাহানি, খেতি বাড়ির চো জুবানি, আকাশবাণী জগদলপুর নে।
1: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दू में आज आप सुन रहे हैं हल्बी लोकगीत। गायक कलाकार हैं मेघनाथ पटनायक और साथी।

0: बस्तर की लोक गीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल्बी लोक गीत।
1: दस लाख की लॉटरी
2: मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, संगीत में एक ऐसा जादू है जो सीधे हमारी भावनाओं से जुड़ता है। एक पल में उदासी को खुशी में बदलना हो या फिर थकान को ऊर्जा में, संगीत हर परिस्थिति में राहत की तरह काम करता है। कभी कभी दिल की बात कहने के लिए लफ्ज कम पड़ जाते हैं, तब संगीत जिम्मेदारी संभालता है। और जब संगीत में एक ऐसी आवाज मिल जाए जो सीधे रूह को छू ले, तो खामोशियां भी गुनगुनाने लगती हैं। श्रोताओं, आज के एक ही कलाकार में हम बात करने वाले हैं उस कलाकार की जिसकी आवाज में मोहब्बत का सुकून भी है और जुदाई का दर्द भी। एक ऐसा गायक जिसने अपनी मखमली आवाज से हर संगीत प्रेमी के दिल में जगह बनाई। जी हाँ, वो गायक हैं इस नए युग में अपनी आवाज से अलग पहचान बनाने वाले मोहम्मद इरफान। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे संगीत की दुनिया में उनके सफर की, जिसमें उनके गाए गानों का आज भी कोई मुकाबला नहीं।

श्रोताओं, मोहम्मद इरफान का जन्म आज ही के दिन 1 जुलाई 1984 को तेलंगाना हैदराबाद में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद इरफान अली है। मोहम्मद इरफान ने अपना शुरुआती जीवन हैदराबाद में ही बिताया और शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की। बचपन से ही संगीत में रुचि होने के कारण इन्होंने छोटी उम्र से ही संगीत की कक्षाएं शुरू कर दी थीं, जहां उनके संगीत गुरु श्री रामाचारी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें निखारा। इरफान का संगीत के प्रति प्रेम और समर्पण ऐसा था कि स्कूल के दौरान और उसके बाद भी वे वार्षिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने से पीछे नहीं हटते थे। उनका यही समर्पण और जज्बा वो कारण बना कि उनकी आवाज़ को एक दिन पूरी दुनिया ने सुना और सराहा।

मोहम्मद इरफान ने बॉलीवुड में सीधी एंट्री नहीं ली, इसके लिए उन्होंने कई टीवी रियलिटी शोज में अपनी आवाज का लोहा मनवाया और बड़े मंचों पर शीर्ष प्रतियोगी के रूप में अपनी पहचान बनाई। इनमें से एक बड़े शो के इरफान विजेता भी बने। इसी दौरान मशहूर गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम ने हैदराबाद के एक संगीत संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इरफान की आवाज सुनी। वे उनकी आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संगीतकार एआर रहमान को इरफान का नाम सुझाया। इसके बाद इरफान ने एआर रहमान के साथ काम करना शुरू किया, जहां वे निर्देशक मणिरत्नम की फिल्मों के लिए बैकग्राउंड आवाज दिया करते थे।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का हमारे कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद इरफान पर। श्रोताओं, इरफान ने अपने करियर की शुरुआत की साल 2010 में आई मणिरत्नम द्वारा निर्देशित फिल्म रावण से, जिसमें उन्होंने गायक कार्तिक के साथ रिकॉर्डिंग की थी, जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, उड़िया और बांग्ला भाषाओं के जाने माने गायक हैं। उसी साल इरफान ने संगीतकार मिथुन के साथ फिल्म लम्हा में 2 गाने भी गाए, लेकिन मोहम्मद इरफान को असली पहचान मिली साल 2011 में आई फिल्म मर्डर 2 के गाने से। ये गाना जिससे मोहम्मद इरफान के साथ नए युग के मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड में शुरुआत की थी। मिथुन का संगीतबद्ध किया ये गीत सुपरहिट रहा और मोहम्मद इरफान और अरिजीत सिंह का नाम पूरे बॉलीवुड में छा गया।

फिर मोहब्बत गीत की जबरदस्त सफलता के बाद मोहम्मद इरफान के करियर को उड़ान मिली और इन्होंने हिमेश रेशमिया, साजिद वाजिद, जीत गांगुली सहित कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ काम किया। इरफान के लिए साल 2014 काफी सफल रहा। इस साल उन्होंने यारियां फिल्म से बारिश, सिटी लाइट फिल्म के लिए मुस्कुराने की वजह, कॉन्प्लक्ट वर्जन और एक विलन से बंजारा जैसे हिट गाने दिए। साथ ही सलमान खान की फिल्म किक में इरफान का गाया गीत भी सुपरहिट रहा। साल 2014 में ही फिल्म दी एक्सपोज से संगीतकार हिमेश रेशमिया का गीत, जिसमें इरफान ने अपनी आवाज दी थी, उस साल के सबसे हिट गीतों में शामिल था। गीतकार समीर कहते हैं कि ये गीत उनका और हिमेश रेशमिया का सबसे बेहतरीन गीत है, जिसे मोहम्मद इरफान की आवाज ने और भी खूबसूरत बना दिया।

श्रोताओं, मोहम्मद इरफान बॉलीवुड के अलावा तेलुगु और बांग्ला फिल्मों में भी अपनी आवाज दे चुके हैं और आज भी संगीत की दुनिया में सक्रिय हैं। श्रोताओं, मोहम्मद इरफान की आवाज में वो सुकून है जो भागती दौड़ती जिंदगी को थोड़ी देर के लिए रोक देती है। दुआ है कि उनके सुर यूं ही हमारे दिलों को छूते रहें। कार्यक्रम में जाते जाते आइए सुनिए फिल्म यारियां से मोहम्मद इरफान का गाया ये खूबसूरत गीत।

0: एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम अभी आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद इरफान पर।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है गुजरात प्रदेश से। उदय मजुमदार का संगीत, आवाजें उदय मजुमदार और रेखा त्रिवेदी की।

उदय मजुमदार का संगीत, आवाजें उदय मजुमदार और रेखा त्रिवेदी की। सबरस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है गुजरात प्रदेश से। उदय मजुमदार का संगीत, आवाजें उदय मजुमदार और रेखा त्रिवेदी की।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

कार्यक्रम सबरस में आप सुन रहे हैं विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत। इसमें सुनिए राजस्थान प्रांत से सीमा मिश्रा और संजय भागी का गाया यह गीत, संगीत निर्मल मिश्रा का।

0: कार्यक्रम सबरस में अभी आप सुन रहे थे विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सहित आज से देशभर में लागू हो रही है वीबीजी रामजी योजना। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई नई दरें आज से लागू हो गई हैं। और बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना आज से

0: सहित देशभर में लागू हो रही है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई बिजली की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक बिल देने होंगे। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है। कृषि पंपों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई हैं। इसके साथ ही नए टैरिफ में कई बदलाव किए गए हैं। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रूपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की स्वीकृति जारी की है। इसमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक के शिक्षक शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। छत्तीसगढ़ शासन ने कोरिया जिले के सोनहत इलाके में बहुचर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि 16 जून को नौगई निवासी भरत उर्फ लाला सिंह सहित नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की कार में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने आज प्रदेश के बलरामपुर, बिलासपुर, जीपीएम, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा सहित कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। जगदलपुर जिले के अंतर्गत महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा पर वन्य जीव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, डब्ल्यूसीसीबी, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो बाघों के खाल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में आरोपियों के ठिकाने से पेंगोलिन के शल्क भी बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सहित आज से देशभर में लागू हो रही है वीबीजी रामजी योजना। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई नई बिजली की दरें आज से लागू हो गई हैं। और बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
2: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा

0: हाँ, तो कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब भाई भाई बहन मन के मैं मैना मती करें से जुहार। आर फिर रेडियो कटा कटा बसलो नानी नानी पीला मन के मोचो बाटले खूबे खूबे माया। तो नानी नानी पीला मन बोले तो बड़े बड़े कलाकार बनुआत, ये तो सफाई जानू से ने बोलो ने कला जो ना है असन गुण है जेके सिखुन भाती लोग मन आप लो चीना आप लो पहचान के खिंडिक अलगे संगाउन देसुत। आरु ये तीज असने निमिरे कोनी बोले कला के हुनर के सीख तो काजे हम के खूबे अभ्यास आरु लगन ले उनके सीखुक लागे दे तेबे अमी कोनी बोले कला के अच्छा ले सीखुक सकूं दे। आरु कला जो ना है हुन हम चो कलाकार मंचो गोटोक असली पहचान रहुआ है। आरु जसन की अमी कोनी बोले तीज के घेनु से नहले धरू से जाले हुन काय हो से कि बोलो ने उन कला चो जोन रह से जसन की हुन माटी चो कलाकार भाई बहन मनासोत हुन मन माटी चो कला के बनाउन भाती जसन की हुन मन जो चीना होन जैसे कि हुन कलाकार जो ना माटी चो कलाकार आए बोलून भाती। तो जोन तीज के कलाकार भाई बहन मन बनासोत हुन चो पहचान बनून जैसे। तो असन हिसाब ले जोन बले कलाकार भाई बहन मन रहसोत हुन मन आप लो जोन पहचान है हुन कला चो माध्यम ले हुन मन चो सफाई बाटे चीना बाना होन जाए से। तो असन जोन कोनी बले कला के सीखुन भाती कोनी बले हो भाई बहन पीला झीला जोन बले आए हुन आप लो कला चो दुनिया ने आप लो पहचान चीना बनाओ सकुआत। तो देखा भाई बहन मन आम के बले सफाई लोग के बले कहीं नहले कहीं गुण के सीखू रहतो रहे काहे कि हुन हमके हरिक बले दे से। आरु जसन कोनी कलाकार मन के हमें सुनू से हुन गाय से नाले हुन बजाय से नाले कोनी मूर्ति बनाए से उनके देखले न कितरो हरिक लागे से। तो असने हुन मन के बले पूरे आंतो काजे आपन मन के कोशिश बले करतो रहे कि जोन बले कला के सीखला सोत हुन मन पूरे एउन दूसर लोग मन के बले उन आप लोग कला मन के सिखाओ असन बले आम के कोशिश करते रहते रहे। तो ये जोन हो से कला हम जो बोलो ने कलाकार चो गोटोक असली पहचान असन चीना असन बनुन जाए से। तो देखा मैं तो गोठियाते रहने मंतर और बले गोठ मना से आले ये गोठ मन के सुनू देखू।
1: भाई साहब आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: नीति का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: हाँ तो भाई भी मन ये तो रहे गोठमन ने मंतर देखा जसन की आमी कला और कलाकार जो गोठमन के था मूर करूं से सांगू से तो असने ही आमी कई जन कलाकार जो उन मन जो जीवन जो जानकारी बले एथाले देऊं से तो असनी ची आम जो आजी जो जोन कलाकार आसोत उन मन जो नाव के तो तुम्ही ये गीत के सुनन भाती चिता उसका से तो या हुन मन चो स्वागत करूं हुन चो ए गावले गोटो गीत ले और हुन मन गाव सोत पंडवानी तो तुम्ही तो असनी चिताला होती मंतर हुन चो बारे ने मैं आगे सांगेंदे आले सुनू हुन चो गावलो ये पंडवानी के।

जब शंकर जी ना दिखे तो अर्जुन बड़ा उदास हो गए। कुछ दुबी के रस पिए, कुछ कंदमूल फल खावे और कुछ समय ले अर्जुन ऐसे दिल बितावा थवे कहकर। जब आत्मा ले ब्रह्मांड में चढ़ाकर शंकर के ध्यान लगावे तो कैलाश पर्वत डगमगाए, पार्वती जोर से चिल्ला के कहे, भोला भोला अरे का हो गया तोला। कहते

0: भोला। अरे अर्जुन छत्री पुत्र है और वो श्रद्धा भक्ति लगा के तुर ध्यान लगा ही तो का हमार कैलाश पर्वत डगमगा जाही। शंकर हंस के कहे पार्वती, आदि अर्जुन चाहे ना तो तन मन धन दे के पूजा करे तो तीनों लोग खिलाए के ताकत है। कैलाश पर्वत ला कौन पूछा है? पार्वती गुस्सा के मारे कथे ये गलत बात है। शंकर कथे तेनी पत्यावत तो चल परीक्षा ले बो।
1: अच्छा।
0: तो कैसे परीक्षा ले जाबो? अरे बोलो शिकारी ना चलेगा, मैं हवन हूँ शिकारी, ऐसे बोला ना तो बोलेगा। तो शिकारी बन जा मैं शिकारी। शंकर के पास में बैला गाड़ी तो रही से कका, ओकर पास माँ मोटरसाइकिल कुछ नहीं। पार्वती ला बैला गाड़ी में बैठार के सुकर नाम राक्षस ले बरहा बना के ओकर ऊपर में बांध छोड़ के और निशाना जमा के जब चले तो बरहा आगे आगे और पार्वती शंकर के गाड़ी बैला पाछे पाछे। अरे गर गर गर गर गर गर दौड़ावे भोला पार्वती गलो चढ़े। शंकर कथे पार्वती वो बने खुटल धरे रबे जझरंग ले गिरबे मैं नहीं जाना।

चिल्लावे तो अर्जुन के ध्यान टूट गए और अर्जुन के जब ध्यान टूटा तो गुस्सा के मारे

हाँ तो भाई बहन मन, ये तो ना सांगू की नहीं पड़े ने, बल्ले ने इतरो सुंदर जोन आमचो छत्तीसगढ़ राज चो जोन गोटुक गाँव तोर कला है पंडवानी, उनके आप लोग छत्तीसगढ़ ले धरुन भाती देश विदेश तक नेतो बीती ये कलाकार रहोत तीजन बाई पंडवानी गायिका। और हुन मन महाभारत चो जित्रो बल्ले संग मनाए हुन मन के हुन पूरा भाव भंगिमा समेत हुन मंच ने दखाते रहोत, जसन जोन बले कसन करे से हुन जो भाव के और अभिनय करुण भाती हुन मन सांगते रहोत, असन महान जोन पंडवानी गायिका चो गोट के आजी हमी आजी चो कलाकार ने गोठियावा। तो तीजन बाई भारत चो छत्तीसगढ़ राज चो गोटोक प्रतिष्ठित आरु विश्व प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका आत। पंडवानी महाभारत चो कथा मन के संगीत आरु अभिनय चो माध्यम ले प्रस्तुत करतोर गोटोक पारंपरिक कला होय से, आरु हुन ये कला ने महारत हासिल करतो देश चो पहिल महिला कलाकार आत। और ये मन चो जीवना जोनाए तीजन बाई चो जन्म हुन 8 अगस्त 1956 ने छत्तीसगढ़ चो दुर्ग जिला चो मनियारी गांव ने हो रहे। ये मन चो आया बाबा चो नाव रहे हुनुक लाल पारधी और माए चो नाव सुखवती देवी। और ये मन पीला बेरा ले ची आप लो नाना ब्रजलाल संगे महाभारत चो कहानी मन के सुन तो शौक रहे। हुन मन नानी उमर ले ची पंडवानी गाँव मूर करूरला। हुंचो समाज ने हुन बेरा मेहरार मन के पंडवानी गातो काजे हुन वर्जित रहे बोले गाँव नहीं देते रहोत। जेबे हुन सार्वजनिक रूप ले गाँव मूर करला तो हुन मन के आप लोग ची समाज ले बाहरे निकराऊं दिला। अरु ये मन जो नाथ हुन पंडवानी शैली ने जसन गाय सोत हुन बेदमती शैली जोन थाने बसुन भाती गाय जाए से अरु कापालिक शैली जोन थाने मंच ने अभिनय करुण भाती कथा के सांगे जाए से इन दोनों शैली ने एमन पारंगत रहोत आसोत। अरु हुन गाते समय तंबूरा गोटोक वाद्य यंत्र रह से तंबूरा बजाउन बजाउन पूरा अभिनय के अरु प्रसंग के हुता सांगुआत। अरु आप लोग शक्तिशाली आवाज अरु भाव भंगिमा ले महाभारत चो दृश्य मन के बिल्कुल जीवता जीवत करुण देसोत। अरु ये मन चो उपलब्धि मन के अरु सम्मान मन के फेर गोठियावा मानतर हुन मन चो गावलो गोटोक पंडवानी आउर सुनू ते बतले।

0: सौंदर्य आरती सजावे। हे भगवान, मैं आस कर रहे हूँ मोरी आस के चीज ला निराश नहीं करके तय आगे।
1: अच्छा,
0: सुंदर आरती उतार के और सुंदर पिड़ुआ में बिठा कर,
1: अच्छा,
0: और भगवान के लिए नाश्ता का लाए रहे।
1: हाँ?
0: सिर्फ एक दर्जन केरा।
1: अच्छा,
0: अरे वो केरा ला प्रेम भरी गोद में बिठा के।
1: हाँ?
0: और विद्वाइन का कर दिखावे।
1: हाँ?
0: सुन ले।

0: भगवान लखवावे और जब मैं गुदाला जमीन में मड़ावे वक्त के समय विदुर भक्त पहुँच गए।
1: अच्छा,
0: अरे विद्रोहीन ले जोर से ललकार बोले, विद्रोहीन अरे ते काबू तक करत है।
1: अच्छा?
0: विद्रोहीन बिचारी चौंक के कहते का हो गए महाराज। अरे का हो गए महाराज वाली, भगवान ला सबे फोकलाल खावा डरे।
1: अच्छा?
0: और जमीन में गुदाल मरा डरे। तब के दारी विद्रोहीन भगवान के चरण ले पकड़ के कहते मुहान मोरे भरे।

0: दोनों हाथ जोड़ के कहे महाराज आज मोर भरे अपराध ला क्षमा कर दे देगा भगवान कहे विदुर मैं तीन जगह खाना खाए वैसा खाना कोनो जगह नहीं मिलेगा
1: अच्छा
0: एक तो केरा तुम्हार घर के और दूसरा सेवरी घर के बोई और सुदामा घर के तांदूल ये चाउर बड़ सुंदर मिठाई सोमे मैं भरपूर पेट खाए पर काकरो जगह मोला नहीं
1: अच्छा
0: मैं केवल भक्त के भूखा काकरो धन

0: के सेवा ला करे कका। बड़े फजर होवे तो विद्रोहन कथे आज सूर्य देव जल्दी उगे तैसे लागते हो। कोई एक प्रेम के मारे विद्रोहन खिसियावे सूर्य देव जल्दी उगे तैसे लागते दाई।
1: हाँ
0: भगवान के संग बने गोठियान भी नहीं।

0: राजा दुर्योधन बोले बिलवा ते मैं बार बार तोल चेता था ना पांडव बात के बात एक मत कर की के फिर ते ओकर सदारी कूदे लागे हस ते भग जा बिना लड़ाई में राज नहीं देव जी जा का कर हित कर ली भगवान के थे लड़ाई ते नहीं देखे दुर्योधन जिस समय भीमसेन के गदा और अर्जुन के गांडी धनुष और नकुल सादेव के खड़ंग तलवार चढ़ी था तब मूरी के समान सयाना हा कट जाई राजा
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 to 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग हो से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 to 4 तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
4: हाँ तो भाई बहन मन काय सुंदर गोट मन संगे संगे पूरे जुन गीत रहे पंडवानी उन तीजन भाई कितरो सुंदर उनके प्रस्तुत करते रहो ने आरो उनके जैसा नामी सुनो से तो आसान लागे से कि दखलो महा ने तो जैसन कि उनके दखलो ने कितरो हरिक लागे से और कितनो बल्लो ने उनने हमी होता बल्लो ने हरिक ने आम के खूबे अच्छा बल लागे से कि आम जो जोन पंडवानी जोन शैली है उन इतरो सुंदर गायिका तीजन भाई आसोत बलून भाती तो इतरो सुंदर ये शैली के सीखुन भाती हुन आप लो छत्तीसगढ़ संगे संगे उनके देश विदेश तक ले अमरा ला सक। तो तीजन भाई उनचो कला के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हुन मन अमराला और उनके खूबे सराहना बले मिरली और हुन मन के कएक ठन पुरस्कार इनाम मन बले मिरली से जसन की पद्मश्री इनाम उनके मिल सम्मान मिलू रहे 1988 ने असनीची संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 ने और पद्म भूषण सम्मान 2003 ने और डॉक्टर टी बाल सरस्वती स्मृति पुरस्कार 2015 ने पद्म विभूषण पुरस्कार 2019 ने और डी लिट चो मानद उपाधि बिलासपुर विश्वविद्यालय बाटले हुनमन के मिरू रहे तो इतरो सम्मान बले मिरली से और हुन कला के आप लो राज संगे संगे सपाय बाटे बगराय सोत बले। तीजन भाई आप लो कला चो प्रदर्शन जो चाहे भारत नहीं ची नहीं बल्कि फ्रांस इंग्लैंड जर्मनी और स्विट्जरलैंड जसन कएक ठन देश मन ने बले करला सोत और दुनिया भर ने भारत चो लोक कला और संस्कृति चो परचम लहरातो काजे हुन मन के हर हमेशा याद करे जाए दे। तो दखा हुन चो असन पंडवानी गीत के फिर गोटोक सुनुन दखूं और हुन चो मान करूं।

0: धर्मराज सच में ते बड़ा कल्ले दर दर ठोकर खाए है
1: हाँ?
0: जंगल झाड़ी में जाके दिन ल बिताए है
1: हाँ?
0: कनूल फल खा के निभाए है कहे धर्मराज
1: अच्छा?
0: और धर्म के बंधन में बंधा के राजा दुर्योधन ला समझा दी होगा। श्री कृष्ण जी
1: हाँ?
0: जब हाहो का है तो द्रौपदी अपन केसला पकड़ के कथे मोहा
1: हाँ?
0: मुर्या

0: मतलब सुन के भी सिर जुए बड़ा प्रेम के साथ मटकाने लगे। भीमसेन कहते भैया कन्हैया ए कन्हैया कन्हैया के तरफ कब हो मोहन देखे तो देखे उस समय काका है मोरो तरफ जरा ध्यान लगा लेबे।
1: अच्छा
0: कन्हैया पर

0: ध्यान लगा देवे।
1: अच्छा
0: भीमसेन के भी परन लगे बड़ा खुशी हो वह। अंत में अर्जुन हाथ में गांडी धनी सुथा कर चर्चा कहने लगे, मुरारी
1: अच्छा
0: मोरो तरफ जरा ध्यान लगा ले।
1: हाँ
0: मोर

0: पंजाबा लागे वाली
1: कुल सहदेव कहे मोर खड़ंग और तलवार कोती मोहां पर ध्यान लगा ले बेगा। ये श्री कृष्ण के बात है, सबके सब अपन अपन बारे ले बोले।
0: हाँ?
1: तो धर्मराज के थे देख भगवान।
0: हाँ?
1: और कोती बने सुंदर चेत कर देवे ना।
0: हाँ?
1: जावे जावे पर राज लमूर मंगा देवे महाराज।
2: हाँ तो भाई बहन मन, आजी चो कलाकार ने आमी सुनते रलु तीजन बाई चो गोठ मन के आरो हुंचो गावलो इत्रो सुंदर पंडवानी गीत मन के। तो असन कलाकार चो काजे आमचो सफाय मन चो मान आसे हुन मन काजे आरो आजी काली हुन मन चो सेहत खिंडी बोलो ने स्वास्थ्य आजी का अच्छा नहीं है। तो हुन काजे सफाय लोग हुन मन चो काजे जसन की हुंचो स्वास्थ्य काजे आमी शुभकामना करूँ प्रार्थना करूं कि हुन झट के अच्छा हो जाओ बोलून भाती ने। तो आज ये गोट मन संगे संगे कला और कलाकार कार्यक्रम चो समय बले हो से तेबे जातो पूरे कला और कलाकार कार्यक्रम सुनतोर सब फाय गांव करी भाई बहन मन के मैं मैनामती करें से जुहार।

और कलाकार। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

तो घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सब भाई बहन मन के, दीदी मन के, जहुरिया संगवारी मन के, मैं मैनामती करें से जुहार। आर फिर रेडियो कटा कटा बसलो नानी नानी पीला मन के मोचो बाटले खूबे खूबे माया। तो देखा बहिन मन, मैं तो यथा अमर ले आरु देखा बुता संगे संगे तुमन मन रेडियो चालू करुन भाती मोचो गोट के बोले सुने साहस होती ने। तो यथा का एक ठन गोट बात संगे संगे ज्ञान ध्यान चो गोट संगे संगे गीत गोविंद सफाई धरुन भाती मैं आजी यथा इले से। तो देखा बहिन मन कि कई ठन गोट बात हमी करूँ से तो हुन गोट बात संगे संगे कहे कि आजिकल देखा घाम चो सरती आरु ये बरसा चो एती होली से आरु बलो ने केबे केबे पानी मारे से आरु मारते जाए सने आरु हम चो बेड़ा काम बोले मोर होली से रसन बेरा कई ठन स्वास्थ्य चो समस्या मान जुड़ खोखली जर रसन हो ची आए ने। तो पहल चो हम चो जोन सियान मन रहोत हुन मन कई ठन नानी नानी बीमार से मार के हुन घरे ची चो ओखत ने हुन मन अच्छा करुन देते रहोत। तो असनी ची हुन मन के आमी बलू से हुन दादी आई मन चो जोन घरेलू उपाय मन रहे हुन मन कई ठन नानी नानी गोट के हम चो लगले गुचाउन दियोत। तो जसन की हम चो सियान मन बलसोत कि कई ठन बीमार से मार चो इलाज जो ना है हुन आम चो रांधा खोली ने आसे बलून भाती ने। तो रांधा खोली बलो ने आमी जोन बले तीज के खाऊं से पीऊं से हुन सफाय आम चो देह हाथ पाए काजे बल बफू दे से और कई ठन रोगी बीमारी ले आम के घुचाए से बले। तो असनी ची नानी नानी गोट के आजी

0: जो इलाज जो है हूँ आम जो रांधा खोली ने आसे बलून भाती ने तो रांधा खोली बलो ने आम जोन बोले तीज के खाऊं से पीऊं से हूँ सफाए आम जो देह हाथ पाए काजे बल्ब फुदे से और कई ठान रोगी बीमारी ले आम के घुचाए से बोले तो असनी ची नानी नानी गोट के आज से और कई ठान रोगी बीमारी ले आम के घुचाए से बोले तो असनी ची नानी नानी गोट के आज दिलो ने कैक जो खोखली हो से नहीं खूबे खोखली हो से हूँ बोले अच्छा हो जाए से तो असनी ची देखा हूँ चामड़ा चामड़ी ने कहीं रोगी बीमारी होली से जाले हूँ हरदी के घसुन दिलो ने कई ठन रोगी बीमारी हूँ चामड़ा चो नसुन जाए से उसनी ची कई ठन जसन की हूँ तुलसी चो पाना है हूँ बोले कई ठन रोगी बीमारी ले हम के आराम दे से आरु जसन मैं बोल ले कि सब पाए कई ठन बीमार से मार चो उपाय जो ना है हम चो रांधा खोली ने रहुआ है बोलून भाती तो उसने कई ठन मसला मन जो हम ही खादी ने डारू से हूँ मसला मन बोले हम के कई ठन बीमार से मार ले लड़तो चो ताकत दे हुआ है जसन कि हूँ हरदी के तो मैं सांग ले आदा आए हूँ अजवाइन बरसोत हूँ आए हूँ गोटोक तेज पाना असन रह से हूँ आए और गोटोक मीठा लकड़ी असन रह से नहीं हूँ बोले कई ठन बीमार से मारने जसन बीपी आए हूँ मन के बोले कम कर तो काजे काम है ऐसे बोलो ने ये मन के खिंडिक पानी ने उखड़ाउन भाती हूँ पानी के सीतर करुन पीऊ तोर ले कई ठन बीमार से मार नस्ते जाए से पानी नहीं उखड़ा तो काजे जसन की अजवाइन आए सौंफ आए लौंग आए और आदा आए उनके मिसाउन भाती पानी ने उखड़ाउन भाती उनके बिहाने सांझ पर पीऊन दिलो ने कई प्रकार जो उन कफ जो बीमारी मन बोले न सुन जाए से तो असन नानी नानी वाट के करुण भाती हमी नानी चुनी जो उन बीमार से मार होते रह से उनके हम तो दादी आई मन जो नुस्खा के बोलो ने इलाज के आप लोग अपना उन भाती बोले गुचा उग सकूँ और अच्छा रहू सकूँ बोलो ने आप लोग स्वास्थ्य के नंगत करू सकूँ ने मंत्र आगर होली जाले आम के डॉक्टर के देखा तो जरूरी ची आए ने तो देखा भाई बहन बहन मन दीदी मन असन गोट मन के आम के कर तो राय और खिंडिक चेतू रहो राय कि हूँ बीमार से मार आगर नी बाढ़ हो तो देखा गोट मन तो मैं गोठियाते रहें दे मंत्र और बोले गोट मन आसे आले के सुनू देखू
1: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना दुमीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 to 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग हो से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 to 4 तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा आमचो फोन नंबर 7-8-2-2-2-2-6-6-6 फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने
5: जीएसटी परिषद आप लोग 56वां बसका ने देह पाए लागून सुविधा और सामान के सस्ता करून देश चो खुबे लोग मन के सहायता कर ली से डायबिटीज बीमारी चो राजधानी बल तो भारत के ए बीमारी चो बीमार लोग मन का जे रोज दिन चो जरूरत बन लो ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप सुपरे जीएसटी चो दर ने कम कर तो रोली से असने ब्रेस्ट कैंसर बलो ने छाती चो कैंसर बीमारी संगे अस्थमा चो इलाज ने काम एतो भी थी उपाय थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स उपरे बलेबल टेक्स चो दर के कम कर तो रोली से
0: हाँ तो बहन मन देखा इतरो जन गोठ मन आए हुन मन के आमी सुनुन भाती सीखूं से और कई ठन नुआ नुआ जानकारी मन के बोले धरूं से तो देखा असनी ची हमी एथाले बोले कई ठन गोठ मन के सीखूं दे और फिर हरिक ने बोले रहूं दे तो मैं बोलते रहे सफाई गोठ मन संगे संगे गोटो गीत

हाँ तो देखा बहन मन कितरो सुंदर गीत रहे आरु फिर गीत के गावते रहत गेल मनी देवी आरु हुंचो संगवारी मन। तो देखा हमी कैक ठन काम बुता हमी करूँ से बहन मन करूँ से आरु कैक लोग मन आपले पायने ठिया बले होला सत आरु नुआ नुआ वाट मन ने आरु नुआ नुआ काम धाम मूर करुण भाती लोग मन पूरे एते जासोत। तो असनी ची आमचो गोटोक बहन आसोत हुन कविता बले लिखे से आरु हुनके पढ़े से बले। तो असनी ची आमी हुन बहन के था हाक दिलु से हुन मन चो नाव आए श्रीमती डालेश्वरी पांडे हुन मन आपलो हल्बी कविता।

জরা বলে জানে নাই লেখি পাঠর লেখি দেশে।

हाँ, तो काय सुंदर ये कविता पाठ करते रहत बहिन डालेश्वरी पांडे। तो देखा बहिन मन, ऐसा ना है कि इतरो सुंदर ये कविता मन के मन लिखू रला, और काय सुंदर ये था गुण, बोलो ने गुण तो बोले गोठ मन ये था रहे ने। तो उनके कविता के तो हमी सुन लू मानतर देखा हमसे बहिन मन घरे रहून बाती भले कई एक ठान काम बूता करते रहुआ, बोलो ने आजिकल तो बेड़ा चो बूता आगर होली से ने, और कई एक बहिन मन तो घरे रहून बाती हूँ स्व सहायता समूह बनाउन बाती उताले आमदनी भले कमाए सोत, कई एक ठन जसन कोनी हूँ फुटू आए आरू नहाले हुन छाती आए हुन मन के बोले घरे रहून उनके बढ़ा सोत हुन चो कमानी कर सोत, आरू असने बेड़ा ने तो धान पान हो ची आए संगे संगे बाड़ी ने बोले हुन मन काम कमानी करुआत। तो असन कोनी बोले काम के मूर करुन भाती उनके अच्छा ले कर तो हम जो विश्वास रलो ने हुन अच्छा ले हो आए, तो कोनी बोले काम के अमी करूँ हुन बाड़ती देउची आए। तो असन विश्वास करुन भाती बहिन मन बोले घरे रहून भाती बोले कई एक ठन अच्छा अच्छा काम के मूर करुक लाए सकुआत। तो देखा बहिन मन काम बुता तो करतो जाए संगे संगे आप लोग देह हाथ जो बोले स्वास्थ्य मन जो बोले ध्यान संगातो रहे, और फिर अच्छा रलू जाले अच्छा ले काम बुता हो दिने, तो अरु अच्छा रलू अच्छा ले काम कर लू।

ले हरिक बोले लागे दे तो असनी हरिक ने फिर गोटो गीत तुमन मन का जान ले से आरु ये गीत के गावला सोत चंदन कश्यप आरु हुंचो संगवारी मन तो आले सुनो ये गीत की।

हाँ, तो काय सुंदर ये गीत रहे। आरु ये गीत के गावते रहत चंदन कश्यप आरु हुंचो संगवारी मन। तो देखा बहिन मन इतरो सुंदर गोड बात संगे संगे हमें बलते रहे कि जित्रो बले तुमन मन काई नहले काई नुआ काम नुआ वाट मन के सीखुआस जाले हुन तुम चो काजे अच्छा रह दे। आरु असन एबे चमास मेरा अमरे से बरसा बेरा अमरे से तेबे ये नए सब पाए काम बुता संगे संगे आप लो दे हाथ पाए स्वास्थ्य चो बले ध्यान के संगावा अरु पीला झीला घर परिवार के बले अच्छा ताजा जिनिस मन के खुआ तो रहे पियू तो रहे पानी बले सफा पियू तो रहे बोलो ने स्वच्छ सफा अरु खादी बले ताजा असन आम के जीवना के बना तो रहे। अरु यही संगे संगे देखा मचे जा तो समय बले हुए से तेबे घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सब पाए बहन मन के दीदी मन के जहरिया संगवारी मन के मैं मैनामती करें से जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के एक बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा की 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2000

0: 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चुकूट।
2: सपाय सुनते हो खेतीहार दादा दीदी मन, तुम्ही तो सपाय जानास कि धान चो फसल संगे संगे खेती कमानी का जे साग चो फसल बोले खूबे जरूरी है। और जसन की जमियाने जुगे करून भेंडी, कुमड़ा और लाहा बीती साग, जसन की लाऊ, काकड़ी, करेला, ए सपाय चो कमानी होए से। और ए सपाय साग ने आम के नगद आमदनी बले मिरे से। जसन की भेंडी बले गोटोक नगद फसल आए, मानतर ए साग ने कयक ठन रोग राई बले धरे से और ए फसल के खूबे नुकसान करे से। और ए चो कसन दखा रखा करवा ए गोट के बले आमी तुमके सांगू से। जसन की सबले पहिल भेंडी के फुतका नाव चो कीड़ी जो परको खूबे रह से। ए कीड़ी नानी नानी और हरदिया रंग चो होए से। और ए कीड़ी मन रस के चुहकुन सपाय साग चो कमानी के खूबे नुकसान करे सो। और ए कीड़ी भेंडी पाना चो खाले रह से, जेचो ले बूटा चो बाढ़ ठेबुन जाए से और फर बले खूबे कम हो से। ए चो रोकधाम काजे फास्पो मीडान 85 EC 200 ले धरून 250 मिलीलीटर नहाले डायमिथेट नाव चो जोन ओखत रह से, एके 30 EC 650 ले धरून 750 मिलीलीटर चो मात्रा ने छिचुन देतो राय। मांतर ए फसल फरतो समयाने इंडोसल्फान 35 EC नहाले मेलाथियान 50 EC के 1 लीटर 2.5 एकड़ चो हिसाब ने छिचुन देतोर हो से। दुआ ओखत डारतो जोन 5 दिन चो पाछे फर के टोड़तोर हो से। तेका दुआ ओखत ने खूबी मात्रा ने दुआई रह से तो तुरते पाछे हुनके नी टूटा तो रहे 5 दिन चो पाछे फर के टोड़तोर हो से। फर के काना कर कीड़ी खूबे नुकसान करे से। एक कीड़ी मन शुरू समयाने फर चो छाली चो ऊपरे काना करून भीतरे अलून गुदा के खाए से। जे चोले पाना कमचुन जाए से, जे चोले बूटा चो ऊपर चो जो खेंदी आए हुन बले सुखुन जाए से। फूल तो समयाने कीड़ी चो प्रकोप जुगे होए से, जे चोले फल फूल बनतो पहिल ची नसुन जाए से। एचो बले दखा रखा करतो काजे कीड़ी बीती जोन बूटा के झिकुन देतो रहे पाछे हुनके जरान देतो रहे, जे चोले कीड़ी बले मरुन जादे। फर बेरा कीड़ी चो प्रकोप होतो समयाने फास्पो मिडान नाव चो उखत होए से, एके 250 मिलीलीटर नहाले कार्बोरिल 50% झपके घोरी भोतो बीती गुंड के 1.5 किलो के 2.5 एकड़ चो हिसाब ने बिखरून देतो रहे। सबले पहल तो फर तोड़तो पाछे इंडोसल्फान 35 EC के 1200 मिलीलीटर के सिंथेटिक पायरेथाइड, जसन के रिप कार्ड, डेसिसिस, सुमी मिसडान, सिम्बूस के 300 ले धरून 500 मिलीलीटर 2.5 एकड़ जो हिसाब ने छिचुन देतो रहा है। और खूबे नगद बले रहे से। और जेबे जो काम फेर पड़ ली जाले नहीं फेर अखत के फेर एकार बूटा ने डारून देतो रहे से। और जसन भिंडी चो फसल ने कीड़ी संगे संगे रोग

0: आकाशवाणी आइए।
1: किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

श्रोता सुमन कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं सुशील सिंह ठाकुर। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं गीतकार समीर की रचना में फिल्म मस्ती के इस गीत के साथ। इस गीत को गाया और संगीत से सजाया है आनंद राज आनंद ने। फरमाइश आप सबकी। बुराला धरण मालेगांव से आप हैं दत्ता घायल, सुनीताबाई घायल, सानिका और गजानन घायल, विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नहारा, दीक्षा और कुश मूड़त आप हैं उज्जैन के हमारे श्रोता। जिला दुर्ग जुनवानी से आप हैं सुरित, रमेश साहू, तारा, विद्या, जितेंद्र कुमार, किशन, हीरेंद्र कुमार, चंद्रहास, त्रिलोक कुमार और रणजीत सिंह साहू। भिलाई चरोदा छत्तीसगढ़ से आप हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद, शाहनवाज अहमद और पूरा सिद्दी परिवार। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिका और आर्यन वर्मा आप हैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के श्रोता। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से ही मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पीहू, राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन, साथ ही रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी आप हैं शाहूनगर यवतमाल से, तिरुपति नगर लातूर से आप हैं संगीता जैन, सूरज और पी आर जैन, प्रकाश जैन आप हैं दयानंद नगर नांदेड़ के श्रोता, रंजीत कुमार थोरात, रामकिशन गणपत थोरात और गबरू पहलवान थोरात आप हैं बीड शहर से, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक और मोहम्मद उमर डाबर, मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद शाकिब और हसनैन पवार आप हैं लक्कड़ बाजार खंडवा से, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराडे, वनीता छोटू, पूजा रोशनी, अजय और वामिका गंगराडे। जिला खंडवा से ही अशोक कुमार वाघी, वंदना भूपेंद्र वाघी, झवर तनुषी आरोही और कान्हा वाघी। भटिंडा से आप हैं परम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत। सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया आप हैं जालौन उत्तर प्रदेश से। अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल, अमृत और सुवर्ण आप हैं पाथरेड्डी महाराष्ट्र गणेश पीठ के श्रोता। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, बुल्कीवाली आप सभी हैं गूगल चौक गंगजला सहरसा के हमारे श्रोता। नयनगर सुपौल से आशुतोष कुमार और अमिताभ कुमार, मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा निधीश, परिधि और मायरा सुरोशी आप हैं वाशिम महाराष्ट्र से। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से टेलर रामचंद हिंगोली, सिद्धांत हिंगोली, टिंकू रमाबाई, सुरेंद्र मयूरी, सुरभि मंजूषा, गौतम हिंगोली, नामदेव राव शिंदे, मास्टर विलास शिंदे और सुनील जबड़े। वसमत हिंगोली महाराष्ट्र अशोक नगर से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम, रोहित सोनू और मोनू ठोके, छकुली हिंगोली, देव हिंगोली, छुट्टू दादा हिंगोली, पेंटर रामचंद हिंगोली, महेंद्र चौरसिया आप सभी हैं चुमरी तलिया के हमारे श्रोता। महाराष्ट्र बीड शहर से आप हैं प्रकाश पगारिया, पराग प्रदीप, केशव पटेल और राम निवास अग्रवाल। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश कार्तिक और युवराज, नेहरूवाड यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार, और हिच्छा महासमुंद से आप हैं अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी और दिशेंट टेलर। आप सबकी फरमाइश पर पेश है आनंद राज आनंद का गाया ये गीत।

छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल वर्मा और वीरेंद्र साहू। इंदौर से आप हैं धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हन्नी जम्मी, अमिता दियाना और जिमांश मटाई। मसली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लिल्लू, ऋतु और ऋषभ सिंह।

तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार, आरती ममता और गोमती साहू, चांदी चौक गंडी पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू और रविन्द्र सेन, राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे। आप है महाराजा रेडियो श्रोता शंख खंडवा ग्राम लोहारी के श्रोता। खुर्दी रोड मानपुर से आप है विजय वैद, रानी महिमा और नीतू वैद, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साई आप सभी हैं। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ के हमारे श्रोता। नरवेल से आप हैं पीएस नाहवकर और विशाल नाहवकर, सोनू विश्वकर्मा और मोनू विश्वकर्मा आप हैं। आगरा के हमारे श्रोता हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक आप हैं गांधी चौक रोपण पंजाब से। जमशेदपुर झारखंड से खत आया है, आप हैं अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार। ग्राम खट्टी छत्तीसगढ़ से आप हैं सुभाष वर्मा और छाया शर्मा, साथ ही हैं कुमुदिनी शर्मा और ओंकार शर्मा भी। राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज आप सभी हैं बेरेडी से। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष, बीवी गाव्या और भाई सुच्चा पाठक। मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी आलूट से आप हैं जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़ और युवराज सिंह धाकड़, साथ ही हैं शिवांगी धाकड़ भी। जांभरून से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन संजय, आशीष, पृथ्वीराज और कुम्हारी साध्वी जोशी, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ के श्रोता। चंदनगर सतारा से आप हैं सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति, वर्षा, श्रवण और श्रीमेण वाघमारे। कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता अनिकेत और माया चौहान। दतरंगी से आप हैं मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार और सागर कुमार, कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल आप हैं हठोत बाजार लाहौद के हमारे श्रोता। ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, रोनिका और रागिनी यादव। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से आप हैं रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, शिरसागर और संजय कुमार चौहान आप हैं नसवाला चौक मलकापुर से। राम कुलकर्णी और शोभा कुलकर्णी आप हैं जिला सांगली के हमारे श्रोता। गुड़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा आप हैं ग्राम पंचायत भटेना से। सारागांव से सुजान वर्मा, सोहद्रा आयुषी और कृत वर्मा। शिवाजी चौक राजिम से आप हैं अनिल कुमार, अंशुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव आप हैं अमरपुर पेंट्रा की श्रोता। श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और रोहन आर्य आप सभी हैं गोलबाजार बक्सर से। और राजिंदर नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग आप हैं भटिंडा रोड बडवाली के हमारे श्रोता। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कुदरत का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
3: आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। इसमें अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल स्वरों में फिल्म मन का ये गीत। समीर की शब्द रचना, जिसे संगीतबद्ध किया है संजीव दर्शन ने। पसंद आप सबकी। कुल्हारीकोट पांडुका से आप है नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, मोहनीश और अनुराग कश्यप। भिलाई से आप हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, सिया जैन, सौरभ शौर्य और शुभम जैन। पीरंजू, अशोकपुरी, सुशील, बीके, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रमा मलिक, कुणाल, निधि, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेश, विनोद, पल्ली, डीसी और अरुणपुरी। साथ ही हैं नेहापुरी, एकता, शम्मी, बोदीपुरी, सुनील, वीके और आरएसपुरी भी। ऊपरकोट मोहल्ला बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, सरफराज अब्बासी, अरजान अब्बासी, निघत, परवीन, फरदीन, अबान, शाहनवाज और सुहान अब्बासी। अम्बेडकर चौक वाकोडी से आप हैं उत्तम जमधाड़े, स्वराज जमधाड़े, स्वरित पोपल वाट, संघर्षा संविधान धोंगड़े। जिला हिंगोली से आप हैं मास्टर शाहजी बोड़के और नंदा बोड़के। पूर्णा देगांव से आप हैं सदाशिव थोरात, सुधाकर कामले और संदीप कामले आप हैं हदगांव से। विजय महुबिया, कविता महुबिया, संजय नंदिनी, विशाल विवेक, सोनू मोनू डाली, अनय और अनाया आप हैं रामगंज खंडवा के हमारे श्रोता। अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया आसमा, सालिया, शोएब, मुस्तबा, राउ भाई और शाहिद भाई, रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर आप हैं गांधीबाग अकोला के हमारे श्रोता। शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रैंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे आप हैं बंगला मटिया बालोद से। डोंडी बालोद से आप हैं नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू, प्रियंका और मुरली गौतम। अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश और आधीरा आप हैं चितलवाड़ी अकोला के हमारे श्रोता। सतीश अनिजा बिमला।

चर्चा चंडीगढ़ से। दरिया नामल अनिल मोटवानी, राजेश रेशम अनिल राज मोटवानी आप हैं चार मीनार चौक गंडे पंडेरिया से। हरीश कमल सीतपाल भूमिका और सुशीला दादी आप हैं झूलीलाल चौक तिलदा से। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से आप हैं राम दुलारी प्रजापति, राम शरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। सहारनपुर से ये खत आया है आप हैं सुरेश नारंग आशा और सोनाली नारंग। सुभाष चक्रधारी, कविता चक्रधारी, मुस्कान और अनुष्का आप हैं कोंडागांव छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता। अशोक श्याम कुंवर, दीपक प्रमिला और ज्योति श्याम कुंवर आप हैं भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से। प्रेमलता उपाध्याय, खुशबू और खुशी उपाध्याय साथ ही सुभाष वर्मा और छाया वर्मा आप हैं महासमुंद के हमारे श्रोता। दंतेवाड़ा बचेली से ये खत आया है आप हैं बलराम सेन, रितिका सेन, इंदु पोषण, पुष्पराज, भुवनेश्वर और पंचू सेन। गौतम उर्वशा डामिन की उर्वशा आप हैं डोंडी लोहारा संबलपुर से। डोमन लाल कोठारी भी यहीं से हैं। बालोद छत्तीसगढ़ से दिनेश यादव और साधना यादव। मंचुवा से आप हैं रिंकू रावटे और अयांश रावटे। नरसिंह थापा, वीर सिंह थापा और शंकर सलाम आप हैं चारामा कांकेर के हमारे श्रोता। अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची अनुश्री और धनश्री आप हैं पाठर कवड़ा से। सूरज, प्राची और एकलव्य आप हैं बल्लारसा के हमारे श्रोता। गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री आप हैं देवरी फाटापारा से। सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षा और राहुल डोंगर दिवे, जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश, धनवंतीन बाई और मोतई बाई मानिकपुरी आप हैं गणेश धाम बालोद के श्रोता। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया। प्रभाकर जोंधरे, आरती जोंधरे आप हैं जिला नांदेड़ से। डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा, डॉक्टर अमित, सचिन, समरराज, आर्यन, बीबी आरोही, इशिका और अंजलि साथ ही श्वेता वर्मा आप हैं खरगोन मध्य प्रदेश से। और प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू आप हैं नेहरू वार्ड भाटापारा के हमारे श्रोता। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म मन से उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया ये गीत।

बाजारपारा बेमेतरा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा, महेश हजारे, मिंताशु और आदित्य पुणे से, महाराष्ट्र करंजी से वसंत जी हजारे और प्रमोद हजारे, रजन साहू बेबी ईशानी, छन्नूलाल शिवास और अनीता शिवास तेलीपारा बिलासपुर से, लच्छनपुर से सरोजनी रजक, सीमा रजक, कनक पल्लवी, रश्मि साहू और गीता साहू, खिकराम देवांगन, रेडू रंजनी देवांगन और पिंकी देवांगन, हटरी चौक बिलाईगढ़ से, नागपुर महाराष्ट्र से आप हैं कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक और अमोल मानकर, निप्पी साहनी, सुनीता और संदीप आप हैं झारखंड से, नोखीलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि और पुष्पेंद्रमणि भाटापारा छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश कार्तिक अश्विनी आप सभी हैं जलगांव से, वैष्णवी जगदाले और हर्षुल सांगवी, साथ ही वैभव और गौरव आप हैं औरंगाबाद के हमारे श्रोता, बदनापुर से रिधोरी देवी और मेघराज कोलते, साथ ही युवराज, बंडुलोहर, पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास और हरिभाव बिड़वे आप हैं निवासा खुपटी महाराष्ट्र के हमारे श्रोता, दलही राजरा से आप हैं सुरेश नगवंशी, ललित यादव, श्रीनिवास, पुनीत सेन, बुधेश्वर रावटे, रामेश्वर चिराम, रामेश्वर राधे, ललित दिवांगन, ईश्वर साहू और गोविंद साहू, श्रीकृष्ण बाठे, संगीत संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे आप हैं धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना कनिका, आदित्य मानस और मन पटेल, प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि और सोहम आप हैं सूर्यवाड़ी औरंगाबाद के हमारे श्रोता, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, बलिया से निवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय, शेरपुर कलाम गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय, चंदन नाग, हरीश नाग, उदय और बाल सिंह नाप आप हैं लौंडीगुड़ा बस्तर के हमारे श्रोता, दरभा बस्तर से रामधर कश्यप, रामधर बघेल, उदय ठाकुर, मोतीराम मौर्य, दुखूराम, सोनू बघेल, नीलकंठ सिन्हा, भीमा मंडावी, शिव सोरी और बुधराम सोरी, छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव आप हैं धरसीवा से, छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव, रानू, खुशी, प्रवीण और सी एल यादव आप सभी हैं संतोषी नगर रायपुर के हमारे श्रोता, मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार, चिंटू, युग कुमार झेरिया आप सभी हैं भाटापारा मोती गार्डन से, श्री सुधाकर राज्य जाधव, प्रशांत राज्य जाधव, जगुताई आप सभी हैं मराठवाड़ा महाराष्ट्र के हमारे श्रोता, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जय वीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप आप हैं मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊखड़ से रक्षा ताई, ललिता संजना, गणेश कार्तिकड़ से, साथ ही मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और कुमारी देविका चौधरी भी, तासपुर मोरबा से आप हैं भाई कारी राय, कारी श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और जयंत कुमार बैरागी आप हैं ढोली सकरा के हमारे श्रोता, मंतुराम यादव, चित्र रेखा, साहिल, शिवम, केशव, माधव, राकेश, पोषण, रितेश, नेत्राम, संतुराम, विजय शंकर और भोला यादव आप सभी हैं फरड डी बालोद के हमारे श्रोता, यवतमाल से आप हैं जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता, बेरेडी से ये खत आया है आप हैं हुकुम करमकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर, आप सबने हमें खत लिखा है अनाड़ी फिल्म के इस गीत के लिए आनंद मिलिंद का।

दरियापुर महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले अकोला से, अरुणा दामोदर डबवाली हरियाणा से आप हैं, जेके बकोलिया, सुनीता, संजय अनिल और मीनू बकोलिया, भक्ति प्रसाद, शोभा, संजय और गवकी आप हैं कोल्हापुर के हमारे श्रोता, नारायण लाल साहू कुलवंतिन, देवेंद्र कुमार, नेहा और प्रणय कुमार आप हैं राजनाथ गांव से, गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी, कृष्ण तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी, आनंद, मनीषा, श्रवण कुमार, नानू, सतीश, रोहिणी और श्रुति राव, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र और तुषारणी मसिया, रिजवान खान, आयशा साबिहा, अनस और रेहान आप भी हैं अंबागढ़ चौकी के हमारे श्रोता, पटेल नगर मलोड पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत मृगु, विनय ठाकुर आप हैं भाटापारा के हमारे श्रोता, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी और बेबी अनिशा, कालू सिंह बड़ोले, साहिल हरिओम, विशाल और सुमन बड़ोले आप हैं जूनापानी सनावत से, देवशंकर तामोरिया, अजय देवराधिका, तुषार तामोरिया, डोली मास्टर

मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, मौसम संगीता विनोद कर्ण, रुद्र प्रताप और रिद्धि गुप्ता आप हैं राजनगर मधुबनी के हमारे श्रोता। पिंकी कॉलोनी लखनऊ से आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी कुसुम, पलक और पंखुरी गुप्ता, मनजीप, सोनाली, अंजलि, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय राज और गुनगुन आप सभी हैं कांति निकेतन से। मलोड कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और छाविंद्र कुमार वर्मा आप हैं भाटापारा दतरेंगी के हमारे श्रोता। अघनपुर धर्मपुरा बस्तर से आप हैं डी विनीता नायडू, कृष्णा नाव नायडू, ईश्वर राव, रोजा देवी, सोमशेखर राव नायडू और अक्षय प्रांजल नायडू, शंकरलाल जायसवाल, रामलाल, गुलाब लाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, मीनाक्षी, दुर्गेश्वरी और ज्योति आप सभी हैं जिला नांदेड़ से। चंद्रलाल जायसवाल, विजया लक्ष्मी और श्रेया आप हैं वसमत के हमारे श्रोता। हथकेरा भाटापारा से आप हैं पंचू यादव और दादू यादव, बावली से कमलेश साहू, हरेंद्र साहू, सुशील बेलसपुरिया, उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर आप सभी हैं पिपरपारा मुंगेली के हमारे श्रोता। राजेश खंबायतकर, प्रेमा खंबायतकर, राजश्री भावसा, राजू, आरके कुसुमकर और प्रीति खंबायतकर आप सभी हैं देवपेठ वासिम से, और आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शाइना और निवान शर्मा आप सबकी फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम श्रोता सुमन का अगला गीत फिल्म बरसात से। आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की, नदीम श्रवण का संगीत, गीतकार हैं समीर।

कार्यक्रम श्रोता सुमन के अंत में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी का गाया ये गीत। हसरत जयपुरी की शब्द रचना धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। फिल्म है सूरज और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सब। जरुण वरुड़ महाराष्ट्र से आप हैं। बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चर्बे, रजनी कानीरे और कार्तिक युवराज, कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार आप हैं दिल्ली शहर मोरीगेट से। गांव रतनपुर जिला खरगोन से आप हैं भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविंदर, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य और गुनगुन। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बीबी अनिष्का और तन्मय आप हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के हमारे श्रोता। भूरसुदा से आप हैं भगवानी, चिराग सेन, गजेंद्र, चंद्रप्रकाश, संतोष सिंह और नेहा सेन, गुरविंदर सिंह पाधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पाधा आप हैं फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल के हमारे श्रोता। रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन आप हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल और खुशबू सेन आप हैं बागबहरा भदरसी के हमारे श्रोता। संतोष खड़से और विनोद खड़से यवतमाल विदर्भ से। नरेंद्र कुमार तिवारी रायगढ़ से। देवलाल कर्ष, कामनीकर और यश आप हैं बिलाईगढ़ से। मोहम्मद सैय अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी आप हैं ऊपरकोट बुलंद शहर के हमारे श्रोता। हनुमानगढ़ से एक खत आया है आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक। संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, उजस्वी, इशिका यादव और तीजल यादव। दुर्वा, सोनवणे, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम आप सभी हैं खरगोन मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता। उत्तर बस्तर कांकेर से आप हैं

अजेस नायक और शोभा नायक, संबलपुर कांकेर साहब हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी इशिका यादव और तीजल यादव, ध्रुवा सोनवणे, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम, आप सभी हैं खरगोन मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता। उत्तर बस्तर कांकेर से आप हैं।

शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर आप हैं शीतलानगर दुर्ग से, विश्राम यदु पार्वती यदु, प्रतिमा रीना लक्ष्मी ना आप सभी हैं दतरेंगी से, लुकेश और समीर यदु आप हैं लालपुर के हमारे श्रोता, रेवती सेन, सुदन साहू, रामकृष्ण देवनारायण सिन्हा आप हैं महासमुंद से, यहीं से छगन सिन्हा भी हैं, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियंश और ऋषि वर्मा आप सभी हैं जिला रतलाम से, नंद कुमार यादव, दुलखीन, शंकर, शमा, भोला, किरण, कुलदीप, द्रोण, अमन और ईश्वर यादव, साथ ही कुलेश्वर यादव आप सभी हैं मतवारी दुर्ग से, अभिजीत गौहाड़कर, सरिता, प्रिंस एकांश गौहाड़कर, उमरखेड़ महाराष्ट्र से, बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत, प्रणीता और अर्जुन गौहाड़कर, वैशाली, शैलेश, सुमित और ध्वनि गौहाड़कर आप हैं बहादुरा नागपुर से, और हरदेवलाल पारावाड़ सिमगा से आप हैं रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव। लीजिए सुनिए फिल्म सूरज से आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged.

0: Khyber Pakhtunkhwa provinces. The strikes inflicted heavy casualties and significant financial losses on ISIS and its supporters. It added that the attacks were carried out with high precision against designated targets and caused no civilian casualties. The strikes came just days after 36 civilians, including women and children, were killed while 163 others were injured in Pakistani military airstrikes in Paktika and Kunar provinces of Afghanistan. National Doctors' Day has been celebrated today to honor doctors for their dedication, compassion and invaluable contribution to protecting and improving public health. The day is observed every year on the 1st of July to commemorate the birth and death anniversary of one of India's most respected physicians, Dr. Bidhan Chandra Roy. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted doctors across the country on the occasion. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has also extended greetings to the medical fraternity for his unwavering dedication. In a video message, Mr. Nadda lauded doctors across the country for their exemplary professionalism and compassionate service to humanity.
1: On the occasion of Doctors' Day, I extend my sincere appreciation and heartfelt gratitude to the medical fraternity for its unwavering dedication, exemplary professionalism and compassionate service to humanity. Doctors are the cornerstone of our healthcare system, tirelessly working to alleviate suffering, save lives and uphold the highest standards of patient care. Your selfless commitment and resilience continue to inspire the nation and strengthen our collective pursuit.
0: In FIFA World Cup, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium this morning to qualify for the round of 16. Raul Jimenez and Julian Q scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dhiraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया मॉनसून के दो दिन में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने सीखने लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है एक रिपोर्ट
3: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक

0: स्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले

0: चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे।
0: और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे।

0: मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है,
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को

0: सत्याग्रह गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जय दास देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का लिखते हैं जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी अजीत साहेब जी जय हिंद जी आगे लिखते हैं
1: उमंग टीम को

0: सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
0: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
0: जी,
1: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
0: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
0: जी।
1: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
0: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
0: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
0: जी।
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
0: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुँचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए
0: जी।
1: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है
0: जी। अजीत जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोदकर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ, पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था
1: जी। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है
0: जी।
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी

0: भी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: वाह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई

0: बताइए आपने।
1: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
3: लंबाई

0: महाराष्ट्र राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
4: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त।

0: तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद मैम।
3: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
4: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती है, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजदूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काट

0: की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
0: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
0: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना। ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
0: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे भाई, ये भी
0: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
2: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी,
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने तीन मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
6: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं।
5: मुखिया जी,
6: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
5: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
6: चढ़ रहा है। अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
5: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
6: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो, इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
5: जैसी आपकी मर्जी।

0: अरे ये तो सचमुच चला गया।
1: कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो
0: ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? मैं ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
1: आखिर पहुंच गया।

आखिर पहुंच ही गया।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजने को हैं। मीडियम वेव पर ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। इसी बैंड पर शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। हम आपको बता दें कि FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। शाम 5 बजे सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में। युवाणी शाम 5:10 पर। गोंडी समाचार बुलेटिन शाम 6:30 पर। बस्तर के स्वर कार्यक्रम शाम 7 बजे। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चुगांव होगा शाम 7:21 पर। कुड़ैफुल कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे नीलूराम और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। पिलामन का जगोट हल्बी बोली में रात्रि 8:30 पर। प्रस्तुति होगी उर्वर्षा पानीग्राही की। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम वाट का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आप सुनेंगे शासकीय योजनाओं की जानकारी। विषय होगा जैविक खेती। प्रस्तुति होगी दीपिका ठाकुर की। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हल्बी परिचर्चा। विषय होगा मानव अधिकार आज की आवश्यकता। प्रतिभागी होंगे बलदेव मौर्य, जगन्नाथ बघेल, मंधर राम नाग। कार्यक्रम के संपादक होंगे बलबीर सिंह कच्छ। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा हम लेकर आएंगे आपके लिए रात्रि 10:30 पर। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। विविध भारती के कार्यक्रम दोपहर 3 बजे, संदेश टू सोल्जर्स शाम 4 बजे। रात्रि 9:30 पर नाटक। रात्रि 10 बजे लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातःकालीन सभा में कल सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन सुबह 6:20 पर। आलेख और स्वर होगा सुशील कुमार का। सुबह 6:25 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर होगा कविता कृष्णमूर्ति का। संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। सुबह 6:35 और दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे कृषि सामाई की बेड़ा खड़ा चुगोट। हुलहुली कार्यक्रम में कल सुबह 6:40 पर सुनिएगा हिंगलाजिन माता पाड़। वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण होंगे योगिता पानीग्राही की कहानी ईमानदारी का इनाम। साथी होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर लोक मंजरी कार्यक्रम में आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत प्रायोजित। सुबह 9 बजे होगा कार्यक्रम पाटाविनार। इसमें सुनिए जैती नाग और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत। सुबह 9:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। सुबह 9:55 और सुबह 11:55 पर प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 10 बजे गुलशन कार्यक्रम में आप सुनेंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। गुड़दुम कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह 10:30 पर। इसमें सुनिए महंगूराम और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत एक ही कलाकार। प्रसारण समय सुबह 11 बजे। श्रोताओं कल का कार्यक्रम केंद्रित होगा चरित्र अभिनेत्री आशालता पर। सुबह 11:30 पर सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम कला और कलाकार। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। दोपहर 1:10 पर

पेश करेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। संध्याकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। युवाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर सुनिएगा लोकगीत। बस्तर के स्वर कार्यक्रम शाम 7:00। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8:00 सुनिएगा कार्यक्रम डांडामाली, इसमें आप सुनेंगे ध्रुवी लोकगीत। पिलामन का जिकोट हल्बी बोली में कल रात्रि 8:30 पर प्रस्तुति होगी गोपाल पोयाम की। कल रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा। ये थी जानकारी हमारी केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत समूह स्वर में। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: ए समयानी आमचो बार दखतो आओ रेडियो कटा बसुन रेडियो सुनतो सपाय संगवारी मन के मैं धर्मराज पटेल
1: और मैं गीता ठाकुर एचे संगे अमी दोनों करू से तुम्ही सपाय के
0: जुहार जुहार जय जुहार। ओहो
1: काय होली
0: लटपट संगवारी मन के जुहार भेट कर ली ससन लागे से
1: कसन डरलो असन होली सी धर्म तुई बले
0: डरलो ची असन आय काय तू चो हाथ ने धर लो मोबाइल चो इंस्टाग्राम वीडियो के दखतो ने पुरसत मिल लिया ले आमी दुनो डंडिक ये असल जिंदगी चो गोट बात के गोठियाऊ चाय बले तो ठंडा होए से वे।
1: हाँ माफी चाहें दे धर्म मके ध्यान नी चिनी हिली।
0: हाँ
1: मैं गोटोक शिक्षा पढ़ाई ले जुड़लो बीती वीडियो के देखते रहे।
0: हाँ
1: और हुन वीडियो ने सांगते रहे कि कॉलेज संगे संगे घरे पीला मन के ट्यूशन बले पढ़ाक सका।
0: ये तो नंगत गोट के बल सिद्ध गीता मानतर मैं तू के खुबे समय आले दखे से तू चो मोबाइल ने चिरा तोर ज्यादा नहीं होए से सोशल मीडिया गोटोक असन दल दल बनुन जाए से जेथा हर हार मोबाइल के खोलून दखले समय चो पता नहीं चले।
1: धर्म
0: हाँ?
1: तुचो गोट की मैं गलत नहीं माने मानतर आम के सिक्का चो दूसर भाग केवल तो दखतो रहे।
0: हाँ?
1: अबर सोशल मीडिया केवल मनोरंजन चो साधन नू है।
0: हाँ?
1: लॉकडाउन चो समय ले धरुन आज तक ये ज्ञान चो सबले बड़े लोकतांत्रिक माध्यम बन ले से यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने अबर खूबे ज्ञान वर्धक युवा शिक्षा चो जानकारी मिले से अमी दुनिया भर चो विशेषज्ञ मन संगे जुड़ सकू।
0: गीता तू इबलसी थुन सिर्फ 10% सत्य आए बाचलो तो 90% हिस्सा तो खूबे खतरनाक लागे से आजकाली चो युवा मन सोशल मीडिया ने दूसर लोग चो शानदार लाइफ स्टाइल महंगा गाड़ी और विदेश ने घूमुक जातो छुट्टी मन के दखासोत काय हुन मन नी जान सोत कि ये फिल्टर और दिखावा दुनिया आए बोलू ये चो नतीजा काय हो दे कि खुद चो जिंदगी ने निराश हो मानसिक तनाव डिप्रेशन और हीन भावना खूबे बड़े से।
1: हाँ ये गोट तो तुझो खूबे सही है।
0: हाँ।
1: लोग मन ये सोशल मीडिया चो दुनिया ने लाइक्स और कमेंट चो जरिया ले आप लोग खुशी तलाशुआत अगर कोनी

0: जो सीधा असर पड़े से जीरलदाय आमी पड़ुक बसु से तो हर दुई मिनट ने फोन में नोटिफिकेशन बजे से तो आम जो ध्यान भटकुन जाए से और पड़तो ने मन नहीं लागे। हर आधा घंटा ने मोबाइल के दग दग असन लागे से और पुस्तक पढ़तो ने ध्यान केंद्रित नहीं होए।
1: मानतर धर्म
0: हाँ?
1: ये सोशल मीडिया ने कितरो लोग डिजिटल क्रिएटर बनून आत्मनिर्भर बनला से एवे जो दिने नानी बड़े शहर जो लेका लेकी मन आप लोग कला डांस खाना बना तो सोशल मीडिया ने पोस्ट कर सो लाखों रुपया और कमा सो के भी बड़े शहर ने नी जाऊन बिजनेस तक नी पहुंच रोत आज ही सोशल मीडिया ने मार्केटिंग जो जरिए बिजनेस जो विश्वव्यापी होली से तू एक एक कसर नकारुक सकिस।
0: मैं व्यापार रोजगार के जो अवसर के नी नकारे गीता मचो हर मचो डर आए ये चोले सामाजिक दुष्प्रभाव के ऑनलाइन प्रताड़ना और इंटरनेट चो काचे पोस्ट के जानुन बुझुन भद्दा कमेंट कर तोर नहाले मजाक उड़ा तोर आज चो दिने आम बात होली से काचे हो फोटो वीडियो के गलत इस्तेमाल करुन हुनके बदनाम करुन देसोत। ये चो अलावा गोपनीयता नाव चो तो कई चीज बाछली से नाई टेक कंपनी मन आमचो डेटा के बिकुन पैसा कमासोत और आम के विज्ञापन चो गुलाम बनासोत।
1: और सबले बड़े मुसीबत ये फेक न्यूज बीता मन जो जे बिना जांच पड़ताल जो लोग के व्हाट्सएप या फेसबुक ने भ्रामक और नफरत फैला तो बीती गोट मन के शेयर करूं देसोत। कई जगह तो समाज ने दंगा हिंसा तक होन जाए से और डीफेक जसन तकनीक ये खतरा के और बढ़ाए से।
0: हाँ यही समझ तो खूबे जरूरी आए कि सोशल मीडिया गोटोक धारदार चाकू असन आए ये चोले साग के काटुक बले होए से और दूसर के नुकसान बले पहुंचोक होए से सपाए गोट एथाए निर्भर आसे कि एके चला तो बीता कितरो समझदार आए।
1: सत्य बोलीस तुई तो फिर ये जो समाधान काय हो दे धर्म आमी हमेशा का जे सोशल मीडिया के तो बंद करूक नहीं सकूं।
0: हाँ।
1: कसन बोलो ने आजी जो दौर ने ये आम जो जिंदगी ने खूबे जरूरी है।
0: हाँ। ये समाधान आए गोटोक निश्चित समय का जे स्मार्टफोन कंप्यूटर सोशल मीडिया और इंटरनेट ले दूरी बना तोर पढ़ाई या काम कर तो समय ने डू नोट डिस्टर्ब मोड के संगा तोर आए आओ सबले जरूरी आए सोशल मीडिया ने दखलो बीती हर चीज के जेके आमी यकीन करू से आउर भरोसा कर तो बंद कर तो रहे।
1: तुझो गोर तो खूबे नंगता है धर्म।
0: हाँ।
1: सोशल मीडिया अमचो जिंदगी जो तय कर तो हक नी धरे आम की असल जिंदगी ने रिश्ता घर परिवार और दोस्त मन संगे आमने सामने बसुन बात कर तो खूबे महत्व आए।
0: सत्य गीता और ये जो शुरुआत आज ही ए बेले करू कसन आले मोबाइल के तो दखुन आंसू आले दंडिखुन के आराम देहूं आम चो चाय बले तो गोट गोट ने ठंडा बले होली।
1: हाँ तो संगवारी मन ये तो रली आज ही चो चर्चा मानतर आज ही आमी तुम चो का जे काय काय कार्यक्रम ने आनलू से एके जानवा
0: आज ही आमी तुम चो का जे आनलू से यादों के स्वर जोन थाने तुम्ही सुना से मन के हरिक लाग तो असन जुना जुना गीत मन
1: और आलू से रोजगार सूचना ज्ञान ध्यान चो गोट बात और मार्गदर्शन भेंट वार्ता
0: आज चो कार्यक्रम के मूर करू मानतर मूर कर तो पहिल सुनू ये जहाला।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: संगवारी मन आज जो कार्यक्रम यादों के सरचो पहल गीत आए फिल्म कभी कभी ले ये गोटोक लोकप्रिय गीत आए गीत के ऋषि कपूर और नीतू सिंह उपरे फिल्म आला से
1: ये गीत खूबसूरती ले प्यार चो तारीफ करे से ये गीत ने प्रेम ने डूबलो प्रेमी आपलो भावना के खूबसूरती ले व्यक्त करे से ये गीत के आपलो मधुर आवाज दिला से किशोर कुमार और लता मंगेशकर गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार खयाम चो तो संगवारी मनिया सुनू ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: संगवारी मन, अगला गीत है फिल्म आन मिलो सजना ली, एक खूबे लोकप्रिय और सदाबहार गीत है।
3: ये गीत भावपूर्ण गीत है, नायिका आपलो साजन चो, कारण आपलो भावना और स्थिति के सांगे से।
2: ये गीत के महान नायिका लता मंगेशकर गावला से, एक संगीतवत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल करला से, गीत जो बोल आनंद बख्शी लिखला से, तो संगवारी मन या सुनो ये गीत।

0: शैक्षणिक योग्यता आए कंप्यूटर साइंस नाले आईटी चो डिग्री डिप्लोमा होतो जरूरी आए।
1: विकासखंड समन्वयक एचओ काजे उम्मीदवार लगे कोनी बले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ले स्नातक चो डिग्री होतो जरूरी आए। एचओ काजे आयु सीमा 21 बरक ले धरून 35 बरक तक होतो आए।
0: एचओ आवेदन करतो उम्र 10 जून 2026 ले होली से और आवेदन करतो अंतिम तिथि आए 20 जुलाई 2026 तक।
1: आप मन जिला बस्तर आधिकारिक वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट बस्तर ले आवेदन काम चो प्रिंट आउट निकराउन काम के पंजीकरण डाक नहाले स्पीड पोस्ट चो माध्यम ले भरुक सकास।
0: और एचो अधिक जानकारी काजे bastar.government.in ने दखुक सकास।
1: संगवारी मन ये तो रली रोजगार सूचना अदाय सुनासे मार्गदर्शन भेंट वार्ता मोहम्मद अयाजले ये मन के भेंट कर सो चंद्र ऋषि ठाकुर तो या संगवारी मन एके बले सुनो।
2: युवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम युवा प्रतिभा के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अयाज। आप प्रमोशनल शूट्स करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो एडिटर भी हैं और साथ में एक व्यवसाय भी चलाते हैं। तो आइए उनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेते हैं उन्हीं से। तो सबसे पहले मोहम्मद अयाज, आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
3: थैंक यू सो मच।
2: तो सबसे पहले तो हम आपका छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और अभी आप वर्तमान में क्या करते हैं।
3: हमारा नाम मोहम्मद अयाज है। हम अपनी स्टार्टिंग बेसिक स्टडीज केरला में किए हैं। आई वॉज देयर अराउंड 8 to 9 years। देन 11th में दंतेवाड़ा आए। दंतेवाड़ा, हम प्रॉपर दंतेवाड़ा से हैं। दंतेवाड़ा में DAV स्कूल में 11th किए। देन 11th के बाद स्टडीज से थोड़ा यू नो कोरोना की वजह से एंड ऑल, उसकी वजह से डाइवर्ट हो गया दिमाग, तो स्टडीज 11th में हम छोड़ दिए। 11th में छोड़ने के बाद 12th हम ओपन बोर्ड से किए और 12th में हमारी फैमिली हमें कॉलेज के एडमिशन के लिए दिल्ली भेजी थी कि वहाँ पे जामिया मिलिया में एडमिशन ले ले पढ़ाई। तो वहाँ पे भी जाके, बट पढ़ाई से जब एक बार वो हट गया था मन, तो उसके बाद गया ही नहीं। तो वहाँ जाके भी हम साइड हसल में एक जॉब ढूंढ लिए, वेटर का जॉब कर रहे थे वहाँ पे। फैमिली को नहीं पता था ये चीज़, क्योंकि मन करता था पैसा करना, घूमना, एंड तो वहाँ वेटर का जॉब किए। फिर फैमिली को जब पता चला, फिर वापस बुला लिया हम लोग दंतेवाड़ा। देन दंतेवाड़ा में ओपन में बोर्ड किए। देन उसके बाद एक दो महीना ऐसे ही रखे थे कि घर से कहीं जाएगा नहीं, कहीं भी जाता तो ये। देन उसके बाद भिलाई हमें सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए भेजे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग एंड ऑल। वहाँ जाके हम अपनी जर्नी के स्टार्ट किए थे। वहाँ जाके आई वॉज देयर अराउंड 2024 or 2023, आई डोंट नो। वहाँ पे एक साल या डेढ़ साल रहे हैं। स्टार्टिंग में वहाँ पे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का जो कोर्स था वो 1 से 1.5 महीना किए। देन उसके बाद घर वाले जो थे, सेविंग एक होता है ना, घर वाले का एक फिक्स रहता है, इतना महीने में इतना देना इतना देना, तो वो हमें नहीं हो रहा था, हमें इनफ नहीं हो रहा था कि हमें घूमना है ये कि नहीं करना। तो वहाँ पे हम एक फ्लैश अकेडमी, द फ्लैश अकेडमी है वहाँ भिलाई में, कोचिंग नीट कोचिंग स्टूडेंट तुहिन सर बहुत वहाँ के भिलाई के बहुत फेमस ट्यूटर हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में भी हैं, जी न्यूज़ एंड ऑल। तो उनके यहाँ फर्स्ट टाइम हम जॉब स्टार्ट किए थे। तो उनके यहाँ अराउंड 3,000 या 4,000 rupees में हम स्टार्टिंग जॉब किए थे। देन उनके ज़रिए से हमें और जॉब मिले। हम वेदांतु कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके साथ काम किए हैं। देन और एक मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूट JEE, तो इस फील्ड में हम यहाँ से घुसे थे। तो फर्स्ट जो जॉब था, स्टार्टिंग हुई थी वहीं फ्लैश से, फिर वहाँ से मोशन वेदांतु एंड ऑल, एंड आई वॉज वर्किंग दे ऑल द टाइम। यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, यहाँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑल। वहाँ पे एक एजेंसी बन गई थी, एक हमारी एजेंसी जिनके अंडर हम काम करते थे उस समय। वहाँ पे अराउंड 10 से 15 सैलरी मिलती थी, बट द वर्क वॉज टू मच, लाइक दिन में 4-5 शूट हो रहा है, दिन में यहाँ वहाँ वहाँ एंड ऑल। तो महीने में अराउंड व्हेन आई वाज 17 ईयर ओल्ड्स, हम ये काम वम स्टडीज ये 16 के थे, तब से हम चालू करते थे काम करना, पैसा कर करके। 16-17 में हम भिलाई में काम किए। वहाँ अराउंड आई वाज अर्निंग 35,000 per month, बट 1 रुपये सेव नहीं होता, 1 रुपये। आई टू बी ऑनेस्ट, पूरा महीना चालू होता था, 15 दिन में पैसे खत्म, 15 दिन वो जो कटता था वो बहुत अलग। फिर उसके बाद लास्ट ईयर डिसम्बर टाइम में पापा का आइडिया था कि थोड़ा बहुत सेविंग करो, मैं थोड़ा दे रहा हूँ, एंड खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करो यहाँ जगदलपुर में। जगदलपुर इज़ अ डेवलपिंग टाउन है, गेस सिटी, तो यहाँ पे एक बिजनेस डालो, यहाँ पे जाएगा अच्छा। तो शुरू में वी स्टार्टेड आइज एंड आई केयर, हमारा खुद का शॉप है, और शुरू में बहुत बुरा रिस्पॉन्स, लाइक रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन अभी जो एरा जनरेशन है, सब ऑनलाइन में, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया एंड ऑल,

0: सो हम प्रमोशन करना स्टार्ट किया अपने शॉप का. तो आई मेट अरुणिता, इसको आई मेट फ्रॉम अ कस्टमर. हमारी एक कस्टमर आई थी, एक उससे जान पहचान में बातचीत हुई, देन शी बिकम माई फ्रेंड. फिर उसकी एक म्यूचुअल थी अरुणिता, देन अरुणिता से मिले, देन हमें अपने शॉप का प्रमोशन करना था. शुरू में हम खुद से कर रहे थे, देन अरुणिता मिली. हम इसे पूछे कि तुम वीडियो में आ पाओगे? इन द बिगिनिंग शी वॉज थोड़ा शर्माना एंड ऑल, नहीं हो पाएगा भाई ये वो, बट थोड़ा टाइम बाद आई टोल्ड हर के भाई हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एक. एंड देन वी शूट द फर्स्ट वीडियो, और वो बहुत प्यारा था. लाइक उसका भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, और एक साथ में थी उसका भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था. तो वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट हुआ है. इन्फ्लुएंसर वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ, बट एक कंटेंट क्रिएशन में घुसने का हम लोग का जगदलपुर में. यहाँ से फिर अपन स्टार्ट किए, हम अपना शॉप का अलग अलग कर रहे थे एकदम ऑल. एंड बाकी उस समय से जितना हुआ, शुरू में 5 से 7 वीडियो शॉप का बना. वहाँ से फिर हम लोग को अप्रोचेज आने लगे. आई डोंट नो, लाइक एडिटिंग वॉज समथिंग डिफरेंट. यहाँ पे जगदलपुर में कंटेंट क्रिएशन सब कर रहे हैं, बट सबका टाइप्स अलग. कोई बस्तरिया टाइप में जा रहा है, कोई सिनेमैटिक टाइप में जा रहा है, कोई नॉर्मल ऐसे ही स्टोरी टेलिंग टाइप जा रहा है. हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग कुछ यूनिक करें, जिसमें स्टोरी टेलिंग भी इंक्लूड हो, बस्तरिया टाइप भी इंक्लूड हो, सब चीज़. तो हम लोग एक ग्रुप बना लिए, एक के एक जो स्टोरी टेलिंग प्रॉपर स्टोरी टेलिंग में मास्टर है, अच्छा कर लेती है, और एक जो प्रॉपर बस्तरी एक्सेंट आता हो. तो हम लोग पूरा का मर्ज करके अलग अलग टाइप के. तो हमारे पेज में इन्फ्लुएंसर में जो भी वीडियो डालते हैं, सब अलग अलग टाइप के डालते हैं. कोई स्टोरी टेलिंग वे में होगा, कोई आपको आपको प्रमोशनल वे में होगा, कोई फनी वे में होगा. तो वहाँ से अभी अपने को इन्फ्लुएंसर स्टार्ट किए हुए 3 मंथ हुआ है, 3 to 2 months हुआ है, और अभी टचवुड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. लाइक हम लोग को डेली डेली एक नए अप्रोच आ रहे हैं. और अभी रिसे अभी हम यहाँ लेट इसीलिए हुए क्योंकि हम डील फाइनल करने गए थे, और हम लोग अभी 4-5 जगह का डील फाइनल कर गए हैं. तो लोगों को काम अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी देते हैं, क्वालिटी के साथ जो वीडियो का एडिटिंग टाइप है, हम लोग एडिटिंग टाइप अच्छा रखते हैं एंड ऑल. तो वो कस्टमर्स को और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मज़ा आता है. ऑडियंस को अगर अपने को एंगेज करना, ऑडियंस को अपने तरफ खींचना है, तो उनको वो दिखाओ जो उनको पसंद है, जो उनको मजा आ रहा हो.
1: जी, तो जैसे आपने बताया कि आप शूटिंग भी करते हैं, एडिटिंग भी आप ही करते हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो एडिटिंग सीखना भी चाहते हैं, तो क्योंकि आपने कहा कि आप बहुत सारा हसल भी किए हुए हैं, दूसरे भिलाई में जॉब किया है, जब आप दिल्ली में भी आपने जॉब करने की कोशिश की, और यहाँ पे भी आपका बिजनेस भी है, तो ये सिखाना भी, जैसे वीडियो एडिटिंग सिखाना भी एक तरह का असाइनमेंट हो सकता है, एक तरह का व्यवसाय हो सकता है, तो क्या कभी आपने इस बारे में सोचा कि मुझे वीडियो एडिटिंग शूटिंग वगैरह भी सिखानी चाहिए?
0: सिखाने के बारे में द थिंग इज लाइक सबका एक नीश होता है, एक इंटरेस्ट होता है. किसी को पढ़ाने में मज़ा आता है, किसी को पढ़ के करने में मज़ा आता है. तो हम पढ़ाने वालों में से नहीं है. लाइक हम किसी को सिखाना चाहें तो नहीं हो पाएगा, वो प्रॉपर एक्सप्लेन करना वो एक हमारे टाइप में नहीं आएगा. आई वुड से अगर आप किसी को बोलो प्रैक्टिकल सिखाओ कि ऐसे शूट करो, वो आई विल डू दैट. बट किसी को वीडियो एडिटिंग सिखाना है, बैठा के प्रॉपर इस नीश में घुस जाओ, तो वो हमें नहीं होगा. क्योंकि हमें खुद करने में जितना मज़ा आता है ना, वो अलग ही होता है. लाइक हम शूटिंग खुद करते हैं, शूटिंग सीखे हम यूट्यूब से, एडिटिंग भी यूट्यूब से सीखे. कोरोना टाइम में जो पूरा प्रॉपर टाइम हमारा स्पेंड हुआ एडिटिंग में हुआ, यूट्यूब में वीडियो देखना, बाहर रूम में बैठे रहना, तो कोई ऐसे कप रख दे, कप का वीडियो बना के, फिर स्पीड रैम्पिंग और फिर ट्रांजिशन शॉट्स एंड ऑल, ऐसे ऐसे कर करके. फिर देन भिलाई में जब वर्क कर रहे थे एजेंसी के साथ, वहाँ से सीखते सीखते सीखते वहाँ से मेटा एड मैनेजर, गूगल एड मैनेजर, और बूस्टिंग एंड ऑल, वीडियो इंस्टाग्राम मैनेजमेंट एंड ऑल, वो करते करते करते सीख गए. वहाँ पे मेन इशू ये था, हम 18+ नहीं थे, तो हमें प्रॉपरली उन लोग जॉब में नहीं रखे थे. हमें पैसा दे रहे थे, एक एग्रीमेंट होता है जॉब का एंड ऑल, ये सब कुछ नहीं था हमारे, क्योंकि उन लोग फिर वो हो जाते, तो हम साइड में थे.
1: लेकिन काम सीखा.
0: हाँ, वहाँ पे काम सीखा, आई वुड से काम सीखे. और थोड़ा उस एज में जब इंडिपेंडेंट हो गए थे, उस एज में हम 17 की एज में विदाउट फैमिली, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था, हम अपने पैसे से जी रहे थे. फिर उसके बाद यहाँ आए, यहाँ जब बिजनेस किया तो पापा का आधा था, हम आधा अपन दोनों मिलाए. देन अभी यहाँ पे जो आइजन आई केयर हम चला रहे हैं, वो अभी प्रॉपर एकदम ट्राई करके हम अपने से, मतलब पापा का ही, मतलब आई वुड से पापा का ही है, क्योंकि वो हेल्प किए हैं अभी तक. यहाँ जब ये आइजन आई केयर जिस लेवल पर पहुँचा है कि लोगों को पता है आइजन आई केयर में, इतना वीडियो वीडियो देख देख के, तो वहाँ तक अभी पहुँचाए हैं. और अभी इन्फ्लुएंसर भी स्टार्ट हुआ, इन्फ्लुएंसर भी उस लेवल तक अभी पहुंचेगा कुछ टाइम में. अभी 2 महीने में इतना ग्रोथ मिला है हमें. हम लोग चाह रहे हैं कि जगदलपुर में प्रमोशन बस नहीं करें, हम लोग को जगदलपुर का इंट्रोडक्शन देना है छत्तीसगढ़ में. छत्तीसगढ़ में लोग रायपुर जानते हैं, कांकेर जानते हैं, जगदलपुर भी जानते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंसर एक ऐसा ग्रुप बने जो जगदलपुर को पूरे छत्तीसगढ़ में एक की पॉइंट करके हाईलाइट कर दे कि जगदलपुर

0: बोलते बस्तर एरिया जो हम लोग का है वो आपको छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए बेस्ट एरिया मिलेगा, इससे अच्छा एरिया क्यों नहीं, ऐसा हाईलाइट करना चाह रहे। तो हम लोग स्टोरी टेलिंग जगदलपुर की स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ कोलैब करना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ कोलैब मिला, ऐसे टाइप के हम लोग कोलैब करके जगदलपुर को हाईलाइट करना है हम लोगों को, मेन बस्तर एरिया।
1: तो प्रमोशनल शूट अभी फिलहाल आप कर रहे हैं, उसको उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं,
0: बिल्कुल
1: जैसे व्लॉगर भी बोलते हैं,
0: हाँ, व्लॉगिंग
1: मोटो व्लॉगर या फिर जगहों को जो दिखाते
0: जी,
1: हैं
0: वो
1: व्लॉगर्स।
0: ट्रैवल, हम लोग का नीश जो है ना, हम लोग ट्रैवल व्लॉगिंग अलग हो जाता है, इन लोग कोई ट्रैवलर नहीं है, इन लोग एक क्रिएटर, आई वुड से क्रिएटर है, जो जिस जगह में रहते हैं उस जगह को इन लोग ऑडियंस को, जो ऑडियंस जानती नहीं है इस जगह, उस जगह का इंट्रोडक्शन देंगे, इस जगह में क्या मिलता है, यहाँ पे बेस्ट फूड ये मिलता है, यहाँ पे आप आओगे यहाँ यहाँ घूम सकते हो, एक जगह का इंट्रोडक्शन, कि कोई भी जानना चाहे जगदलपुर के बारे में तो वो हम लोग से कॉन्टैक्ट करें, हम लोग से मिले, एक आई वुड से एक फेस बनना चाह रहे हैं हम लोग जगदलपुर का, कि जगदलपुर या बस्तर एरिया के बारे में कोई भी जानना चाह रहा है तो टीम इन्फ्लुएंजा विल इंट्रोड्यूस यू टू दिस प्लेस एंड विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस।
1: तो आगे भी आपके बहुत सारे प्लान्स हैं।
0: या प्लान्स तो बहुत हैं, बट इम्प्लीमेंट करने में, बिजनेस हैंडल करो, ये हैंडल करो, लाइक इन अ पर डे वी हैव 2 to 3 shoots और वो होता ही नहीं है, बहुत सारे पेंडिंग चल रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, एक दिन में एक शूट आ रहा है, आज एक शूट था नहीं हो पाया, बारिश हो गई है, तो फिर शॉप में जाओ, शॉप में कस्टमर्स आ गए तो यहाँ हमें छोड़ के जाना पड़ता है इनको अकेले, तो वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड आवर टीम, के नए एडिटर्स जोड़ना, नए कुछ, तो बट द थिंग इज द वे आई वॉन्ट माई एडिट्स, वो वैसे टाइप के एडिटर नहीं मिल पा रहे हैं, आई एम गेटिंग सम के जो या तो बी रोल्स करके एडिट करते हैं या तो कोई स्पीड रैम्पिंग कर रहे हैं, हमारा रहता है स्टोरी टेलिंग एंड सिनेमैटिक, वो मिक्सचर कोई नहीं मिला अभी, लेकिन हमारा एक दोस्त आया है एंड आई एम ट्राइंग के वो उसी टाइप का निकले, तो हमें रिलीफ मिलेगा कि हम इसको छोड़ के अपने बिजनेस में ज़्यादा फोकस कर सके।
1: तो आपको जो चीजें चाहिए, जिस तरह का एडिटर आप चाह रहे हैं, उसके लिए तो आपको ही सिखाना पड़ेगा कि आप ऐसा कीजिए, मुझे ऐसा रिजल्ट
0: या
1: चाहिए।
0: दैट्स द
1: तो
0: मेन
1: आपके
0: थिंग,
1: जो दोस्त हैं उन्हें भी सिखाना पड़ेगा आपको ही।
0: वो स्पीड रैम्पिंग एंड अपना सिनेमैटिक एडिटर है, बस उसको स्टोरी टेलिंग में कैसे करना है वो हमें बता देंगे, तो ही कैन डू दैट, तो आई हैव टू वर्क ऑन दैट कि हम उसको सिखाएं एक प्रॉपर कि कैसे करना है क्या करना है, तो हम लोग का जो है और मेन अभी रिसेंट में हम लोग करना है एक जगदलपुर का इंट्रोडक्शन एंड आइकॉनिक विजन के साथ हम लोग कोलैब करके एक जगदलपुर का प्रॉपर इंट्रोडक्शन बनाएंगे, जिसमें हम लोग हर एक चीज़ हाईलाइट करेंगे, फ्रॉम जगदलपुर प्लेसेस, घूमने का प्लेसेस, जगदलपुर का बेस्ट डिशेस, बस्तर का डिशेस, बस्तर का ट्रेडिशन, और यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, एवरीथिंग 1 मिनट के अंदर वो करना है हम लोग, ये एक चैलेंज लेके चले,
1: 1 मिनट के अंदर तो पॉसिबल शायद ही होगा,
0: वही
1: क्योंकि बस्तर बहुत बड़ा है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ जो घूमने वाली चीजें हैं, घूमने की जगहें हैं, वो भी बहुत सारी हैं। लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, तो उस कोशिश के लिए हमारा आपको सपोर्ट है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे शूटिंग करने पड़ते हैं और आपकी टीम भी है, तो टीम को मैनेज भी करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें आप ही करते हैं?
0: फिलहाल इट्स अ टीम वर्क आई वुड से, हम इसको अरुणिता को बोलते हैं, अरुणिता संस्कृति को कांटेक्ट करती है, लाइक प्रॉपर मैनेजिंग अभी कोई नहीं कर रहा है, सब मिल के कर रहे हैं आपस में, इट्स अ टीम वर्क आई वुड से, और बाकी वीडियोस के स्क्रिप्ट एंड ऑल मैनेजमेंट ये हम ही करते हैं, बाकी अगर कभी स्क्रिप्ट हमसे नहीं हो रहा है तो अरुणिता को वो लिख देती है, कभी संस्कृति लिख देती है एंड
1: जी,
0: ऑल।
1: और जैसे अगर हम लागत की बात करें, तो जैसे बिजनेस का लागत तो अलग है, बिजनेस को हटा देते हैं, उसके अलावा भी आप लोगों ने प्रमोशनल शूटिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, चाहे कैमरा हो गया, ट्राइपॉड हो गया, या फिर लाइटिंग की उचित व्यवस्था हो, तो इन सारी चीजों को खरीदने में कितना पैसा लग जाता है, या फिर जो आप टीम मैनेज कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, उसमें कितना पैसा लग जाता है?
0: अभी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ऑल वो हम अपने बिजनेस के पैसे से खरीदे, क्योंकि शुरू में ग्रोथ के लिए लगाना ही पड़ता है, तो अभी तक फिलहाल अराउंड 80K रुपीज़, 80,000 रुपीज़ लग चुका है।
1: 80,000, उसमें
0: या
1: क्या क्या चीजें आई?
0: ट्राईपॉड है अपने पास, लाइट्स हैं, कैमराज हैं, फ़ोन एंड गिम्बल, और अभी रिसेंट में और थोड़ा बढ़ने वाला है, वो 1,50,000 का अभी अपने पास एक लैपटॉप आने वाला है, जो जिसमें एडिटिंग होगी तो बजट बढ़ेगा अभी, लेकिन वो हम लोग डायरेक्ट पूरा नहीं लेंगे, वो ग्रुप के ही नाम से होगा, कि ग्रुप के पैसे से उधर थोड़ा थोड़ा जाएगा कि हम लोग का।
1: ये जो इक्विपमेंट्स आपने बताया, गिम्बल की आपने बात की, वो क्या होता है, और क्या एडिटिंग के लिए बढ़िया कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ही जरूरी है, या फिर आप फोन से भी कर सकते हैं?
0: हम जब स्टार्ट किए थे शुरू में, आई वॉज डूइंग इन माई फ़ोन कैप कट, VN एंड बहुत सारे ऐप्स हैं, आप शुरू में अगर आपको स्टार्ट

करना है, एडिटिंग की जर्नी या कुछ भी, आप इजी पीजी कुछ शॉर्ट्स लीजिए, शॉर्ट्स को मर्ज कीजिए, मर्ज करके ट्रांजिशन डालिए, म्यूजिक के साथ अलाइन कीजिए, वीडियो एडिट हो जाएगा, कुछ मेहनत नहीं है। उसमें कैप्शंस डालना है, कैप्शंस के लिए आपको बहुत सारे, अभी तो AI का ज़माना आ गया है, कैप्शंस बहुत ईजी हो गए। आप गूगल में या क्रोम में ट्रांसक्राइब या कुछ भी करके वीडियो का कैप्शन जनरेट कीजिए, कैप्शन का SRT फाइल इम्पोर्ट करके डायरेक्ट आप कैप्शन, तो ये सब चीज़ आपका फ़ोन में हो जाएगा, आपको लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर

0: के अराउंड इजी पीजी आप उसमें 4K एडिटिंग भी कर सकते हैं, बट आपको ट्रैकिंग, हाई लेवल एडिटिंग, टेक्स्ट ट्रैकिंग, एनिमेशन और एन ऑल करना है तो उसके लिए आपको लैपटॉप लगेगा। तो लैपटॉप में भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास 20,000 से 30,000 का भी लैपटॉप, उसमें कैपकट डाउनलोड कीजिए, उसमें भी ईजी हो जाता है 1080p में। 4K एडिटिंग आपको अभी आई वुड से नीड नहीं होती है ज़्यादातर ऑडियंस, क्योंकि अपनी जो इंस्टाग्राम में रील का मैक्सिमम अपलोड करो 1080p है, उससे ज़्यादा अपलोड नहीं होता। 4K में भी डालोगे आप, वो कंप्रेस कर देता है उसको ऑटोमेटिक। तो
1: और ज़्यादातर जो ऑडियंस रहती है वो फ़ोन के माध्यम से ही चीज़ों को देखती है।
0: हाँ, फ़ोन के माध्यम से देखो, और आजकल अटेंशन स्पैम कम हो गया है। आप ज़्यादा हाई लेवल एडिटिंग करके लंबा वीडियो डालोगे नहीं देखेंगे लोग, आप छोटा वीडियो डालो
1: और
0: लो एडिटिंग के साथ
1: हो।
0: हाँ, छोटा वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग डालो, या छोटा वीडियो डालो जिसमें फनी हो या कुछ हुक लाइन हो, तुरंत वायरल जाएगा। आप बस एक वीडियो में पत्थर उठा के बोलो ये वीडियो वायरल है, जैसे गिरा दो, वैसे वीडियो भी वायरल जा रहे हैं। वो इंस्टाग्राम के हुक के ऊपर डिपेंड होता है कि अटेंशन स्पैम अभी ऑडियंस का बहुत कम हो गया, 3 to 4 सेकेंड। हम लोग के भी वीडियो में मैक्सिमम अराउंड 16 सेकेंड का वीडियो प्ले रहता है, कि 16 सेकंड देखते हैं उसके बाद स्किप कर देते हैं। तो हम लोग वही ट्राई करें कि हम लोग अटेंशन स्पैम का यूटिलाइज करके उसको ऐसा वीडियो बनाए कि शुरू के 15 सेकंड जो देखें ना, पूरा बैठने का कोशिश करें वीडियो में, पूरा वीडियो देखने की।
1: तो जैसे आपने बोला कि अटेंशन स्पैम कम हो गया है और ऑडियंस जो है 3-4 सेकंड में ही नेक्स्ट रील पे या नेक्स्ट शॉर्ट पे चले जाते हैं, तो उनका अटेंशन रिटेन करने के लिए आप लोग क्या करते हैं?
0: मेन हम लोग हुक पे वर्क पर करते हैं कि एक वीडियो एक 30 सेकंड से 60 सेकंड का होता है। अब उस 60 सेकंड को हम लोग 3 सेकंड में कैसे, अब जगदलपुर की ऑडियंस हमको पकड़ना है, ओके? तो जगदलपुर में जैसे वीडियो डाला जगदलपुर के बारे में, तो उसमें शुरू के 3 सेकंड में जगदलपुर की ये संस्था के बारे में आप कभी नहीं सुने होंगे। ये एक माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट कर देता है सामने वाले की, कि अब क्या नहीं सुने यार, हम लोग जगदलपुर में इतना टाइम से क्या नहीं सुने, क्यूरियोसिटी आया। फिर उसके बाद लास्ट 5 सेकंड में, उसके बाद के जो 5 सेकंड है उसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल देते हैं कि जो क्यूरियोसिटी है वो और बढ़े और डिटेल उनको मिल जाए। फिर उसके बाद जो डिटेल एक्सप्लेन करें, अगर ऑडियंस आपकी वीडियो में 15 से 10 सेकंड टिक गई ना, पूरा वीडियो देख के जाएगी। क्योंकि हम लोग भी जैसे अभी आप जैसे कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो 3D एनिमेशन का प्रोफेसर ऑफ हाव का देखे होंगे, कि वो बताता है कि जैसे कोई टैबलेट खाए गले में फंस गया, मरता कैसे इंसान, तो प्रॉपर 15-10 सेकंड में बता दे कि बंदा टैबलेट खाए, ये हुआ, ये गले में फंस गया। अब उसके बाद जो 45 सेकंड में पूरा एक्सप्लेन करता है, जनता देखती है क्यों, क्योंकि उनको 15 सेकंड में जो हुक मिल गया है ना, उनकी क्यूरियोसिटी तभी खत्म होगी जब वो 30 सेकंड 60 सेकंड तक देखेंगे, नहीं तो खत्म नहीं होगी। तो ये चीज़ को हम लोग यूटिलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं, अभी भी अपन प्रॉपर नहीं कर पाए यूटिलाइज, क्योंकि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे जगदलपुर की ऑडियंस को पसंद कैसा वीडियो आ रहा है। हम लोग स्टोरी टेलिंग ट्राई कर लिए, हम लोग फास्ट मूविंग शॉर्ट्स ट्राई कर लिए, हम लोग सिनेमैटिक ट्राई कर लिए, बट ऑडियंस कैसी है, किस टाइप की ऑडियंस है, कौन से पॉपुलेशन ज़्यादा है, या तो हम लोग देहाती टाइप वाले वीडियोस में ज़्यादा फोकस करें, या हम लोग प्रॉपर सिनेमैटिक में ज़्यादा फोकस, इसलिए हम आप लोग पूरा घुस गए हैं, हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं। फिर पता जब चलेगा कि नीश के यहाँ की ऑडियंस को ये पसंद है, वो करेंगे हम लोग यहाँ के ऑडियंस, लेकिन हम लोग बाहर के ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ ये भी होता है, तो वैसा टाइप का भी हम लोग कर रहे हैं।
1: वैसे भी आजकल जगदलपुर में तो बाहर के जो हमारे स्टेट्स हैं, दूसरे दूसरे जगहों के जो हैं व्लॉगर्स आके जगदलपुर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ बस्तर की संस्कृति को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके भी वीडियोस आपको बाहर के जो हमारे व्लॉगर्स हैं उनके पेजेस पे मिल जाएंगे, लेकिन हमारे बस्तर क्षेत्र के ही व्लॉगर उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है?
0: यहाँ पे अगर आप कोई एक प्लेस में ना बहुत लंबे टाइम से रहने लगते हो ना, वो प्लेस आपको बोरिंग लग जाती है, तो अगर चाहेंगे भी ना इन लोग वो जगह वापस जाएंगे तो उनको बोर लगे। जैसे हम लोग कोई एक प्लेस एक्सप्लोर करते हैं जो नया है, तो हम लोग के अंदर जो रहता है कि यहाँ क्या नया मिलेगा, कुछ तो होगा, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है जगदलपुर में जो रह रहा है बचपन से। तो अब उन लोग चाहेंगे तो बस एकदम वीडियोज़ जो भी बनाएंगे वो लो एफर्ट्स वीडियो रहेंगे, हाई एफर्ट्स नहीं रहेंगे। बाहर से जो आता है उनको पता नहीं है यहाँ तीरथगढ़ वाटरफॉल ऐसा दिखता है, यहाँ पे ये है, हम लोग यहाँ रहते हैं हम लोग को पता है, अरे 50 बार जाकर
1: हमारे लिए वो नॉर्मल
0: हो, उनके लिए वो नॉर्मल नहीं है। इसलिए उन लोग जब वो एफर्ट्स डालते हैं कि हमें बाहर को दिखाना है, बाहर के लोगों को, तो उन लोग पूरा अपना लगा देते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग देख अरे ये कौन नहीं देखेगा वीडियो, कौन नहीं देखेगा करके हम लोग वहीं पर दब जाते हैं। और वही इश्यू है कि यहाँ के व्लॉगर्स प्रॉपर दिखा नहीं पा रहे हैं जितना बाहर के व्लॉगर्स अच्छा दिखा देते हैं यहाँ का।
1: जी जी, और जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारे वीडियो एडिटिंग टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इन वीडियो एडिटिंग टूल्स जो आजकल मिलते हैं वो पैसे से मिलते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो सब्सक्रिप्शन वगैरह का पैसा भी आप लोग टीम से ही करते हैं?
0: अभी फिलहाल सब्सक्रिप्शन बहुत महंगे आते हैं, लाइक अराउंड एडोबी का ही सब्सक्रिप्शन

0: चलेंगे आप 3000 का पड़ेगा, फिर आपको वॉइस 11 लैब्स का लेना है उसका 900 रुपये, हर चीज़ चैट जीपीटी एंड ऑल। तो उसके लिए हम लोग क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं से क्रैक ढूंढ के एंड वी यूज़ दैट, क्योंकि इतना पैसा अभी यहाँ फंसा के सॉफ्टवेयर लेके काम करना, तो हम लोग का एक अपने लिए ही नहीं बचेगा मेहनत का, तो हम लोग उसको चाह रहे हैं कि फ्री में हो जाए काम। और अगर कोई ऑडियंस या कोई भी करना चाहता है काम, तो बहुत तरीके हैं। आपको एडोबी नहीं मिल रहा, एडोबी का क्रैक ले लो। आपको 11 लैब्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, नहीं मिलेगा, उसके अल्टरनेटिव्स वेबसाइट बहुत सारे हैं, हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव है नेट। तो आपको अल्टरनेटिव्स ढूंढना है बस। बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी होती है, बस पता नहीं है लोगों को, लोगों को पता करना पड़ता है। और बेस्ट ऑप्शन है पता करने के लिए यूट्यूब या इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप सर्च कीजिए, आपको बेस्ट अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे।
1: जी। और अभी तो मैंने जगदलपुर में ये भी देखा है कि कई ऐसे सोशल मीडिया पेजेस आ गए हैं जिसके माध्यम से प्रमोशन हो रहे हैं, दुकानों के प्रमोशन हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के प्रमोशन हो रहे हैं, जिनके फॉलोअर्स भी काफी थाउजेंड्स में है, 100K में है, मिलियंस में है। तो वो जो पेजेस होते हैं उनमें ज्यादा कुछ कंटेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है। आप लोग तो प्रमोशनल शूट कर रहे हैं, तो ऐसे फॉलोअर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भी क्या आप लोगों की कुछ तकनीक है?
0: वही चीज़ हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोग का अभी यहाँ जगदलपुर में मेन कंसर्न यही आ रहा है कि हम लोग देखें वीडियोस सब बना रहे हैं, बट जो वीडियोस आई डोंट वांट टू से के क्रिंज, बट वो थोड़े लो एफर्ट्स होते हैं, उसमें थोड़ा मस्ती मजाक होता है, एंड ऐसा चीज़ करते हैं उसमें कंटेंट के जो नॉर्मल ऑडियंस को नॉर्मल नहीं लगेगा, कुछ फनी टाइप एंड ऑल। तो यहाँ के ऑडियंस को वही पसंद आता है, और हम लोग का जो नीश है ना वो थोड़ा अलग ही है, सिनेमैटिक हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया। जैसे अभी रिसेंट में हम लोग का बेस्ट वीडियो गया है 30,000, प्रॉपर ऑर्गेनिक 30,000 व्यूज़। उसमें हम लोग जो हम लोग की जो लैंग्वेज है यूज़ कर रहे हैं वो बस्तरिया नहीं है, और वो जगदलपुर की लैंग्वेज नहीं है, वो हम लोग मिक्सड एकदम हिंग्लिश जो होता है ना वो यूज़ किया है, तो वो वायरल गया। तो हम लोग को बस थोड़ा टाइम लग रहा है समझने में कि यहाँ की ऑडियंस को पसंद क्या है जो हम उनको दिखा सके। यहाँ की ऑडियंस बहुत ज़्यादा अलग टाइप की है, जैसे हम रायपुर भिलाई में किए हैं ना, वहाँ पे एक पता है यहाँ इस टाइप के वीडियोस वायरल जाएंगे, इस टाइप के वीडियोस वायरल जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग समाज है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और उनके सबके कल्चर अलग हैं, बस्तरिया हो गया, फिर यहाँ जगदलपुर में प्रॉपर शहर के लोग हैं, सबका कल्चर अलग हो रहा है सब, तो सबको एक टाइप का वीडियो पसंद आ ही नहीं सकता है। तो कुछ ऐसा हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं कि सबको पसंद आए, सब देखना चाहे, और वो अभी 2 महीने में तो नहीं मिलेगा, एक साल उसमें वर्क करना पड़ेगा प्रॉपर डाल डाल के, तो पता चलेगा कि क्या है जो यहाँ की ऑडियंस हम लोग को जानेगी।
1: जी।
0: बट अभी रिसेंट में जितना डाला उसमें हम लोग को एक जान पहचान तो मिल गई है कि अरुणिता कहीं भी जाती है तो उसको आ जाता है समझे, क्या आप प्रमोशन शूट करते हो, हाँ जान पहचान मिल गया।
1: यही बहुत बड़ी बात है, इतने कम समय में अपनी खुद की पहचान बनाना, वो भी जगदलपुर जैसे बड़े शहर में, बहुत बड़ी बात है। तो अयाज, आपसे तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन फिर भी आपके काम के बारे में अगर कुछ जानकारी आप देना चाहें, या फिर हमारे युवा श्रोताओं से जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहें तो कहें।
0: गाइस, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, लाइफ में कुछ करना है तो बैठे रहने से नहीं होगा। मन कर रहा है जस्ट डू इट। लाइक हमें मन था, घर वाले पढ़ाना चाह रहे थे लेकिन मन नहीं था, अंदर से पढ़ाई का मन नहीं आया, बट पढ़ाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट। आई स्टडीड लास्ट 8 ईयर्स देयर एंड आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट एक इंटरेस्ट होता है, एक नीश होता है कि मेरे को इसमें जाना है। हमें वीडियो एडिटिंग में जाना था, मैं सिनेमाटोग्राफी में जाना था, हम गए, बट पढ़ाई आई एम डूइंग इट ओपन बोर्ड में कर रहे हैं, बट उसके साथ हमारा जो नीश है जिसमें हमें मज़ा आता है करने, वो करो। कोई चीज़ मजबूरी में मत करो कि मजबूरी, समझाओ सा घर वालों को, घर वाले नहीं समझे एट देन माँ बाप है समझ जाएंगे कि मम्मी ये में मेरे को टाइम दो। हम मम्मी को बोले कि हमें टाइम दो, हम प्रूव करके दिखाएंगे। आई वॉज देयर वर्किंग फॉर अ मंथ एंड आई सेड के गिव मी जस्ट फ्यू मंथ्स एंड आई विल प्रूव के आई एम गुड एट इट, एंड वो प्रूव किए ना तो घर वाले मान जाते हैं टाइम, कर ले बेटा तू इसमें अच्छा है, तू ये कर ले। तो आप मजबूरी में कोई चीज़ मत, अपने मन से करो, जो मन है आपको, जो बनने का मन है वो करो।
1: वैसे भी
0: बहुत
1: जिंदगी भर
0: छोटी
1: अगर
0: है।
1: किसी काम को करना है तो वो ऐसा काम होना चाहिए जिसमें आपका
0: आपका
1: मन
0: मन
1: लगे,
0: लगे
1: जिंदगी भर उस काम को क्या करना है जिसमें मन ही ना लगे।
0: बिल्कुल
1: तो सही संदेश दिया है आपने। और आजकल जो जेंजी है, आपके उम्र के जो लोग हैं, वो तो यही करते हैं कि अपने मन का काम करते हैं, जो उन्हें पसंद है वही करते हैं। तो आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए आकाशवाणी की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप यहां आए और हमसे इतनी सारी बातें की, और हमें उम्मीद है कि जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, युवा साथी आपको सुन रहे हैं, उन्हें भी हमारी बातचीत से कुछ ना कुछ जानकारी तो मिली ही होगी। तो आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: संगवारी मन।

0: व्यामी सुनते रहू मार्गदर्शन भेंटवाता मोहम्मद अयाजली एमन के भेंट करते रहो चंद्र ऋषि ठाकुर गीता अली ज्ञान ध्यान चो गोड बल तो आसे एक बले संगवारी मन लगे अमरोक लगवाए
1: अली मुरकर
0: हाँ तो ये जान सिद गीता दुनिया चो सबले बड़े फूल के जे चो नाव आए रेफेलेसिया ये दुनिया चो सबले बड़े फूल आए इंडोनेशिया चो जंगल मन ने ये फूल मिरुआ ये फूल चो व्यास लगभग 3 फीट तक रुहाए और ये चो वजन 7 ले 11 किलोग्राम रुहाए
1: और दुनिया चो सबले नानी फूल जे चो नाम है बोल्फिया ये दुनिया चो सबले नानी फूल आए एक वाटर मिल भले बोलुआत ये पानी चो सतह ने तहरुआत और ये चो आकार गोटुक नानी दाना लगभग 0.5 ले 1 मिलीमीटर इत्र रुआए
0: विज्ञान चो जोन शाखा ने फूल और हुंचो पौधा मंचो अध्ययन करुआत हुनके एंथोलॉजी नहाले फ्लोरिकल्चर बलुआत
1: हाँ तो संगवारी मन ए तो रली ज्ञान ध्यान चो गुड बात अदाय फिर ले गीत मन के सुनो तो गीत आए फिल्म आराधना ले शर दिला से मोहम्मद रफी और आशा भोसले
0: गीतकारात आनंद बख्शी और संगीतकारात एच डी बर्मन तो या संगवारी मन सुनू ये गीत

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हाँ तो संगवारी मन, आम्ही आशा करू से तुम्ही सपाय के आजीचो युवाणी कार्यक्रम पसंद दिली होते।
3: अदाय आमचो जातो समयाबले होली, तो आजी काजे आम की दिया बिदा। मैं धर्मराज पटेल
2: और मैं गीता ठाकुर,
3: शुभ संध्या जुहार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 14.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं।

मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज ले छत्तीसगढ़ के संग देश भर में लागू। इमा 125 दिन के रोजगार के गारंटी होगी। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग डहल ले तय बिजली के नवा दर आज ले लागू। और 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 183.50 रूपया के कमी, आज ले नवा दर लागू। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज ले छत्तीसगढ़ के संग देश भर में लागू हो गए है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है कहीन की वीबी जी राम जी अधिनियम में अवैया ग्रामीण परिवार ला हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार के गारंटी होगी। एखले ग्रामीण भारत सशक्त बनी। वर्तमान वित्तीय बछर में ये योजना ला चलाए बर 95,692 करोड़ रूपया के प्रावधान करे गए है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में अवैया संशोधित पारिश्रामिक दर आज ले लागू हो गए है। राष्ट्रीय औसत पारिश्रामिक मनरेगा के 258.80 रूपया ले बढ़ा के विकसित भारत जी राम जी मां अवैया 327.40 रूपया रोज के कर देगे है। इसमें पारिश्रामिक दर मां 10 ले ज्यादा के औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मां जहां पहली मजदूरी 300 ले कम रही उन्हें अब नवा दर लागू हो गए है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हां विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होयला एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताए है। श्री चौहान हां कहिन कि ए अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिक मन बर गरिमा आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करे के नवा अध्याय है। उन्होंने कहिन कि ए अधिनियम गांव के हर एक परिवार ला 125 दिन के रोजगार के वैधानिक अधिकार देते। तेल विपणन कंपनी हा 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम मा 183.50 रूपया के कमी करे है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नवा दर आज ले लागू हो गए है। एक कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली मा 2,930 रूपया मा मिली। ए फैसला ले रेस्टोरेंट ढाबा होटल और आने खान पान के व्यवसायी मनला लाभ मिली। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग डहर ले तय बिजली के नवा दर आज ले लागू हो गए है। अब उपभोक्ता मनला प्रति यूनिट 30 ले 50 पैसा ज्यादा बिल देना होगी। गैर घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर में 20 पैसा ले 40 पैसा प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुए है। उन्हें कृषि पंप के दर 40 पैसा प्रति यूनिट महंगा करे गए है। एकरे संग नवा टैरिफ मा कतकोन बदलाव करे गए है। एमा बिजली बिल के पहली भुगतान करे जाए मा 1.25% छूट ला घटा के 0.75% कर दे गए है। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग हा शासकीय और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूल में काम करैया पात्र शिक्षक मन के शिक्षा सत्र 2026-27 के आखिरी तक पुनर्नियुक्ति दे के स्वीकृति जारी करे है। इमा सहायक शिक्षक ले लेके प्राचार्य तक के शिक्षक शामिल है। लोक शिक्षण संचालनालय ला निर्देश दे गए है कि सबो जिला में जरूरी कार्यवाही जल्दी पूरा करे जाए। बीमित मनखे मन बर बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज ले अवैया बछर 30 जून तक बढ़ा देगे है। एकरे संग नवा ईएसआई अस्पताल के प्रबंधन अब सीधा निगम डहार ले करे जाही, जेखर ले उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करे जा सके। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत आज 11 बछर पूरा हो गए है। ए पहल ले देश भर में नागरिक ले जुड़े सीखे लेन देन करे और सरकारी सेवा के लाभ उठाए के तरीका ला बदल दे है। पाछू 11 बछर में भारत हा दुनिया के सबले बड़का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम ला एक तैयार करे है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हा कहे है कि डिजिटल इंडिया अभियान हा सुशासन ला नवा दिशा और देश के सबो विकास काम ला गति दे है। उमना कहीन है कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिया ले सरकारी सहायता पारदर्शिता के संग सीधा लाभ पवैया मंत्री पहुंचा थे। उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाघलो आज 10 बछर पूरा हो गए है। ये योजना 1 जुलाई 2015 के शुरू करेगी रही। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और कृषि

0: भूमिला सिंचाई के दायरा में लाके खेती में बड़का बदलाव लाए में मददगार साबित हुई है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़ बांचे समाचार कोती। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाए जाते। ये दिवस जन स्वास्थ्य के रक्षा के प्रति डॉक्टर मन के समर्पण और योगदान ला दिखाते। ये दिन हर बछर 1 जुलाई के डॉक्टर विधान चंद्र राय के जयंती और पुण्यतिथि के याद में मनाए जाते। ये बछर के विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मा देश के सबो डॉक्टर मन ला शुभकामना दिन। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मा आज छत्तीसगढ़ मा घलो आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते। गौरेला पेंडा मरवाही जिला मा स्थित पुलिस कंट्रोल रूम परिसर मा अधिकारी और कर्मचारी मन बर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन करेगी। शिविर मा 55 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के स्वास्थ्य के जांच करेगी। राज्य शासन हा कोरिया जिला के सोनहत इलाका में बहुचर्चित नवगई तिहरे हत्याकांड के जांच CBI ला सौंपे के अधिसूचना जारी कर दे है। जानबा के मुताबिक पाछू 16 जून के नवगई निवासी भरत सिंह घरवार उर्फ लल्ला सिंह के संग नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह के कार में जिंदा जला के हत्या कर दे गई रही। ए मामला के जांच अब CBI कर ही। जांजगीर चांपा जिला के बमनीडी नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद के शपथ ग्रहण समारोह काली 2 जुलाई के आयोजित करे जाही। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल ही। उन्हें कार्यक्रम के अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण सावकर ही। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डटसेना और सबो नवनिर्वाचित पार्षद पद और गोपनीयता के शपथ ली। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग धमतरी जिला में एक और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के स्थापना ला

0: भाग और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में दो बाघ के खाल के संग दो आरोपी मन ला गिरफ्तार करे गए है। जांच में आरोपी मन तिल्ले पेंगोलिन के शल्क घलो बरामद करे गए है। दोनों आरोपी पुलिस विभाग ले जुड़े बताए जावत है। अब थोरकून समाचार सार मा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर ला शैक्षणिक सत्र 2026-27 बर 125 एमबीबीएस सीट बर मान्यता के नवीनीकरण प्रदान करे है। राज्य शासन हा श्रम विभाग में 11 अधिकारी के स्थानांतरण के आदेश जारी करे है। सबो अधिकारी मल्ला प्रशासनिक दृष्टिकोण ले अवैया आदेश तक नवा पद स्थापना दे गये है। उन्हें 33 जिला में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के घलो तबादला करे गये है। कोंडागांव जिला के फरसगांव तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी हा स्टेनोटाइपिस्ट के नामांतरण के मामला में एक किसान ला 10,000 रूपया की रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। रायगढ़ जिला के गढ़घोड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग के टीम हा कुरकुट नदी ले रेत के अवैध परिवहन करत 12 ट्रैक्टर ला जब्त करे गए है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौ फेर। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज ले छत्तीसगढ़ के संग देश भर में लागू। एमा 125 दिन के रोजगार के गारंटी होही। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग डहर ले तय बिजली के नवा दर आज ले लागू। और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 183.50 रूपया के कमी आज ले नवा दर लागू। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 6:20 होने को है। संस्कृत समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: विद्युतमार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति। यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
1: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: भारतीय ऋतु विभाग अवदत् यत् आगामि दिनेषु दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृत् कालः अग्रे गमिष्यति। आगामि दिनद्वयोः उत्तर प्रदेशे, बिहारे, उत्तराखण्डे, ओडिशा प्रदेशे, विदर्भ क्षेत्रे च प्रचण्डतः अतिवृष्टेः ऋतु विभागेन नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देशः अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 इत्यंकैः पराजित्य 16वें चरणे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गोंडी समाचार बुलेटिन।
3: हिद आकाशवाणी जगदलपुर गोंडी समाचार बुलेटिन तसंगे नन्ना रमेश कुमार पोड़ियामी नेंडता मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी लोग जल संरक्षण किया और केज द रेन अभियान थे भागीदारी ता अपील कित्तोर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना ता तहत रूपटॉप सोलर वाटा और उपभोक्ता लोग अतिरिक्त बिजली ता लाभ दुर्किता। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा अपन बस्तर प्रवास ता दौरान कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव जिला का दौरा कित्तूर। बस्तर गोंचा महापर्व देव स्नान चंदन यात्रा पूजा विधान ता संग शुरू हत्ता। इंजे समाचार कुंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्तद 28 जून ते आकाशवाणी तिना मन की बात कार्यक्रम ते कित्तूर की स्वदेशी रक्षा उत्पादन तक ध्यान वाटसो भारत समुद्र तिना पोस आकाश मोयल एवना तिब्बे सुरक्षित और आत्मनिर्भर बने आयमता। श्री मोदी कित्तूर की जून लेंज ते स्वदेशी C-295 विमान ता मुन्ने उड़ान ता संग ई भारत विमानन डेढ़ा ते उन बढ़िया सफलता हासिल किता। श्री मोदी कत्तर की इद्दे लेंज कोलकाता ते मुंड युद्धपोत ना जलावतरण किता और DRDO लंबा दूरम एवना क्रूज मिसाइल ता सफल परीक्षण किता। प्रधानमंत्री पश्चिमी एशिया युद्ध ता दौरान होना अपील तक देशवासी लोरा समर्थन और सहयोग तले आभार व्यक्त कित्तूर। प्रधानमंत्री देशवासी लोरतिना जल संरक्षणता संबंधी कित्तूर की मुसुड़ एरता ओंड ओंड बुनतीन बचा कीनत और कित्तूर की कैच द रेन अभियान ते चुडूर वेन डिलाई आईमकी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून ते नई दिल्ली ते स्वास्थ्य डेढ़ा तलाय नक्के डिजिटल पहल ना शुभारंभ कित्तूर। इदिनक आरोग्य सेतु ता दूसरा चरण आयुष्मान सारथी चैटबॉट आयुष्मान एप ई सुश्रुत क्लिनिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत का डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तीन मजबूत किए लय स्वास्थ्य मान का शामिल मिंदे। अपन संबोधन ते श्री नड्डा ई पहल किन सरकार ताकेट हासिल कित्तत उन महत्वपूर्ण उपलब्धि कित्तूर और कित्तूर की ईद डाका स्वास्थ्य भारत और डिजिटल रूप तिना सशक्त राष्ट्र पाड़ाना दिशा ते देशमता यात्रा ते महत्वपूर्ण भूमिका निभा कीता। श्री नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नेतृत्व ते स्वास्थ्य सेवाना महत्वपूर्ण विस्तार का उल्लेख कित्तूर और कित्तूर की केंद्र स्वास्थ्य सेवाना दायरा पेड़ी कीता। इदिन ले देशमता नागरिक लोरलय स्वास्थ्य सुविधा नक्कय सस्ता और सुलभ हाता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कर्नाटक का राज्यपाल वर्चन गहलोत अत्तद 29 जून ते संत कबीरदास ना जयंती ता अवसर तक रायपुर ता सोनपुरी ते आयोजित कबीर जयंती महोत्सव ते शामिल अत्तोड़ कार्यक्रम तीन संबोधित की सो मुख्यमंत्री कित्तूर की संत कबीर दास ना आदर्श जाति पंथ तिना पुर्रो तेदी सामाजिक सद्भाव आत्मचिंतन और लोक कल्याण ता प्रेरणा इत्तोर। ईद मौके तक श्री साई घोषणा कित्तूर की मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना ता समय मून लेंजना लय पेड़ी की नद इदिन ले दिब्बे उपभोक्ता लोर सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधान न लाभम पॉइस अपन बिजली बिल।

भुगतान की तोड़। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का तहत रूपटॉप सोलर वाटर नोड अलग उपभोक्ता लोग और बिजली का लाभम दुर्किता। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ताकेट तय बायबैक दर तीन लागू किए ना प्रक्रिया शुरू किता। मंजूरी दुर्काना पेर के ग्रिड ते लोहतद और सोलर बिजली का पैसा उपभोक्ता लोग वायनत बिजली बिल ते क्रेडिट का रूप ते दुर्किता। नेट मीटरिंग व्यवस्था तिना अतिरिक्त बिजली का हिसाब तासनद। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का स्थापना था एंग वर्षा पूरा अत्तान के छत्तीसगढ़ ते 29 जून तिना सहकारिता सप्ताह पाड़मुंता 6 जून एवना चलेम आयनद ईद सप्ताह का दौरान प्रदेश में ते सहकारिता तीन बढ़ावा ये लय निकाय कार्यक्रम आयोजित किए मुंता। रायपुर ते वायना 3 और 4 जुलाई ते राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन कीनद। इदिनक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि का रूप ते शामिल आयनोर सहकार मेला ते सहकारिता डेढ़ता उपलब्धि और सफल मॉडल ना प्रदर्शन किया ना। 6 जुलाई ते केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह नाकेट अन्न भंडारण योजना का तहत प्रदेश का 9 पैक्स ने गोदाम पाड़ना काम ना भूमि पूजन किया ना। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा अपन बस्तर प्रवास दौरान कांकेर नारायणपुर और कोंडागांव जिला का दौरा कित्तौर। श्री शर्मा 26 जून ते कांकेर ते नक्सल पीड़ित परिवार और शहीद जवान ना परिजन ना संग मुलाकात कित्तौर। इदिन अपित्ते उप मुख्यमंत्री वीर जवान शहीद लोरा स्मृति तीन चिरस्थायी पाड़ालय प्रदेश में ते विशेष अभियान चला किएना घोषणा कित्तौर। ईद अभियान का तहत नार ने सामुदायिक भवन चौक चौरा और सार्वजनिक डेरा ना नामकरण शहीद ना पेड़ तक किए न संगे ई बेव डेरा ना नक्सल हिंसा बढ़िया घटना आसमत्ता अग्गा उपयुक्त डेरा चिन्हित किस स्मारक पाड़ा केतनद। इतके वायना पीढ़ी शहीद लोरा सर्वोच्च बलिदान तिना प्रेरणा।

और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हत्तत 27 जून ते सुकमा जिला ता जगरगुंडा चिंतलनार पूर्ववर्ती और सिलगेर ता दौरा किता। इधे दौरान आज पूर्ववर्ती और सिलगेर मिंदद आंगनबाड़ी केंद्र ता निरीक्षण किता। संगे ई अन्न प्राशन और गोद भराई कार्यक्रम ते शामिल आज मुत्तेना संग चर्चा किता। श्रीमती राजवाड़े सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र लस्के पारा चिंदगढ़ ता पोषण वाटिका ते पिल्लाना संग मुनगा और पपीताना पौधारोपण किता। इस अवसर तक आज हर घर मुनगा घर घर सुपोषण ता संदेशी सो पौष्टिक आहार पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता ता आह्वान किता। अगे श्रीमती राजवाड़े बीजापुर ते आयोजित पत्रकार वार्ता ते कित्ता की माओवाद मुक्त बीजापुर इंजे विकसित बीजापुर बनेम आयना अरते मुन्नेम पेरसा मुन्ता। अद कित्ता की राज्य और केंद्र सरकार ता समन्वित हुआ टीना इंजे जिला ते विकास ता पूना द्वारा शुरू अत्ता शासन ता कुंडे योजना ना लाभम माणिंग माने एवना एविकेना सरकार ता सबले बढ़िया प्राथमिकता। श्रीमती राजवाड़े कित्ता की जिला ते सड़क बिजली कुंडना एयर शिक्षा स्वास्थ्य आंगनबाड़ी संचार और दूसर जरूरी सुविधा ना तेजी तीना विस्तार किएना। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ता अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय PIB रायपुर ता किट 27 जून ते जगदलपुर ते वार्तालाप मीडिया संवाद कार्यशाला ता आयोजन किता। कार्यशाला तीन संबोधित किसो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोकन साहू अत्तव 12 वर्षा ने केंद्र सरकार ता फेलोशिप योजना और उपलब्धि ना लेखा जोखा साझा कित्तोर और सेवा सुशासन और गरीब कल्याण ना कल्याणकारी नीति तीना बस्तर नक्सलवाद ता अंधेरा तीना पोइस विकास और विश्वास ता पूर्ण अर्थक मुन्ने बरसा मुन्ता बस्तर ता सुनता सुदूर डेढ़ा ता सतत परिवर्तन तले शिक्षा और विकास रेंड सबले महत्वपूर्ण स्तंभ मिंदे। अगे कार्यक्रम ता अध्यक्षता किसो सांसद महेश कश्यप केतुर की बस्तर ता आदिवासी लोरा सामाजिक उत्थान सुरक्षा और सतत विकास तले केंद्र सरकार प्रतिबद्ध मिंदे। कार्यशाला ते जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि लोर भाग पोत्तोड़ और बस्तर ता विकास काम और जन कल्याण योजना न चर्चा कित्तोड़। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का तहत गर्भवती और शिशुवती माता ना पंजीयन तलाय 15 जून तिना संचालित विशेष अभियान ते छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किसो देश में ते मुन्ने डेढ़ा दुर्की था। प्रदेश ते अभियान ता शुरुआत 9 दिना ने ही निर्धारित लक्ष्य था 72% पूरा की उल्लेखनीय सफलता हासिल किता। ईद अभियान वायना 15 जुलाई एवना चलेम आयना। ईद उपलब्धि तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े विभागीय अधिकारी लोर कर्मचारी लोर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कुंडे ईद ग्राहक लोर पिन बधाई इतोड़। प्रदेश ते रबर टायर ता लेवा आयरन केजबिल तव ट्रैक्टर ना मार्ग नग संचालन तक रोक पाटता परिवहन विभाग ता नियम ता उल्लंघन किएनोड चालन कार्रवाई ता निर्देशित था। ईसुनता गार्डना उपयोग चुज्जे वेडा ते कृषि काम तलाई किएन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE त्रिभाषा नीति तक दिशा निर्देश जारी किता। बोर्ड कित्ता की कक्षा 10वीं इंजेता बेचतीन पूर्ण भाषा नीति ता पालन की नद अयो। बोर्ड इद्वन कित्ता की कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं ते पढ़ेम अमुतोड़ वर्तमान बेचता छात्र लोर क्वेन कक्षा 10वीं ते एवके तीसरा भाषा ते बोर्ड परीक्षा येना जरूरत अयो। बोर्ड कित्ता की कक्षा ता अनुरूप संसाधन जोगड़ाम समयबद्ध तरीका तीना दुर्की था। मुख्यमंत्री IT फेलोशिप तले ऑनलाइन आवेदन 7 जुलाई एवना किएनर। ईद योजना तहत एमटेक डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ते प्रवेश पोतनोड चयनित विद्यार्थी लोर कुंडलेंज 50,000 रुपया फेलोशिप येनर। ट्यूशन फीस ता पूरा खर्चा राज्य सरकार येनर। मुख्यमंत्री IT फेलोशिप कार्यक्रम नवा रायपुर मिंदद IIIT NR ते संचालित किएनर। ईद कार्यक्रम तहत विद्यार्थी लोर उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा ता संघ राज्य शासन ता निकाय विभाग ने वास्तविक परियोजना न काम किएना अवसर दुर्कित। इदिन ले प्रभावशाली युवा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस ता डेढ़ते व्यावहारिक अनुभव हासिल आता और शासन ता डिजिटल सेवा और नवाचार आधारित पहल ते योगदान ता अवसर वन दुर्किता। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग चालू शैक्षणिक सत्र ते प्रदेश ता 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ते कक्षा 6वीं ते प्रवेश ता लय चयनित अभ्यर्थी लोरा मेरिट सूची जारी किता। इदिन संगे ई विभाग ऑनलाइन काउंसलिंग का तारीख वेन घोषित किता। काउंसलिंग ता प्रक्रिया विकासखंड स्तर तक 30 जून ते अत्ता। अगे जिला स्तरीय तक काउंसलिंग ता प्रक्रिया नाड़ 2 जुलाई ते आता। राज्य स्तर तक काउंसलिंग 3 जुलाई ते विशेष पिछड़ी जनजाति समूह और आरक्षित वर्ग तले 4 जुलाई ते और आरक्षित दिवस 6 जुलाई ते आयनद। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का विद्यार्थी लोर लय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जून तिना शुरुआत था। आदिवासी विकास विभाग का अनुसार छात्रवृत्ति तले आवेदन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल ता माध्यम तिना पोतनद। आगे पुनः आवेदन 1 अगस्त तिना स्वीकार कीनद। बस्तर गोंचा महापर्व 29 जून ते जगदलपुर मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर ते देव स्नान चंदन जात्रा

पूजा विधानता संघ सुरुवात था। ईद अवसर तक भगवान जगन्नाथ देवी सुभद्रा और बलभद्र था पंचामृत चंदन और इंद्रावती कुयर था पवित्र एरती ना परंपरा अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार था नड़मा महाअभिषेक कित्तोड़ इदिना संगे ई भगवान ना अंसार काल सुरुवात था जोन 14 जुलाई एवना चलेम आयनाद ईद समय ते श्रद्धालु भगवान ता दर्शन किया परवोड़ आरण्य ब्राह्मण समाज ता अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे कित्तूर की बस्तर गोंचम पर्वता तहत परंपरा अनुसार कुंडे पूजा विधानता संघ कित्तूड़ और कित्तूर की 15 जुलाई ते नेत्रोत्सव पूजा विधानता संघ भगवान जगन्नाथ देवी सुभद्रा और बलभद्रता दर्शन आता अगे 16 जुलाई ते श्री गोंचत रथ यात्रा पूजा विधानता संघ भगवान जगन्नाथ तीन सिरासार भवन ते स्थापित किए अग्गा 9 दिन एवना श्रद्धालु भगवान ता दर्शन किया प्रदीतोड़ बस्तर गोंचा समिति ता संरक्षक ईश्वर कंबारी कित्तूर की 25 जुलाई ते एकादशी ता संघ बस्तर गोंचा पर्व माड़िता माड़िंग ते मुख्य समाचार वेंडे उंडम मन की बात कार्यक्रम ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी लोग जल संरक्षण किया और केजदार रेन अभियान ते भागीदारीता अपील कित्तूर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ता रूफटॉप सोलर वाटा और उपभोक्ता लोग अतिरिक्त बिजली का लाभम दुर्खिता उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा अपन बस्तर प्रवास के दौरान कांकेर नारायणपुर और कोंडागांव जिला का दौरा कित्तूर बस्तर गोंचा महापर्व देव स्नान चंदन यात्रा पूजा विधानता संघ शुरू अत्ता ईदिना संगे गोंडी समाचार बुलेटिन ता ईद अंक की गये माड़िता जोहार।

अभी आप सुन रहे थे गोंडी समाचार बुलेटिन। मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में विज्ञापनों के बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए।

0: जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वीबीजी रामजी अधिनियम आज से देश भर में लागू, इसके तहत छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर में 13% की वृद्धि की गई। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू। रेलवे ने दुर्ग तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की स्थापना को दी मंजूरी। और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की गई। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जीरामजी अधिनियम आज से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में लागू हो गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी दर को 261 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस तरह से मजदूरी दर में 13% की वृद्धि की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है।
8: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी, बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
7: श्री चौहान कल 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के बोड़ला विकास खंड की गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक देने होंगे। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है। वहीं कृषि पंपों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई हैं। इसके साथ ही नए टैरिफ में कई

बदलाव किए गए हैं। इसमें बिजली बिल का अग्रिम भुगतान किए जाने पर 1.25% छूट को घटाकर 0.75% कर दिया गया है। पिछले दिनों चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरें घोषित की गई थीं। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर डिवीजन के अंतर्गत दुर्ग तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 13 स्टेशनों पर मौजूदा पैनल इंटरलॉकिंग प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से बदला

0: जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 55 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की स्वीकृति जारी की है। इसमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य भी शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में आवश्यक कार्यवाही जल्द पूरी की जाए। जांजगीर चांपा जिले की बमनीडीह नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह कल 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डटसेना और सभी नवनिर्वाचित पार्षद पद तथा गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्य शासन ने कोरिया जिले के सोनहत इलाके में बहुचर्चित नवगई तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि बीते 16 जून को नवगई निवासी भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह सहित नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की कार में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने महिला कार्यकर्ताओं के लिए बूथ स्तर तक डिजिटल प्रशिक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने बताया कि डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, इतिहास, नमो ऐप के उपयोग और केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर स्थित बांदे परिक्षेत्र में एंटी पोचिंग टीम ने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर वन्यजीव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 बाघों की खाल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में आरोपियों के पास से पेंगोलिन के शल्क भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी पुलिस विभाग से जुड़े बताए जा रहे हैं। कोरबा जिले में कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरीकला में आज 3 नकाबपोश लुटेरों ने सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। मिली जानकारी के अनुसार ये नकाबपोश एक मोटरसाइकिल से ग्रामीण बैंक के पास स्थित ज्वेलर्स दुकान पहुंचे और दुकान संचालक पर धारदार हथियार से हमला कर सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी MB पटेल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ स्थानों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि राज्य के अधिकांश स्थानों में कल हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक इस मानसून के दौरान मौसमी वर्षा सामान्य से 60% कम दर्ज की गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है।

0: इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाउ ठाकरे परिसर स्थित सहयोग केन्द्र में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों निकायों में पार्षद निधि के रूप में 104 करोड़ 54 लाख रूपये से अधिक की राशि जारी की है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 150 MBBS सीटों की मान्यता का नवीनीकरण प्रदान किया है। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने धमतरी जिले में एक और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कोंडागांव जिले के फरसगांव तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने स्टेनोटाइपिस्ट को नामांतरण के एक मामले में किसान से 10,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने कुरकुट नदी से रेत का अवैध परिवहन करते 12 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। VBG रामजी अधिनियम आज से देशभर में लागू। इसके तहत छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर में 13% की वृद्धि की गई। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू। रेलवे ने दुर्ग तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की स्थापना को दी मंजूरी। और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम फुलो दिदी, राम राम
1: राम राम पनकु, राम राम उमर लिसने
0: हा उमर ले काय
1: दक पानी पानी बोल अमुक लागू आहे नी
0: कसन करू आज बादरी ढाकली से और अचानक ही हुंदा ऐसे
1: आय काय मंत्रे जी संग संग दादी मन बोल जोहार करत रहे
0: हा
1: बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सपाय दादा दीदी सियान सजन मन के मैं फूलो
0: और मैं पनकु
1: हमी दोनों करू से
0: राम राम ए दख दादा दीदी तो भेट कर लू पिला मन के नहीं भूल कू
1: नहीं हुन कसन भूल कू आस्ता हुन मन के बोले हम तो दोनों चबाड़ ले खूब खूब मैं और चुमा बोले
0: हाँ।
1: नहा ले फिर रिसा दे
0: समय होले टाकुर असोत नहीं आमचो गोट मन के सुन तो काजे
1: सुन तो काजे आए के हाँ। गीत गोविंद बोल रहे से कहानी बोल रहे से आए कि नहीं सपाय गोट मन के सुने सो
0: हाँ तो फूलो दीदी ये भी तो तू घर बाट ले चीलीस भी ने
1: आए के आजकल के बूता बोल होली सकाय बाबू बेड़ा बाटे ने पानी मार ले फिर बेड़ा ज बूता है के
0: हाँ तो मैं बोलते रहे कि देख नु आमचो बस्तर आए नहीं आगे हार ले आगे जुग ले नाले आगे चो बेरा ले खूब सुधर होली से
1: देख ये फिर बदलते रहे सिखाए नहीं खिंडी खिंडी अच्छा अच्छा काम होते गले फिर बदलते जाए से पीला बोले तक बी पीला रल दे ना नहीं रहे से खिंडी खिंडी ए बोल बाड़े से पर जुआन हो से पर फिर आधा उम्र हो से नहीं फिर सियान हो से उसने खिंडी खिंडी बदलते रहे
0: ए भी देख काय नंगत भूल तो भी ती मन जगह मन बल बनाला से
1: आए बस्तर

0: चो चिपा गुचे दे एचे संगे कल पूजा चो अमरातो काम वाले सरल होए दे बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और 3 चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाई कम GST दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनु रह दे
1: तो पन को
2: हाँ दीदी
1: धक्का ऐसुन दरे गोट मन के तो सुन लो ने
2: हाँ
1: मन तर धक हम कई ठन गोट मन के धरन भातियों से विचार मन के धरन भाती हमरो से ने
2: हाँ हम चलक गोटक भेट वार्ता से ये अल्जाइमर बीमारी चु गोट के कर सोत तो
1: एक कौन संग सोत
2: ये मन आता डॉक्टर MR कश्यप और ये मन संगे भेट कर सोत नारायण सिंह बघेल
1: आते वे गोट बात के हम बोले सुनो आधा दीदी मन बोले सुनो
2: हाँ
3: भाई बहन मन तुमके तुम संगे आमी समय समय ने डॉक्टर साहब मन के हक दिन भाती भेंटघाट कराऊं से और गोटबात करूं भाती हम कईक रोग मन के जानू से कि उन रोग मन कसन होए से कसन बेरा होए से कौन कौन के होक सके और ये रोग मन ले कसन कसन आम के बाज तो रहा ये सफाई गोट के सांग तो काजे आज ही आम चलगीला से डॉक्टर MR कश्यप और ए मन के आज ही आमी पूछू से गोटक बोलबे रोग होए से अल्जीमर बोलते तो ये अल्जीमर बीती कसन आए कसन बोलोनी ये रोग चुनाव के तो खूब कम लोग मन सुनला से होती तो यही रोग के जानून आजी जान तो काजी आम चलक डॉक्टर MR कश्यप अमरला से तो डॉक्टर साहब सबले पहल तो मैं यही पूछू आए भी कि ये जो अल्जीमर बोलते बीती रोग आए ये काय बीती आए तो ये गोट के सबले पहल सांगा
4: हाँ अल्जीमर रोग एक प्रकार जो मस्तिष्क ने हो तो बुढ़ापा समय ने हो तो बीमारी आए और ये जमाए लोग के हो नुआ कि 15-20 जान ने बुजुर्ग लोग आसोत उन ने कम से कम एक नहीं तो दुई जान के हो सके नहीं जाले 20-25 जान बुजुर्ग लोग ने एक जान के बोले हो सके ये जरूरी नहीं है कि जमाए लोग के ये बीमारी हो गए
3: बोल तो बोलो ने ये आमचो मस्तिष्क ने बोलो ने आमचो जन बोलो दिमाग जन रहे से
4: दिमाग ने

0: कुनै भाग्ने सुजनी लने जसन न्यूरोसिप्लिस बोलवा एक बीमारी है हुन मस्तिष्क हुए हुन जो कारण ने बोले कुनी भाग सूजन हो सके नहीं तो फिर वायरल बीमारी सिर ने चढ़ लो ने हुन कारण ने बोले हो सके हुन भाग ने असन होलो ने आम जो खून सप्लाई खून बहुत और कम हो से और हुन मस्तिष्क जो भाग सुखुन जाऊ है हुन कारण ने बोले हो सके और गोटो कारण असन आए कि कोनी लोग पीतो ने आदत बना सो तो लगातार पीतो शराब पीऊ तो गांजा भांग
1: एमन पीलो
0: नशा चीज एमन पीलो ने कोनी मस्तिष्क कोनी भाग के नुकसान पहुंचा सके ये बोले एक कारण है और गोटो कारण विटामिन जो कमी होलन बोल हुआ है जैसे विटामिन B12 जो कमी ने उन भाग ने मस्तिष्क असर पड़ा है और आम जो शरीर ने बोले अच्छा चल तो काजे खून ने शुगर बोलवा शक्कर च मात्रा बराबर रहतो रहा है तो कुछ शरीर में एकदम कम हो दिलो ने तो हुन कारण ने बोले मस्तिष्क के अच्छा शुगर च मात्रा हो जरूरत पड़ गए तो कम होल ने हुन भाग ने बोले ना होता चो टिशू बोलवा एक मस्तिष्क चो एक हुन भाग के बनाए
1: रखो लाल भाग
0: हाँ लाल लाली भाग हुन बोले सुखन जातो कारण में असन हो सके नहीं जल कोनी बोले गोटक एक जहर हो से कार्बन मोनोऑक्साइड बोलवा हुन आम कोनी हो आदमी जो मस्तिष्क ने खूब असर करू है हुन कारण वाले बीमारी हो सके और ब्रेन ट्यूमर तो कॉमन एकदम आए उनके खूब लोग सुन ला से तो ब्रेन ट्यूमर बोलो ने कोनी भाग मस्तिष्क जो फोटका हुन जाए दे हुन मस्तिष्क जो भाग बाढ़ते जाए दे खूब सिर दर्द हो दे तो हुन एक ब्रेन ट्यूमर
1: हम कहा है बोले हाथे पाए कौन लग बोले फुटका सन हो से हुन फिर बाढ़ते
0: जाए
1: उसने हम जो हुन
0: दिमाग ने बोले उसने एक प्रकार जो हुन कैंसर आए तो हुन ने होलन बोले हम जो एक प्रकार जो बीमारी हो सके कि हम जो आदत व्यवहार बदल सके और एक ठन गोटक बीमारी है कि उनका चेहरा सूजन नहीं हुआ है मिक्सिड माना चो एक बीमारी है खासकर महिला मन के हुआ है और हाँ बायले मन के तो हुन कारण ने बोले हुन चेहरा सूजन ही लोने हुन नाक कान ने और हुन मस्तिष्क ने असर कर पड़े करू आए तो हुन कारण ने बोले ये एल्जीमर नाव से बीमारी हो सके
1: तो ये बोलो भी इतलो कारण तुम्हें सांगलास कि इतलो जन कारण ने ये जो बीमारी है ये हुक सके और तुम सांगला कि ज्यादा करुण भाती ये जो जुगे उम्र से लोग मना सियान लोग मना
0: हाँ
1: हुनी मन के जैसे शरीर थाकते हाँ, जाए से
0: हुनी मन के हुनी मन के
1: तो एक है तो कसन ने चिता मा बोलो ने काय काय कसन कारण ने हो से और ये सफाई कोट के सांगलास तो एक चिता का जे ये ची लक्ष्मण लक्षण मन हो से
0: हाँ ये तो कारण और लक्षण थोड़े सांग ले से मैं और ज्यादा लक्षण सांगे दे कि हुन बीमारी चो ग्रसित लोग के काय काय हुन मन चो व्यवहार और आदत हो
1: कसन तकलीफ हो से काय हो से
0: तकलीफ हो से सांगे दे हुन ज्यादातर बड़े के हुआ है ये तो बात सही है मानतर बड़े उम्र ने हुन मन चो धीरे धीरे आप लोग मानसिक असर बोले होलो कारण में उनचो ज्ञान ने बोले कमी हुआ है उनचो याद दास्तन कमी हो दे और एकदम उनचो आदत में
1: भुलक तो आदत गुटक हो से
0: हाँ भुलक तो आदत
1: जैसे कहीं चीज के सुरता नहीं रहे
0: हाँ तो ये सब उनचो आदत है और चिंता ज्यादा बोल करू आत ये सब यही बोल बीमारी चो लक्षण में हुआ है शुरू शुरू में तो उनके रात में नींद बोले उठ नहीं सके और आगे जाऊन फिर हुन रात भर बेचैनी हो सके और भुलक तो असन हो ये सब चीज तो हो जाए हुन चल फिर बुजुर्ग लोग मन कहीं परिवार चो समाज चो नहीं तो कहीं जिम्मेदारी चीज चो निर्णय कर तो काजे कोनी हो लोग बुजुर्ग पूछवात तो हुन मन चो निर्णय बोल कोनी समय में ये बीमारी कारण गलत हो सके हुन चल फिर
1: बंद कर
0: फिर जसन कहीं पूछ लो ने ठीक से सुनुक नहीं सकोत और हुन चल फिर कहीं बल निर्णय कर तो ने हुन मन गलत कर सक दे हुन चल फिर मैं और जसन बुजुर्ग लोग आप लोग निर्णय करू बात कि कहीं बोले समाज ने गोट आए तो खूब लोग बुजुर्ग मन के पूछू बात तो हुन कारण में हुन मन कोनी समय में एकदम आप लोग

0: ओवर कॉन्फिडेंस बोलवा कि मैच सबले ज्यादा जाने और कोनी दूसर लोग ही जाना
1: नहीं जाना
0: असन बोले बोलुक सके कौन समय नहीं हुन बीमारी चो ग्रसित आदमी असन बोलुक सके एकदम निराश हो जाए दे कि कई चीज उनके बिल्कुल याद ही नहीं रहे और असन हो दे कि आप लोग साफ सफाई पहना ओढ़ा उनके बल ध्यान दे उक नहीं सके अंचल फिर आप लोग टट्टी पेशाब ये चुन बोले ध्यान दे तो उनकी मुश्किल पड़ुआ उनचो एक आदत आए उनचल फिर मैं सांगे से कि जैसन आपने आप दूसर लोग दखवा कि उनके काय काय दखा दे सी तो उनने जैसन खाना खाए दे तो उन खाना तो मुँह ने संगाए दे उनके अंदर खाना के गिल तो उनने उनके तकलीफ हो दे तो उन जो बोले एक आदत उन बीमारी लोग के पड़े दे उनचल फिर कहाँ है बोले घूम तो फिर तो रहा हूं बोल तकलीफ हो दे और फिर आँख ही बोल कमजोर पड़ुआ है तो ठीक से दखुक बोल नहीं सके और कोनी भाग ने ज्यादा ही मस्तिष्क भाग ने ज्यादा कहीं उन भाग के असर कर लीस तो कोनी समय लकवा बल मारुक सके एक तरफ जैसन गोटोक आट चो हाथ गोटोक पाए लकवा बल मारुक सके गोटोक अड़ंग चो लकवा बोलो उनचो फिर कौन कौन समय ने झटका बोला ऐसे जैसे एक मिर्गी बीमारी जो झटके हुआ है उन बोले उग सके तो ये प्रकार जो ये कहे तो लक्षण मन में सांग ले से
1: ये अल्जीमर रोग बोल सत ये जो
0: हाँ अल्जीमर
1: हाँ तो इधर ये पूछा है कि ये जो जन रोकथाम का जी बोलो ये चले काय काय उपाय कर लो ने ये रोग ले बाचुक ले सकूं
0: हाँ काजे रोकथाम रोकथाम का जैसा ना है कि सबले आगे आमी दखवा कि हुन जो मस्तिष्क ने कौन भाग ने हुन असर कर ली से तो एक सिटी स्कैन नाव चो है से मशीन उनने हुन जो सिर जो एक्सरे धर लो ने मस्तिष्क ने एक वेंट्रिकल नाव चो एक भाग रहे से हुन जो साइज एकदम बढ़न रहे से और उन मस्तिष्क से जो भाग आए जहाँ उनके कारण में एकदम सिकुड़न जाए दे उन भाग तो उन सिटी स्कैन मशीन ने एक्सरे खींच लो उन पता चले दे तो उन पता चल ली बोल लो ने उनके इलाज असन आए कि अस्पताल भर्ती करुक पड़ गए अगर कम आए तो उन दवाई ने ठीक हो दे नहीं तो फिर उनको ऑपरेशन करुक पड़े दे बड़े बड़े अस्पताल ने हुआ है जैसे न्यूरोसर्जन बोलवा उन डॉक्टर मने कि ऑपरेशन करुक सको आरु आम के उन बुजुर्ग आदमी संगे असन बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार संगा तो रहे ताकि हुन बोले आप लोग एकदम हीन भावना नहीं सोचे कि आम च संगे सब दोस्ताना व्यवहार कर सो और मैं अच्छा हो सके
1: बोलन कई कई खार हम देखू से कि लोग मन कहीं असन व्यवहार कर लो ने उनके खिजू बोले आए थे
0: हाँ,
1: कि दख उक नहीं सके कपड़ा के जसन संभाल उक नहीं सके
0: हाँ,
1: तो लोग मन खींच सोत कि कपड़ा बोला अच्छा फिर दुख नहीं जाने बोले तो उस बेरा हुन मन के फिदान देते रहे नहीं तो उनके खींच तो नए धीरे समझाते रहे
0: समझाते रहे बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार करते रहे
1: और कहीं जसन की खान पान ने बोल कहीं ध्यान देख पड़े दे
0: हाँ खान पान ने तो ध्यान देख पड़े दे जसन नहीं खाए तो आम के ध्यान देख पड़ुआ फिर उन प्रकार चो रोग ग्रसित बीमारी आदमी तो असन आप लोग मन ने कुछ करू की सको तो आम किसे ध्यान देख पड़ा है कि हुन अच्छा खान पान ठीक रहो नहीं जल हुन आप लोग समझदारी ने आगे ले करे दे तो हुन अच्छा है ये सब कर पड़ा है और बीमारी जसन कोनी समय झटका है दे तो हुन चो बचाव काजे गोटो क्लोरोप्रोमाजीन नाम चो एक दवाई हुआ है गोली उनके 50 मिलीग्राम दिन में 3 बार उनके क्वालन बोले बीच बीच में झटका नहीं है और नहीं तो फिर एकदम ज्यादा होलो ने 100 मिलीग्राम उनके इंजेक्शन लगा तो रहा है और
1: बोलो यही है कि आम के असन कहीं लक्षण दिखा दिलो ने सब ले आगे तो अस्पताल ने तो रहे
0: अस्पताल ने तो
1: अस्पताल ने ची जसन जसन वो आठमन सांग दे उन्हीं हिसाब ने करते रहे अस्पताल नहीं लोन तो इलाज और गोटक और पूछे इसमें कि ये रोग हो तो पहल काय काय तीज के ध्यान दिलो ने ये रोग नहीं होए दे
0: हाँ हो तो पहल ये है कि जसन आप जो आप लोग सिर के बचा तो रहे कहीं इंच कहीं पाव नहीं जल फिर कहीं जसन नशा चीज ले बाज तो

0: प्राय उनचल फिर कहीं बीमारी होलो ने उन मस्तिष्क चोड़ हुआ है उनके झटके इलाज करा तो रहा है ज्यादा होलो ने उन हम जो मस्तिष्क नुकसान को रुक सके तो ये सब कई कारण आए जो ये रोग ले बाचुक हो दे आजकल जैसे नशा पानी खूब कर सोत लोग मन उनचल बचत रहा है।
1: तो ये सफाई तीज मन के ध्यान दिलो ने सफाई गोठ मन के ध्यान दिलो ने आमी ये जन अल्जीमर रोग बोलते ये गोटक भयंकर रोग हो से और ये चले आमी बाजुक ले सकूं।
0: हाँ
1: और कहीं गोठ तुम संग चाह से।
0: हाँ और गोठ ये आए कि जसन बढ़ती उम्र ने ब्लड प्रेशर और शुगर ये खासकर हुआ है तो ये सब सीधा मस्तिष्क ने असर को रुक सके उन कारण ने बढ़ती उम्र ने 45-50 साल चलो उन पाठ थोड़े खान पान ने नमक कम कर पड़वा है और उन चले शक्कर चो मात्रा चाय कम कर तो ये सब कम करते गलो ने आम चे शरीर अच्छा रुक सके तो ब्लड प्रेशर और शुगर बीमारी ले हमें बचक सको और आगे जौन भाती आम चे मस्तिष्क ने कम असर करे दे
1: और ये रोग होक ले नहीं सके
0: और तो चांस नहीं रहे।
1: बल तो कुछ यही है कि आमी जैसा अच्छा आंसू बोलो ने अच्छा सु बोलते हम शरीर के ध्यान नहीं दिलो ने ये रोग मन हो ले सके और जो नन्हे ने बीमारी मन रहे से हनुमान चल बल बाज तो रहे और सबले पहले तो यही है कि जसन की हमें अच्छा सु बोलो ने आजकल गांव गांव ने अस्पताल मन होली से तो समय समय ने जसन उम्र बढ़ते जाए दे कहीं रोग नहीं होलन बोले जांच कराते रहते रहे डॉक्टर मन के दिखाते रहते रहे।
0: दिखाते रहते रहे
1: तो डॉक्टर एम आर कश्यप तुम्हें आज ही अल्जीमर रोग कसने हो से आर कसन एक ही गुच्छा तो उपाय करते रहे इस अपाय गोट के तुम संगला तो आले फिर कौन देना से भेंट घाट करवा राम राम
0: राम राम।
2: तो पन को हाँ। काय सुंदर एक गोट मन के सुन लो ने
3: हाँ।
2: अरे बीमारी कसन हो से एक गोट के बोले जान लो
3: हाँ। तो हम चो जातो समय बल होली तो जातो पूरे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो जम्मा सगा के और मैं पनकू
2: और मैं पुलू
3: हम दोनों करूं से राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव।

0: बेरा चो गोट तो होली मान तर आमचे लगे और बल कई गोट मनासे आले मन के बले सुनू
1: आले जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेटेन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम मायना दुमिद मिंदे ई लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटिन ब्लॉक इतके ओंडले कटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से घटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% ते कम मास 5% की सित्तोड़।
5: जीएसटी परिषद बुधवार के घोषणा कर ली से कि सरकार सिरमिट उपरे जीएसटी चो दर के कम कर ली से एबर ये दर 28% ले कम हुन 18% होली से कर ने कमी होले एबर घर अरु कारखाना असन बड़े प्रोजेक्ट बनातो ने सहायता हो दे असने संगमरमर अरु ट्रेवर्टिन ब्लॉक मन ने कर चो दर 12% ले कम हुन 5% होली से ग्रेनाइट ब्लॉक उपरे बले एबर 12% चो पलटा 5% जीएसटी लागे दे एचे संगे रेती चूना चो ईंटा अरु पखना जोड़तो काम उपरे बले कर चो दर 12% चो जगह 5% होली से।
0: हाँ फुले दीदी तो एक गोट मन तो होली तो दक मैं दखे से तो मोटरा बढ़िया से काई तो धरू नीली सीत काई
6: दके भी आसे काई हम चो बेड़ा खास चो बूता ने
0: हाँ। ये
6: था हमें कितरी बूटा मन के लगाऊं से आई कि नहीं
0: हाँ।
6: बोलते हिसाब दक बांगा लगाऊं से मीरी लगाऊं से
0: हाँ।
6: और कितरी बूटा मन के लगाऊं से
0: हाँ।
6: मैं बोलते रहे गीत गोविंद ने बोला उसने गोट मन होती तो अच्छा रहती बोलते रहे
0: सत्य पलिस दीदी
6: आलते भी ये गीत के बोले सुनू
0: आले आले सुनू

0: हाँ तो फुले दीदी कहे नगद गीत के तो सुन लू तो ए गीत चो गीत कुरिया मन रला मीना बघेल और हुंचो संगवारी मन
1: दक्का है सुंदर गीत रे ने कमाने गीती गीत रे
0: हाँ तो ए गीत तो होली मान तरे गीत ले आम चलक गोटो खल भी नाटक बला से
1: बोलो ने गीत संग सके नाटक बोले सुन तो रहे
0: हाँ
1: ये नाटक चो काय नाम है
0: ये नाटक चो नाम है अमरली ये थे एक लिखला सोत आर पी सोनी और एक आम चलक अमरा सोत नारायण सिंह बघेल कलाकार मनात
1: द कलाकार मंचो नाव के आम्ही पाछे सांगू आणि
0: हो आले आगे सुनू तो
1: आले।

0: हाय भगवान का एक सांगा से बेड़ा खड़ा चो बूता बोले हाथ पाए कुट कुटा दुखे से भाई बोले आसे कसम जाने
1: ए लचनी
0: देख ली ओहो ये बायले संगी बिल्कुल नहीं होए कितनी गाय तो घर रहती था
1: सुन सीस लचनी ए लचनी कौन बात मार ली हाँ
2: अरे काय आए हो काय खंगली से तुम के काय का धाक दिया सास और सन चिचिया ऐसा जसन की देवन एंड दूर का बोसलो से
0: धाक तू ही बोल तो ठेंगा मार लो संगोठे उन देसी उदल दायले में

0: किरेसे का आग जाऊरी जाली ये लक्ष्मी
1: काय
0: ये जाऊन दख तो कोण आहे जाली पण आतले नाही
1: हां
0: हाक देसे और फोरची की नाही
1: हां
0: ठक ठक ठक ठक बजाय से जाऊन दख तो कोण आहे जा
1: हो हो ये जाऊन दख
0: जा जा उडाऊन जा
1: ए मास्टर बाबू आत सुना सा आज बुदुज बाबा
2: मार लेते मी मय
1: मास्टर बाबू आमच गाव चो आ क्यों गेलास ए इतपे तो घरे रहूत क्यों गेला
0: भगवान दादाए दादाए तो मैं फांदा ने फोड़ ले जाए देता कोई बात लो कहीं दे मास्टर आए मुने
1: कसन हो कसन खटिया खा ले निकरे सास मास्टर बाबू ये उन रहो दखला दखला और जाते
0: गेला ने
1: गेला नहीं
0: का अच्छा होली गेला ये धरे लचनी
1: हाँ
0: सुन तो
1: कसन
0: मैं तुके गोटो गोट के सांगे से
1: कसन डर डर आनी गोठी आए सास
0: मास्टर बाबू के दखुनु के खूबे डर लागे से
1: काय काजे उनपन के काय काज तुम्ही डरे सास
0: तू ही बोले निर्णय भकवास मास्टर बाबू के चाल की मैं जाने मचो बाबा शांति रहो तोड़ तो लिख तो काजे नहीं हाथ पाए के बानुन भाती टांग देते रहो मने
1: आगे
0: हो और वो चामा उछलते तक पेड़ते रहो उसने कहीं के मचो बाबा मके रोजे रोजे शांति रहो तेबे मके सुर तपोर लिखा धक धक मचो हाथ पाए बने बल्कि थर थरे से है कि नहीं
1: सुना सास बुदुज बाबा अल ये सब गोट के छांडा नू
0: हाले
1: ए दाया मी कसन करवा
0: कसन
1: हाथ पी तो कितरो चीपा हो इसे कसन चीना के चलावा हो
0: तू ही उन गोट का जी फिकिर नी कर लचनी मैं कुली भूति करें दे तू ही बोले नहीं कुली भूति कर से आरु लेका के भैरा सौकार घर नहीं कम या दे वहां उनके आई कि नहीं तेबे तो होए दे
1: तुम चो गोट सत्य आए मानतर सौकार आम चो लेका के कम या राखे दे हो
0: का के नी राखे तानू ये रिलसनी मैं किटिक भैरा सौकार घर बाटे जाऊं दखिन था
1: जाऊं दखता जाले होती बोली
0: काय नी बोल जाए दे साइकिल बोल तू नी आए
1: के ओए हो आले हिंते बोल जा हाथ
0: हां जाए हिंते जाए दे मैं हां मैं ये बेंदे मानता
1: आले
0: हैं
1: झपकी याद खा गोठियान भाती
0: हां ऐसे जाऊं दखे तानु सौकार घरे सौकार बोले घरे आसी की कसन जाले ये सौकार बोलते सुजे सौकार जी आए हाले हाक दून दखे सौकार ए सौकार
3: कोण आहे रे
0: घरे आसी काही नो
3: ए सुकलो आहे कानू कसन इले सुकलो
0: आले जुवार सौकार
3: जुवार जुवार जुवार जा
0: ये देख आए सौकार मोय तुम चो लगे गोटो काम काजे इले से काय
3: काम काजे
0: हो
3: आले काय काम काजे सांग तो तुई
0: तुम ही तो जान आज बे सौकार आम चो काम के ये मैं तो अड़ाए सौकार आरु मचो लेका बोले अड़ाए आई कि नहीं
3: उन तो जाने मैं
0: ये मचो लेका के तुम चो घरे कमिया मान तो काजे मैं इले से काय सौकार हो आम के खूबे डंड हो सौकार आजकाली हो
3: दख सुनो रा सुकलू है
0: आले
3: कम्या धरतन तो धरें दे
0: हो अच्छा
3: मान तर खिंडी आगत ले ती करूं देवरा तुझे पिला के
0: हाँ तुम तो जय जय हो सौकार ये भी मुझे संगे जो बोल ले का सौकार में उनके और लेका फिर पाट पाट ये तेरे कहाँ गिर
4: बाबा
0: हमर लो सौकार
4: कोयला मन के उन बाट ने रहे ना
0: आ बाबू आ ये तो सौकार संगे भेट काट कर
4: जोहार सौकार
3: जुहार जुहार जुहार यही है तुझे बेटा ने
0: हो ये
3: बुद्धू बोलते रही जे
0: हो ही तो आए
3: हाँ बाबू बुद्धू
4: हो सौकार
3: आज तक तुझे जुन बाप आए नहीं
4: हाँ
3: आम चो घरे तुके कमिया मंडालो से दक सुनू रा
4: है हाँ सौकार सुनने
3: तो कमिया मंडा तो हिसाब का है एक बार सांगू नहीं तुके कसन
4: सांगा सौकार
0: जब मैं गोठो छिड़ूं रतु रहा कहिए बिची
3: दाग बाबू आम चो घरे तो जुगे कमिया बल नहीं आत तो गोठ की चीज आज
4: हाँ।
3: तो बेड़ा खड़ा संगे संगे गाय बल लाग बल तू दख प्लाय पड़े दे
4: हाँ सौकार तू मैं जसन बल ले मैं उसन करें
0: सौकार चिंता नहीं आयो तुम के
3: हाँ तो यही गोटा है सुकलो सुन लिस गाय हाँ तो बुधु दख ये आम चो घर तो तू दख लिस सफाई बाटे का दख जितरो बले बुता घर चो आसे उन सफाई बुता तू कर पूरे आऊ
4: कांदा खोड़े से खाऊ जाल भुकी आओ
1: यदि सुन बुद्धु मग डंडी किस लगले हमारा देश नहीं
4: काय
1: स्कूल लगले हमरा दे
4: स्कूल लगे
1: हाँ।
4: पास ही स्कूल हमरा दे की धक धक से सुन काय तू डांका ना के खाऊ भाई से मानतर बुधनी

0: किताब के दुकुन धुरुन भरी द किताब फाटे दे
1: काई नी करे बुदनी असनी दखिस का ई काय बीती मोनाय बोले
0: मय जाने से तू जो मन के बोले तू केवल पड़ुक भाई से ने
1: नाई बुदनी मैं फिर कसन पड़ुआ नो कर बीता
0: आले तू पड़ुआ साले बुदू मैं तू रोज सन सन बेरा पढ़ाए दे आए
1: हसन
0: ओ
1: आले तू चो पोड़ा तो बिचारा है जाले आल पोड़ा तेबे
2: ए बुदूज बाबा
3: ओए
2: आज तो खूब ही हरी खोए सास कसन मने मने हासे सास
3: काय के सांग सास तू ची गोटाई नु
2: दकन एक तो हरी हरी खोला सास
3: ओ दक तो एक हर सौ कर फिर धान और पैसा पठौ रही नहीं ये बे फेर रुपया पठौन दिलो से हर जगट नु आए
2: कितरो धर्मकारी आए सौकार ने
3: सत्य सत्य
2: आम जो बेटा अच्छा घरे कमिया मान लो
3: जय जय हो हुन छो ने
2: तेबे तो आम जो बेटा बुदू इतरो दिन ले कमिया मान लो से ये बुदूज बाबा केबे केबे बुदु के बल देखुक जहाज नहीं हो
3: जाएं दिलसनी जाएं दिकाय तू चो बेटा है जाले मचो बेटा बोल तो आय मचो बोल तो जीव उकरे से उनके दख तो काजे
2: मानतर केबे नी जहाज तेबे
3: जावा काय मानतर पीला लगे घन घन घन घन गेलो गेलो ने बोले हुंचो जीव बोल लुबु पुचु खोय दे घर बाटे ते ये दे हो हां हां
2: मानतर जहाज ची दखा
3: हां गोड दिन जाएं संगे जावा नी गोड दिन
2: आल जावा ते
3: हां
4: तुलो बेरा होली आज कसन एबले नी एनुनी काय स्कूल छुट्टी नी और इस्तेवे
0: नु है बाबा
4: ए अमर लिसनो नी
0: हो
4: कसन ती बेर कर लिसनो नी
0: स्कूल थाने खूब बे पढ़ाई होय से हुनी काजे गम खोली
5: देख बेटी गम तोर नवा है अपलो पुरखा पार्टी चुनाव के उजागर कर तो राय अच्छा ले पढ़
4: दक तू चाहती आम चु लेखी मके बोले डेंट क्लिच ने पढ़ाओ क्लिका बोले सिकाली ये नोनी आम चुका थी खूब बे अच्छा है आए काय
5: हो मके बल देखी पढ़ूक सिखाए से काय
4: सुन ली चेती दख तो ये बुद्धू ची बाबा है नी यही बल्ले चिट्ठी लिखुन मर पटालो से कौन थान ले पढ़ लो लिखलो जाले और अच्छा पढ़ून लिखुन भाती आम चुलो की चिट्ठी लिखलो से नाले हुन बल जन्म अपर रहे
5: हो।
4: ये गोट मन के दखुन सुन मके खूब बे हरिक लागली चेती
0: बाबा ए बाबा सुनसिस
4: काय है बेटी
0: बाबा मैं मोचो संगवारी लेखी मन घरे जाए से शहर वाटे रुवाए रेलगाड़ी बसुन जाए दे
4: अच्छा जाए
0: हो
4: और सुन ये गोट के नहीं तू चाय एक बार सांगुन देस
0: अले आया ए आया मैं शहर जाए से री बाबा के बोल पूछ ले से
4: चैती
5: ओय
4: ये देख

0: देखेंगे हैं।
1: हाँ।
0: ये चिट्ठी ने लिख ली से
1: हाँ।
0: बाबा तुम जो लिखी बुधनी
1: हाँ।
0: बड़े शहर ने
1: अच्छा।
0: रेलगाड़ी ने बसुन
1: हाँ।
0: मरली
2: मरली बुधनी मरली
3: ये भगवान कसे रोन मरली कसे रोली भगवान उतरे चगुर गेली कसे रोली रे बुधनी बचे
4: पड़े सर ये सौकार ये चिट्ठी काचुल कौन काचुल पड़ा ला चिट्ठी के
1: यही तो पढ़ते रहला
4: कौन सौकार
1: वो
4: तुम काय काज घात सा जी ता चिट्ठी तो और लिख लो रासे ये ता काय लिखला से ये मैं पढ़े सुना है
0: हाले बाबू
4: बुधनी चो संग चो लेकी लिखली से कि बुधनी उन शहर ले रेलगाड़ी ने बसुन बाती घर अमरली
0: अमरली
4: अमरली बोलते ठीक करते कि गागुन दे सु देखन
0: मैं खुद भी
1: दे मरली हूं
0: अमरली नो
5: मैं समझ ले मन चो गोट के है हुन लिखली से बे कि तुम चो ले कि बुधनी रेलगाड़ी ने बसुन भाती अच्छा अच्छा अमरली अमरली बोलते खन ओके छणुन भाती चिकुन दिलो मरली होली हुन ने
0: ये मरली
5: हुन ने

0: हाँ तो पन को
1: हाँ दीदी
0: दके नाटक के सुन लिस के
1: हाँ
0: छीक ते खन उमर लिखे मरली होली ने
1: हाँ
0: दके यही काजे खिन पढ़ा लिखा वाले होतर जरूरी है ने
1: सत्य वाली दीदी
0: चाहे उन सियान हो ना हरे पीला हो
1: हाँ
0: पीला दाल पढ़ ले तो आगे पोड़ुक नहीं लागे मान तो नहीं पढ़ लो के पोड़ुक लागू है
1: लागे से सत्य है
0: दक उन घर चला तो काजे हो ना हरे बेड़ा बुता कर तो काजे हो हुन था नौकत बोले अमी कसन डाल तो रहे काय सब आगे पढ़न रहते जान खोए थे ने
1: सत्य वाली
0: नाटक ने बोल कितरो नगद कोट के सांगला ने
1: हाँ हाँ
0: कि हमको पढ़ तो कितरो जरूरी हो से
1: हाँ
0: अरे नाटक के लिख लो लोग आर पी सोनी और एक हम चले गए अमराला नारायण सिंह बघेल
1: और
0: अरे था
1: नाटक
0: भागदर
1: जो
0: लोग
1: भागधर लो कलाकार मनात शीतल बाला जकारिया विजय लक्ष्मीदानी श्याम रथी बघेल नरेंद्र पाड़ी बलवीर सिंह कच्छ बोंगू राम नाग
0: इतर लोग था काम करूं रहो ने
1: हाँ
0: और आम के गोटो गोट बोले सांगला कि आम ही जसन पढ़ लो से गांव से लोग बोले आम के आगे बढ़ात रहे
1: बढ़ात
0: और
1: रहे
0: लोग के मले पढ़ा भाती सिखात रहे कसन
1: सत्य
0: बोले
1: है
0: दक बेड़ा बूता तो हम करूं से ने ये था कितरी जिनिस मन हम डालू से खत होली नहाले दवाई होली कितर डाल तो रहा है काय कर तो रहा है सफाई गोट के आम के जान तो खुबे जरूरी है
1: सत्य है फूलो दीदी तो ये देख नाटक तो होली हम ये सपाय सुन लो तो ये चले और बोले हम चलो गीत गीत मना से आले गीत के सुनू फिर उन चो गीत कुरिया मन चुनाव के सांगवा
0: आले।

0: हाँ तो फुल दीदी काय नगद गीत के तो ये भी आम्ही सुनलू
1: हो काय
0: ए गीत कुरिया मन चुनाव चितालीस
1: चिताले काय अल तुझ बोल सांगू देश ने
0: ए गीत चो गीत कुरिया मन रला लखेश्वर खुदराम और उनचो संगवारी मन
1: ये गीत तो हो ली मान तो दक्षिण इस समय बाद ली से ने
0: हाँ
1: नी बाचे बाबू जा तो समय हो ली मान तर तक मैं गोट गोट बोलते रहे ये भी पानी मारे से ने पानी मारता है आमके खिन ध्यान देते रहे कसम बोले कौन बढ़ जाओ आने उधर रह का एक छाता रेनकोट इस सब पाए के धरन रहते रहे
0: हाँ ये भी समय बरसा आए खेती बाड़ी चु समय आए आप लोग देह पाए के बल नंगत संगा तो रहा है और आप लोग काम बुताक बल नंगत कर तो रहा है कसन बल्लो ने की
1: आमी नंगत रले तो बेड़ा बुता बन नंगत है आएगी नहीं
0: हाँ सत्य बल्लिस फूलो दीदी और अभी एबे असन आए पढ़ाई लिखाई चो बेरा बलाए पीला मंचो देह पाए नंगत रल लिखा या स्कूल बल जाऊ खोए दे और कई बूता मन के बल कर रुक सक दे अरे द काम चो समय घड़ी बाट दख ले जा तो समय अवल
1: होए से काय मंत्र मैं और बोल बोलते रहे गटो जस सियान से जनात नहीं घर रुगत नहीं ये मन तो कहा नहीं जात मंत्र कहा नहीं जाऊं पे कहीं नहीं करूं बुलवात मंत्र दकमो के बोलते रहे आए कि सियान सज्जन मन के संज पे रखिन तेल फूल दे तो रहे उन मन बोले हाथे पाए काय सुंदर लगावत ने उन चले काय पाए हाथ बोले अच्छा रह दे और शीत बोले नहीं लागे
0: हाँ
1: है कि नहीं
0: हाँ असने पीला मन के जसन ध्यान दी उसे उसने आमचो सियान सज्जन मन के बल दक तो रहे
1: और उन मन के बासी भात नहाले बासी साग के बोले नहीं।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चुगांव। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम कुड़े फूल। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नीलूराम और साथियों के गाए भत्री लोकगीत।
3: आज यो देगला को

0: संगर लोक बोली डाक मारी देली अधिक गला सपुली सके कान की रस रस खाने चलो सके कान की रस रस खाने संगर लोक बोली डाक मारी देली अधिक गला सपुली सके कान की रस रस खाने चलो सके घनगी रस रस कनेरा
1: संगर लोक बोली डाक मारी देली अधिक

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुड़ई फूल। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे नीलू राम और साथियों के गाए भत्री लोकगीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: अब लीजिए सुनिए पिलामन का जगोट हल्बी बोली में। प्रस्तुति है उर्वर्षा पानीग्राही की।

पीला मन का जे गोट कार्यक्रम सुन तो सफाए पीला मन के मोचो बाटले खुबे खुबे मया और लाड। पीला मन तुम्ही दखा तुमचो काजे आमी रोजे दिना ज्ञान ध्यान चो गोट धरून येऊ। आजी मैं असने ची तुमचो काजे कहनी मन धरून इली से ए कहनी के तुम्ही सुना और नगद गोट मन के बले सीखा। आजी चो पहल कहनी आए बाघ और कोलिया। खुबे पहिल चो गोठ आए एक ठन झार ने एक जन बाघ रहते रहे। हुन रोजे दिना एक ना एक जन जनावर मन के मारुन खाते रहे। हुन झार चो सफाय जनावर मन परेशान होन गेला। काय काजे बल्ले रोजे दिना कोनी ना कोनी चो जीव के हुन बाघ धरुन खाते रहे। सफाय मिलुन मिसुन एक ठन विचार करला और बाघ लगे गला। सफाय जनावर मन हाथ जोड़ून बल्ला बाघ महाराज ए जंगल चो राजा तुम्ही रोजे दिना एक जन जनावर के हाक देऊन खासे तो बाकी जनावर मन चो जीव तुमचो काजे बाचे दे। ए गोट के सुनून हुन बाघ मान लो और रोजे एक जन जनावर के आप लगे आनून खादुक मुराला। असने ची खूबे दिन होली। एक दिन कोलिया चो पारी इली। हुन बाघ लगे जानून बुझुन बेरले अमरली। बाघ रिसे रिस बल्ला तू इतरो बेरले कहाँ रलिस। कोलिया बल्ला महाराज मैं तो येते रहे बाटे मोके और गोटो बाघ मिला। हुन आपन के जार चो राजा आए बलते रहे। हुन बाघ और रिस होली मके उन बाघ लगे तू ये बेची ने असने उन बाघ बल्ला। कोलिया उनके चुआ लगे ने लाउर बल्ला महाराज उन बाघ चुआ भितरे आसे। उन बाघ खाले नहीं आरुन दखला उनके आपलो महा दखा देला। बाघ बल्ला पक्की एता और दूसर बाघ आसे रिसे रिस उन चुआन भितरे डोगाउन दिला। रिसे रिस चुआ भितरे डोगाउन दिला। तो पीला मन ये कहानी के सुनू नाम के ये सीख मेरे से कि कोनी बले काम भूता के जोन आए तुम्हें सोचून समझून और चला कौन कर ले सफाई भूता तुमचो नगत हो दे। तो असने चे आमचो लगे आसे और एक ठन कहानी हुनाए तुमचो पक्की संगवारी चो गोट। तो खूबे आगर चो गोट है दुई जन पक्की संगवारी मन रला। हुन मन एक ठन झार बाटले हुन दूसर गांव बाटे जाते रला। हुन बाट फेर खूबे लापी रहे मातर दोनों संगवारी का मजार हसुन बुकलुन जाते रला। हुन मन एक गोट चो बाद मारला कि आमी दोनों संगवारी संगे रवा कितरो दंड होले बले आमी

अंके निछांडू। मातर जसने ची हुनमन झार ने मजीगता अमरला लाटा बुटा भीतर ले एक जन करिया भालू निकलला। डर काजे एक जन मीत संगवारी तो जीव बचातो काजे धुरते रुख ऊपरे चेगुन दिला। उनके आप लोग जीव चो चिंता रली और दूसर संगवारी के छांडून पराला। हुन दूसर संगवारी रुख ऊपरे चेगुक नहीं सकत रहे, मतर हुन समझदार रला। हुन सुनू रहे कि भालू मरला माने के नीचिए। हुन भूई ने धुरते सोन दिला और उघाय होला। असन लागली जसन हुन मरलो से। भालू उंचो लगे गला उनके सुंगला महा करला और कान रेटे काई तो बल्ला और हुन भालू गला।

ते सोन दिला और उघाय होला असन लागली जसन हुन मरलो से। भालू उंचो लगे गला उनके सुंगला महा करला और कान रेटे काई तो बल्ला और उन भालू गला।

0: ए खुबे परमामन रला गोटुक दिना उन परमामन आपलो चारा खोजूक निकरला। उन मन उड़ते उड़ते उड़ते बेड़ा भितरे उतरला। उठाए भूई ने दखला खुबे चाउर के कोनी पकाउन रला। उन परमामन चाउर के बेचुक मुराला माता ये तो पारदी चो चाल रला। उठाए आगत ले जाल के पकाउन रहे और उनचो ऊपरे चारा पकाउन रहे। जसने ची परमामन चारा बेचुक मुराला सफाई जाल ने अर्जुन बला। सफाई डरला मातर परमामन चो मुखिया बल्ला तुम्ही नी डरा आमी सफाई संगे मिसुन प्रयास कर ले पाचुक सकू। जसने मुखिया बल्ला सफाई संगे मिसुन ऊपरे उड़ला और सफाई जाल संगे उड़ला और उड़ते उड़ते अपन संगवारी मूसा लगे अमरला। मूसा तुरते जाल के काटला और सफाई परमामन नगद बाचला और आपलो उड़ला। तो पीलामन दखा ए कहानी ले आमके ए सिखुक मेरे से कि सफाई मिलून मिसून रले कोनी वाले दुख दंड के आमी पार करुक सकूं। तो पीलामन दखा असने चे और गोटो कहानी आसे बेंद्रा और मोंगर। एक ठन बड़े रुख रहे हुन रुख ने भिंद्रा पीला रहते रहे। हुन रोजे रुख चो सुआद सुआद पाक मन के खाए और आधो खालो पाक के और आधो खादलो पाक के पानी रेटेर मंगर के बले हुन दे। हुन मंगर संगे पाक खाऊन खाऊन उनचो पक्की संगवारी होली। उनमन पक्की संगवारी बनला। गोटोक दिन मंगर चो बायले बीती बनला ए हो भिंद्रा चो पाक इतरो सुवाद आसे चो कारजा कितरो सुवाद होए दे। मके चो कारजा के आनंदी आस नहीं उनचो बायले बल्ला। उन मगर फिर चिंता ने पड़ला मातर बायले बलु रहे हुनी का जे भिंद्रा के आप लोग पीटकुती बसाउन पानी भीतर ले नेते रहे। फिर बाटे मगर बल्ला मके माफी दे उन देसना संगवारी मैं तुम के मारुक ने से मचो बायले तुम चो कर्जा के मांगे से ना मचो बायले तुम चो कर्जा के मांगे से ना। बेंद्रा तो रला खूबे चलाक। उन दुरते बल्ला ओ हो ना तुम्ही पहिल कसन नी सांगलास मैं तो मचो कर्जा के रुखे संगावनी ली से। फेर मगर उनके बहड़ाला बेंद्रा झटाक ने रुख ने चेगला और बल्ला मचो मुरुख संगवारी कोचई कारजा देहले बाहर निकरुक सके काय। मगर फिर लाज के पायलो। तो पीलामन दखा एक कहानी ले आम के ए सिखु फिरे से कि कोनी बले काम के शांति ले विचार कर ले तुम्ही अड़नाप ले अड़नाप काम ले बले बचुक सकास। तो ए तो होली हमचो ज्ञान ध्यान चो गोट सीख कहानी मन। तो असने ची एक ठन तुमचो काजे मैं गीत सुनाए से ए गीत की सफाई लोग सुना
1: हाथ जोड़ो।

तो गीत बले तो सुन लू, तो जा तो समय बले होली, तो जा तो पूरे पिला मन का जे गोट कार्यक्रम सुन तो सफाए नानी नानी पिला मन के मच्छो बाटले खूबे खूबे मया और खूबे खूबे लाड़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पिलामन का जिगोट हल्बी बोली में, प्रस्तुति थी उर्वर्षा पानीग्राही की। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना

0: और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक

0: बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रूपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: आकाशवाणी

0: हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। लता मंगेशकर और तलत महमूद के युगल स्वर में लीजिए सुनिए शैलेंद्र का लिखा गीत। संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने। फिल्म का नाम है उसने कहा था।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम उवाट। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शासकीय योजनाओं की जानकारी। विषय है जैविक खेती मिशन। प्रस्तुति दीपिका ठाकुर की।
3: उवाट कार्यक्रम सुनतो सपाय गांवकारी दादा दीदी सियान सजन के जुहार। आमी रेडियो ने सरकार बाटले योजना मन सांगते रहुन से। आज भले आमी गोटोप उवाट धरुन इलुन से। छत्तीसगढ़ प्रदेश ने जैविक खेती मिशन चो क्रियान्वयन कार्य उवाट। छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग बाटले जैविक खेती नंगत ढंग ले करतो काजे सरकार चो सरसराले दिशा निर्देश आए। जैविक खेती काजे विकास खंड चो चयन, हर जिला ले एक नाई तो दुई विकास खंड मंचो चयन करतोर होय से। समूह जो चयन, गोटो क्लस्टर ने 50 हेक्टेयर क्षेत्र पर संगातोर आए, ताकि समूह जैविक प्रमाणीकरण काजे दिलो सहायता चो अलावा किसान मन के खर्चा करूक नी पड़ो। जैविक खेती काजे असन गांव पारा चो चुनाव करतोर आए, जहां खूबे संख्या ने पशु जनावर और जैविक खाद बनातो काजे संसाधन मिरो। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों खच्चो उपयोग कम मात्रा ने हो। समूह चो नक्शा खसरा चो संधारण करतोर होय से। परिवर्तन काल, आमचो परंपरागत खेती ले जैविक खेती ने बदलतो काजे 3 साल समय लागे से। ए समय के परिवर्तन काल बलुआत। बफर जोन, उसन तो सामान्य बेड़ा ले जैविक खेती कम ले कम 3 मीटर लापी रतो राय। बेड़ा ले पानी चो बहाव चो दिशा जैविक खेती बाट नी रतो राय। किसान मन चो समूह बनाऊन क्लस्टर चो बाउंड्री चो बाहर 3 मीटर चो नाली बनाऊन बफर जोन तैयार करुक लाय सकूं। जैविक किसान चो चुनाव और चयन।

खेती काजे लघु सीमांत और महिला किसान, अनुसूचित जाति जनजाति किसान मन के प्राथमिकता मिरो। जैविक खेती काजे चुनलो क्षेत्र और किसान समूह मंचो अनुमोदन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ले करातोर सुनिश्चित करतोर होए से। किसान समूह बनाऊन हुंचो पंजीयन करातोर होए से। बेसलाइन सर्वे चयन करलो क्षेत्र और किसान मंचो बेसलाइन सर्वे और दस्तावेजीकरण निर्धारण प्रपत्र ने पूरा करतोर होए से। आधारभूत जानकारी चयन करलो विकास खंड ने तैयार करलो क्लस्टर ने एतो किसान मंचो सपाय नाव गांव पता ठिकाना सपाय जानकारी तैयार करून दस्तावेज बनातोर आए। मैदानी अमलाचो चयन प्रशिक्षण और शैक्षणिक भ्रमण जिला स्तर और विकास खंड स्तर जैविक सेल काजे योजना चो मार्गदर्शन हिसाब ले नंगत लोग मंचो चयन करून और स्थानीय स्तर ने स्किल अपग्रेडेशन बल्लो ने सिक्तो काजे तकनीकी प्रशिक्षण सत्र चो आयोजन करतो राय और चयन करलो लोग के जैविक खेती मिशन चो काम के प्राथमिकता संगे दिलो समय में पूरा करतो काजे निर्देशित करतो राय। जैविक खेती मिशन चो क्रियान्वयन काजे 5 दिन चो तकनीकी प्रशिक्षण राज्य स्तर ने आयोजित करुआत जहां सबुचो एतो जरूरी है। नी इलो लोग के हुनमन चो अवैतनिक अवकाश मानतोर होए से। मैदानी लोक काजे राज्य ले बाहिर 10 दिन चो शैक्षणिक भ्रमण बुलातो काजे योजना आसे। किसान मंचो प्रशिक्षण जैविक खेती मिशन भीतरे चयन होलो किसान मन के जिला स्तर ने 2 दिन और राज्य स्तर ने 3 दिन चो तकनीकी प्रशिक्षण दिवात जहां किसान मन के जैविक खेती चो सप्पाय गोट बात सांगुआत। किसान मन काजे शैक्षणिक भ्रमण जैविक खेती काजे चयन होलो किसान और जैविक खेती मिशन चो लोग मन संगे राज्य ले बाहर प्रमाणित जैविक खेती करतोर परदेश जगह चो शैक्षणिक भ्रमण करातोर होए से। बल्लो ने किसान मन के जैविक खेती अपनातो काजे प्रेरित करतो राय और हुन मन चो तकनीकी ज्ञान बले बाड़ो। ये काम काजे एनजीओ मन चो सहायता धरुक लाय सको। सिखातो काजे बुलातो बेरा दखतोर सीखतो बेरा जैविक खेती तकनीकी सिखातो बेरा चो फोटो वीडियो तैयार करून सप्पाय किसान मन के देतोर आए। शैक्षणिक भ्रमण काजे सबू समूह दल ने लोग मंचो संख्या समान रहो। सप्पाय किसान मन के सीखतो काजे समान मौका मिरो। माटी जांच जैविक फसल प्रबंधन काजे चयन समूह चो हर बेड़ा माटी चो वैज्ञानिक विधि ले बीज बुनतो पहिल माटी नमूना धरून माटी चो जांच करातो जरूरी है और जांच चो पाचे जरूरी पोषक तत्व चो बलबपू काजे प्रबंधन करतो जरूरी है। जैविक खेती तकनीकी फसल प्रदर्शन चो आयोजन प्रदेश ने जैविक खेती के बढ़ावा देतो काजे जैविक खेती चो तकनीकी फसल प्रबंधन काजे धान और दार फसल मन काजे मापदंड निर्धारित आसे। जेठ और वर्षा शीत बेरा चो फसल ने फसल प्रदर्शन आगर ले आगर 0.4 हेक्टेयर गोटोक किसान आयोजित करतोर आए जहां कोनिबल प्रकार चो रासायनिक दवाई ओखत चो बिना संपूर्ण जैविक प्रबंधन ले आगर उपज धरतो उवाट के सांगुआत। जैविक फसल प्रबंधन धरतो काजे उवाट सुना। खेती चो तैयारी किसान चो बेड़ा जे चो 0.4 हेक्टेयर ले आगर नी आए उनके बीज बुनतो काजे और बेड़ा तैयार करतो काजे 1500 रुपए मिरुआ। बीज किसान मन जैविक खेती प्रदर्शन काजे जैविक उवाट ले उपज बीज प्रमाणित बीज और आपलो चो बीज के उपयोग करुक लाय सको। जीएम बीज चो उपयोग नी करतो राय। बीज चो प्रकार जैविक फसल प्रबंधन काजे सांगलो अनाज दार फसल तिलहन फसल चो बीज उपचार जैविक फसल प्रदर्शन काजे सांगलो अनाज दार फसल तिलहन फसल चो बीज उपचार करतो काजे स्यूडोमोनास माइकोराइजा ट्राइकोडर्मा वीर्डी आदि चो उपयोग करतो राय। हरी खाद जैविक धान फसल प्रदर्शन काजे हरा खाद बल्लो ने डारा पाना खाद चो उपयोग कर ले किसान मन के अनुदान बल्लो ने पैसा मिरुआए। जैविक उर्वरक किसान मन द्वारा जैविक फसल प्रदर्शन

0: ने राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, पीएसबी, पोटाश घोलक जीवाणु, केएमबी, जिंक घोलक जीवाणु जेएमबी और चूना, जिपस्म, बेनेटेनाइट उपयोग करतो राय। संगे संगे कृषक मन के पंचगव्य, बीजामृत और जीवामृत बनातो काजे 200 लीटर चो पीवीसी ड्रम घेंतो काजे आर्थिक सहायता मिलुआ है। पीवीसी ड्रम काजे आर्थिक सहायता योजना समयाने एक हार मिलुआ है। लाटा बूटा खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण काजे किसान मन के अम्बिडा वीडर और दूसर मिंजानी घसानी मशीन और 2 ले 3 साल में खुद ले मिंजानी करतोर होय से और ये जो आर्थिक सहायता मिलुआ है। हाथ ले मिंजानी कर ले योजना समयाबेरा एक हार पैसा मिले दे। जैविक फसल प्रदर्शन ने कोनी बल प्रकार चो रासायनिक खाद उपयोग नी करतो राय। जैविक कीट प्रबंधन, फसल प्रदर्शन ने कीड़ी ले बचाव काजे जैविक कीटनाशक और NPV ट्राइकोकार्ड, बेसिलस स्पीसीज, लाइट टैप, स्टिकी टैप और रसायन नीरलो समान उपयोग कर ले अनुदान मिरुआए। फसल चो चयन और जैविक बीज उत्पादन, जैविक खेती काजे असन फसल और किसम मन चो चयन करतो काजे किसान मन के सलाह देतो राय। जोन खातो काजे नंगत रहो और जे फसल चो जैविक बाजार ने खुबे मांग रहो। जसन बास चाउर, जवा फूल, विष्णु भोग, दूबराज, जीरा फूल, सरबती गेहूं, चना, मूंग, उड़ीद और तिलहन फसल। जैविक किसान मन जैविक उत्पादन काजे चुनलो फसल मन चो बीज चो मांग के धरून मांग हिसाब ले फसल चो जैविक बीज उत्पादन सरकारी कृषि जगाने और बीज निगम क्षेत्र ने करुक लाए सको। जैविक उर्वरक प्रबंधन, किसान मन के बेड़ा ने जैविक खाद उत्पादन नापेड, कंपोस्ट टंकी और डारा पाना कुआउन सड़ालो बनालो खाद, वर्मी कंपोस्ट टंकी बनातो काजे और जैविक खाद चो उत्पादन करतो काजे आर्थिक सहायता मिलुआ है। जैविक कीड़ी व्याधि औषधि चो निर्माण, जैविक खेती चो उद्देश्य खेती ने कम ले कम पैसा लगाऊन टिकाऊ उपज धरतो राय, माटी चो उपजन बजातो राय और किसान मन के खेती बाड़ी ने आमदनी करुक और आत्मनिर्भर बनतो काजे सिखातो राय। ऑन फार्म जैविक प्रबंधन, फार्मिंग सिस्टम अप्रोच के बढ़ावा देतो संगे जैविक खाद और जैविक कीटनाशक दवाई ओखत किसान खुद बनाउन उपयोग करुक लाय सकोत। असन उवाट किसान मन जानोत और सीखोत। अगर सिखातो काजे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ले सहायता धरुक लाय सकोत। कोनी बल स्थिति ने बाजार ले मिर्तो जिनिस के दवाई ओखत काजे नी घेंतो राय। बाजार व्यवस्था, किसान चो जैविक उत्पादन के बिक्री भांडरी काजे किसान चो गोटुक समूह बनातो राय जे जिला और प्रदेश भीतर और प्रदेश चो बाहरे बाजार होतो संभावना के खोजन भाती जैविक उत्पादन चो बिक्री भांडरी करुक लाय सकोत। जैविक किसान मंडई, जिला स्तर जैविक किसान मंडई चो मूर करून साल भीतरे ही करतो राय। किसान मंडई चो जरूरी तैयारी जसन साहित्य जैविक तकनीकी उपरे वीडियो CD दखातोर, पोस्टर पॉम्पलेट चिपकातोर बुता जरूर करतो रहे और संगे संगे कृषि विज्ञान केंद्र, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विज्ञान केंद्र चो खोजाकारी भाई मन संगे समूह बनाऊन जैविक किसान और वैज्ञानिक संगे गोट बात बसका सभा करतोर होय से। जैविक प्रमाणीकरण, जैविक खेती करतो काजे चयनित फसल मन के जैविक प्रमाणीकरण करतो जरूरी आए। सामूहिक जैविक प्रमाणीकरण काजे 3 साल काजे 10,000 चो प्रावधान योजना के मिसालो आसे जे के पहिल साल ने 3,000, दूसरे साल ने बल 3,000 और तीसरे साल ने 4,000 रुपया चो आर्थिक सहायता उपलब्ध करावा। प्रचार प्रसार, जैविक खेती मिशन चो सप्पाय बाट प्रचार प्रसार काजे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चो माध्यम ले प्रचार सुनिश्चित करतो राय। एक्सटेंशन रिफार्म योजना नाई तो काई दूसर योजना संगे गोट बात करून जैविक गांव ने जैविक खेती चो व्यवस्था ने फार्म स्कूल चो आयोजन करू लाय सको। जैविक प्रमाणीकरण काजे भारत सरकार चो राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम और PGS पद्धति चो सप्पाय स्तर चो जानकारी किसान मन के जरूर देतो राय। जैविक खेती संबंधी सप्पाय काम बुता चो कैलेंडर तैयार करून संचनालय के उपलब्ध करातोर आए। जैविक खेती काजे चुनलो किसान के 2 दिन चो किसान प्रशिक्षण प्रावधान आसे। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना चो प्रावधान अनुसार जैविक खेती काजे चुनलो 20-20 किसान समूह के 2 दिन चो प्रशिक्षण आयोजन करतो रहे। प्रशिक्षण चो आयोजन शासकीय आदर्श जैविक कृषि विज्ञान केंद्र चो प्रक्षेत्र क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चो प्रक्षेत्र और जैविक कृषक समूह चो जैविक प्रक्षेत्र ने करातो रहे। प्रशिक्षण चो खर्चा प्रावधान में सांगेन से 20 किसान मन के 2 दिवसीय प्रशिक्षण लॉजिंग और बोर्डिंग 150 रुपया हर किसान के देतो रहे। जेचो काजे खर्चा प्रावधान 6,000 तक आसे। किसान साहित्य स्टेशनरी और परिवहन करतोर जे में खर्चा चो प्रावधान 2,000 तक आसे। जैविक आदान केचुआ वर्मी कल्चर आदि चो विवरण करतो काजे जेचो खर्चा प्रावधान 3,000 तक आसे। किसान वैज्ञानिक रिसोर्स पर्सन चो भत्ता 250 रुपया गोटोक वैज्ञानिक के देतो जे में खर्चा चो प्रावधान 2,000 तक आसे। ये सब्बू चो टोटल होए से जे सब्बू चो टोटल खर्चा आए 13,000 रुपये। दादा दीदी मन आजी आमी जैविक खेती चो नंगत वाट के जान लू। तुम्ही बल असन वाट के धरा और नंगत कमानी करा। जुहार।
1: वाट कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शासकीय योजनाओं की जानकारी। विषय था जैविक खेती मिशन। प्रस्तुति थी दीपिका ठाकुर की। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे मेघनाथ पटनायक और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: अब लीजिए सुनिए परिचर्चा हल्बी बोली में। विषय है मानव अधिकार आज की आवश्यकता। प्रतिभागी हैं बलदेव मौर्य, जगन्नाथ बघेल, मंधन राम नाग। कार्यक्रम के संपादक हैं बलबीर सिंह कच्छ।
3: गांवकारी भाई बहन गोट बात कर तो काजे आज आमता ने बल्ले ने इलासे

0: चर्चा करतो काजे, आपला आणि विचार सांगतो काजे श्री बलदेव मौर्य आरु श्री जगन्नाथ बघेल आरु श्री मंधरराम नाग। तो जगन्नाथ बघेल सबले पहले मैं जानुक चाहे से कि ये मानव अधिकार बल्ले ने ये काय चीज होए से, कसन चीज होए से, लोग कसन ने एक जानुक सक दे।
1: अच्छा गोट के पूछ ले दादा, मानव अधिकार जो अर्थ है हम जो मान मर्यादा और मूलभूत नैतिक गुण, ये काय के हम जो जन्म ले प्राप्त

0: अधिकार बल्ले ने ये काय चीज होए से कसन चीज होए से लोग कसन ने एक जानुक सक दे।
1: अच्छा गोट के पूछ ले दादा, मानव अधिकार जो अर्थ है हम जो मान मर्यादा और मूलभूत नैतिक गुण ये काय के हम जो जन्म ले प्राप्त।

0: नावले मिरे से और स्वतंत्रता चो जो बंदिश इतिहास रुकावट आसे उन जो सब ले आमचल का है कि ऊपरे आसे आमचो जो मानवाधिकार
1: मानवाधिकार
0: और ये भी थी के जब पूरा विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध होते रहे उदल दाय का वाली की पूरा युद्ध होली खूब लोग मारा गया जैसा नागासाकी और हिरोशिमा में का तो बम गिराला तो उनके दोगुन बाती विश्व लोग गोट के संगे सोर होला 53 देश छे लोग सोर उन बाती मानवाधिकार चो गठन करला 10 दिसंबर 1948 के एक बनाला और 3 वर्ष का एक बनान रहो और मानवाधिकार जो सार्वजनिक सार्वभौमिक जो घोषणा तैयार करला
1: अच्छा
0: अरे ता 30 अनुच्छेद आसे और 1 लेकर 21 तक नागरिक और राजनीतिक अधिकार आसे और 22 लेकर 27 तक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार आसे और 28 ले 30 तक एक सामान्य अधिकार आसे नागरिक राजनीतिक अधिकार ने पहला अनुच्छेद है सब मनुष्य जन्म ले स्वतंत्र अधिकार और मर्यादा ले समानत उनचो विवेक बुद्धि आसे उनके एक दूसरे ले भाईचारा चो ले व्यवहार ले रतो रहे और उसनीची अनुच्छेद 3 ने प्रत्येक मनुष्य चो जीवना स्वाधीनता सुरक्षा चो अधिकार आसे और उसनीची फिराव रहे अनुच्छेद 4 कोकी दास्ता या गुलामी ने निसंगात रहे दास्ता और गुलामी संगात भी थी पूरी तरह ले बंद आसे और अनुच्छेद 5 ने कोकई क्रूर या अमानुक रूप से दंड नहीं देते बीती है सबके अपमानजनक व्यवहार वाल नहीं करते रहे कुकी बोले मनमाने ढंग से गिरफ्तार और नजर बंद नहीं करते करते
1: तो जसन की जगन्नाथ बघेल तुम इतलो सांगलास बोले ने आमचो जो माने जन्म धरे से ते बोले बोले का है कि ये संसार ने बोलू धरती ने जीव तो काजे पूरा अधिकार आसे बोलू बे आई कि नहीं अपन आमी तो गोट बात तो करवा आगे बोले मंत्र में बलदेव मोरे नानक पूछे से कि तुम चो बाटले ये जो मानव अधिकार चो हिसाब ने काय काय अधिकार बोले आमचो जीवना ने आसे बोलू बे आमचो लोग मन का जासे और उनके आम कसन धरुक लाई सकुआ
2: जोहार करे इसमें आज मानो अधिकार चो ऊपर में ये आसे आज ये हमन मन गांव पारा माटले पताला गांव से हमन कि मेन चीज है ये हम चो मानव अधिकार के जानतो का चे गांव दादा दादी मन खिंडिक नहीं जानो पढ़ लो लिख लो लोग बल नहीं जानो कसन बल ने सिर्फ इतले ही जानो कि हम जन्म धोरल से हमके सबके अधिकार आसे सब चीज मिलो मिलो असन मिलो बोलन बात नहीं कौन कौन क्षेत्र में काय अधिकार है कुछ संघ काय आए काय बात कर तो रहा है कहाँ जाऊन बात बस तो रहा है नहीं कुछ संघ उठिया तो रहा है अच्छा बात मेरे दे ये एबे तक के हम चो समाज में कोनी एबे उन चो दिमाग में असन
1: बसो
2: नहीं होली से आज हम मानो अधिकार दिवस के ऊपर में बोलो श्याम हर दुनिया में हर जगह अपलान अपलान आले हम चो भारत ने बोले आज करसोद भी अपलान अपलान चो क्षेत्र में लेकिन हमन इत चो हमन दुखू से ये हम ये कि हम सांगुन दिलों ने नहीं होए ये चीज के हम के मानव अधिकार चो हिसाब ने हमके गांव गांव ने बोले मन के सांगुक पड़े दे कि जो तुम चो अधिकार है तुम्हें जन्म धरला साहस ये चो ये जगह ये अधिकार है ये जगह ये अधिकार जब तक उनके सांगलो नहालो मन के समझ में नहीं है सीधा हुन मन बोलसो ये ना हुन ताने आसन आसन करसो हुन मन के दिला ना हम के बोले दे दे जो बस उतले अधिकार के जानो दूसर की दखुन बात हुन की मेरे से आले पढ़ला सोत लेकिन उनके बाद में ये काय मतलब आए हुनके हुन मन समझू नहीं सको मोचु कहने का मतलब सारा यही चीज आए आज हम जो बस्तर संभाग में मेन चीज आए ये मानव अधिकार जान तो काचे शिक्षा शिक्षा बोलो मैं कि भाई पढ़ाउन बात सरकार छाड़ून दे से कितलो पढ़ला ना बारहवीं पढ़ला पहले तो खिंडिक पढ़ते रहो घुनोत रहे बारहवीं पढ़ लेन बोले हुन मन नहीं जानो उन आप लोग अधिक हमको मालूम आ से कि हम बारहवीं पढ़ लू आवेदन लिखते रहो आवेदन लिखो नहीं जानो तुम फिर मानव अधिकार चुकाए मतलब बोली हम के सरकार बाटले बोले नहा लिए कि कसन बोलो ने जसन विधिक सेवा सांसद नहीं हुन टाइप चो गांव गांव ने हम चो अधिकार के सांगतो काचे विधिक सेवा का हिसाब से माध्यम में सांगतो रहे सी विधिक सेवा में हुन मनी कानून हिसाब के सांगु दे सो हुन ता नसन कर तो नो है हुन ता तीन आदि बोसन जा तो नो है ये असे ना ये सारी चीज बाकी और कोनी चीज की नहीं सांग सो ठीक है हुन मन बोले असन सांग तो बीती हुन मन चो काय भे ठीक है एक्सीडेंट होलो ने कहीं बोले होने तो सेफ होई देसन लेकिन ये सारी चीज के सांगतो रहने

0: ये ऐसा हो सरकार बांट ले कि जानकारी मिलो मन के।
1: तो ये तो अच्छा घोट के बोललास मोरे दादा मंथर मंथर राम जसन की तुम शिक्षा चो गोट बल्लास शिक्षित हो तो बहुत जरूरी आए बोलते मंथर राम नाग शिक्षा चो क्षेत्र बोले जुड़ू रोला काय सोजे पढ़ा लिखा होलोन ची काय की ये मानव अधिकार चो लाभ धरुक ला सक दे।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं पढ़े लिखे तो होलू जसन तसन बोले आमी पढ़लू लिखलू और नौकरी बल कर लूँ या जो बोले सेवा करूँ से भी, लेकिन नौकरी करते करते बोले आमी आप अधिकार बल जानुक नहीं होते रहे, पढ़ते समय बोला हम आमचो अधिकार जानुक नहीं होते रहे कि आम के काय हक आर अधिकार आम के धरतो राय और आम चो का जे हक अधिकार कहाँ कहाँ खुल ली से ये चीज के बोला हम नहीं जानते रहूँ। तो हक आर अधिकार के जानतो का जे आम के कई लोग चो पूरे कई समाज चो संगे आम के उठतोर बसतोर उन संग परिचर्चा करतोर और उताले आम की जानकारी मिलले ने तो आमी हकार अधिकार के जानुक हुए सी। जसन की आम चलक कई प्रकार के अधिकार आसी जसन की सांस्कृतिक राजनीतिक है सांस्कृतिक में आमी कहाँ बोले नाट द कातराए आम चो काई बोले खेल द कातराए जो बोले आए आमी स्वतंत्र रूप ले आम करुक लाए सकू ये तक कोची रोक टोक नहीं आए। और आमी एक गांव ले दूसर गांव ले एक जिला ले दूसरे जिला ने आमी खुले आम जाऊ पड़े से आम से जातर अधिकार आसे और ये संग संगे आम च अधिकार संग संगे जो है कानून बल जाम द्वारा से कानून और अधिकार एक दूसरे पूरक आत कि आम की जसन की आना जाना करूं से सड़क बाट आना जाना करूं से तो आम के समझ तरह कि आम के डेबरी हाथ बाटे अलग तरह तो ये आम जो नियम बदलने से ये आम जो जो है ना ये कानून चो दायरे में से लेकिन आम जो हक आते कि आम ये डेबरी हाथ बट जाऊं और डेबरी हाथ पे आप जाते जाते आम के उजात बट जा बोलते बिता को निशान दे आम जो हक आए डेबरी हाथ बट जाऊं तो असनी आम के शिक्षा ग्रहण करते काज बल अधिकार आस कोनी बल स्कूल में कोनी बल जाति पिला के आम तु ये जात चौत तू ये जात चौत तुम के हम स्कूल में भर्ती नहीं करूँ असन बीती बातें न आए स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर तो काज बल अधिकार आसे। तो जब तक आमी ये बारे में गहन अध्ययन नहीं करूँ और गांव गोली नाम एक प्रसार प्रसार नहीं करूँ तो आम चो गांव चो सियान सजन मन बायले पीला मन है ये सब चीज की जानुक नहीं हो ये कि आम के प्रसार प्रसार कर लेने आम हक अधिकार के बोले ये भी कहा कि आम चो हक अधिकार इतनी जानो कि आम जमीन चो पट्टा मेर ली से तो आम चो उन कब्जा है आम चे जगह है लेकिन आम के कसन हक आम के धरत रहा उन चीज की नहीं जान ला।
1: तो ये तो अच्छा गोट के सांगलास मंत्र में फिर जगन्नाथ बघेल मन लगे ऐसे जैसे इनकी परिभाषा बोले कई अधिकार मन के तुम्हें सांगलास मंत्र का है कि ये अधिकार मंचो जसन की लाभ धरतो बीती आए बोले कहीं आर्थिक उन्नति चो बोले अधिकार आसे कहाँ बोले हिंडा बोला कहाँ बोले रतो बस्तो अधिकार आसे समानता चो अधिकार आसे कहाँ बोले आप लोग विचार संगा तो अधिकार आसे मंत्र अब तक का है कि गांव चो जो भाई बहन आत जो अनपढ़ कारण ने आत कि अशिक्षा चो कारण ने आत बोले ने ये चो उतलो लाभ धरुक लाए नहीं सकतो जेचो कारण ने कहा है कि आमी बल्ले ने आमचो जो दशा है बोलू भी गरीबी हालत ने है कि नहीं। तो ये विचार तुम चो बाटले में जानू चाहे से
3: ये भी थी मानवाधिकार का गांव तक नहीं पहली ये कहा है कि सरकार बोले आप लोग जो पाठ्यक्रम में नहीं संगाली और आगे कहा है कि मानवाधिकार आम जो भारत देश ने बोले नहीं रहे ये भी थी भारत जो राष्ट्रपति मानवाधिकार जो गठन करते कल 27 दिसंबर 1993 में अध्यादेश जारी कर ली और 18 दिसंबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण विधेयक पारित हो ली और राष्ट्रपति जो स्वीकृत

0: ओलो पास है 8 जनवरी 1994 के अधिनियम बन ली। ये अधिनियम ने 43 धाराएं हजन 8 अध्याय के विभाजित कर संगाला। और धारा 3 अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चो गठन करला उता चो जो एक अध्यक्ष हुआ है, एक अध्यक्ष का है कि उच्चतम न्यायालय चो जो मुख्य न्यायमूर्ति रहे से और दूसरा एक सदस्य और रहे से जो उच्चतम न्यायालय चो न्यायमूर्ति रलो या ये भी आसे उन सदस्य बन सके से। और तीसरा में बल एक सदस्य रहते खूब बल है राज्य ने उच्च न्यायालय चो मुख्य न्यायाधीश आसे या मतलब रलो। और दूसरा सदस्य का है कि मानव अधिकार चो जो ज्ञान चो जानकारी रखते बिता उता सदस्य बन दे। और उनसे संघ संघ का बिता मन उनसे सदस्य रह दे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयुक्त अध्यक्ष महबूल उता सदस्य रह दे। ये भी दिखा एक 93 बोले कारण ने ज्यादा दिन तक नहीं बोले। उनसे बाद में कहा कि हर जिला नेबे तक बोले न्यायिक मानवाधिकार न्यायालय मतलब नहीं बन ली से उनके कारण ज्यादा प्रचार प्रसार बल नहीं हुए से। और कहा है कि दूसरा कहा है कि ये जो बीच बीच में परीक्षा बल होते हुआ है उन परीक्षा बल आम जो राज्य गांव स्थान में नहीं हुए उन जो परीक्षा कहाँ हुआ है कि रायपुर में हुआ है या ये कुछ हैदराबाद हुआ है न फिर विशाखापट्टनम हुआ है। आम जो लेखा मन पता ही नहीं है कि मानव अधिकार मतलब उनसे परीक्षा हुआ है बोलते उन्हीं का जे कहा ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ सर। अरे जो कहा है कि शोध बल होते हुआ है आम जो लेखा मन थे कुछ खूब आसत पढ़े लिखे जैसे 12वीं पढ़ लो विधा का विता मन उन संस्था का है कि सरकार आम चो लगे नियम रख सके से बल आम ही बल मतलब पढ़े लिखे लोग मन निशा उकल सकूं से उन्हीं का गाँव स्थान ने नहीं है उन मन का है कि आप लोग जो ज्ञान ले या जानकारी दबाव कारण ने मानव अधिकार के नहीं जान सके सोत। अगर अच्छा ले जसन राज्य मानव अधिकार बला से उता जो बल उसने गठन हुआ है जसन अध्यक्ष गोटक रह दे उन गोटक कहते उन बल मुख्य न्यायाधीश रह दे मतलब अध्यक्ष उच्च न्यायालय च मुख्य न्यायाधीश रह दे और एक सदस्य रह दे उच्च न्यायालय च मुख्य न्यायाधीश रह लो या मतलब आसे और फिर एक सदस्य रहते जिला न्यायालय चो जिला न्यायाधीश और दूसरे सदस्य रहते जो मानव अधिकार के बारे में अच्छा ले जानो।
1: हाँ ये तो अच्छा गोट के सांगलास है जो गठन कसन हुआ है कहाँ ले मोर होली ये सब चीज के सांगलास मंत्र का है कि बल्ले ने जुगे करुण प्रचार प्रसार चो कमी चो कारण
0: कभी गांव स्तर में
1: नहीं होले से मंत्र ये भी कहा कि जैसन गांव चो बोले पढ़े लिखे लेखा जैसन की आज ही आमी बसलू से आमी आम चो गांव चो स्तर ने आमी जानू कि सरकार बाटले बोले कितली योजना मन आम के बनने से आमी उन योजना चो लाभ धर तुका बोले डरू से है कि नहीं। तो मैं बलदेव मौर्य भाई संग पूछे से कि कहीं बोले सरकार जो नाम चो काज बनाए से तो आमी के डर लागे से उनके धर्तों का जे निर्भीक हों से हिचकिचाओं से नाले झिझक होए से तो ये चो काजे आम चो गांवकारी भाई बहन मन के उन मन कसन ने हिम्मत करुन बाती आगे ये उकलाय सक दे।
2: ये बे मैं सर्वाधिक समाज बतर जिला चो संरक्षक बले आए यही माध्यम में ये हम चो समाज बाट ले एक कार्यशाला चले से कार्यशाला में हम जो ये अधिकार मानव अधिकार बल हम तान जुड़ ली से सारा चीज कि हम के काय काय हम मन के सिखाते जा सोत समझाते जा सोत हम ही कौन आओ कसन आओ पहले अपने आप के तो जान लेते हुए मानव अधिकार के मालूम हो दे हम अपने आप के मालूम नहीं है हम कौन आओ ये मानव अधिकार के बारे में काय जाने दे। तो ये सारी चीज में समाज बांट ले बले अभी खूब प्रचार प्रसार चले से जल जंगल जमीन के बारे में जैसे कि अभी नाग दादा ने सांग लो सिर्फ पट्टा ही चो अधिकार की जानो पट्टा चो अधिकार और माए बाप जुगे जुगे बायले चो अधिकार इतने अधिकार के जानो ये मचो बायले आए ना ये मचो बाप है ये मचो पट्टा है कि नहीं उन चोला और का ही अधिकार की नहीं जानो गोटो खुंजे संगे संगे बोले देवी देवता बोले आसे उनके भूल को सो हुन बले हुन अधिकार चे दायरे में आए ये मचो देवा है कसन बले हुनी हिसाब ने हम चो समाज में सबसे ज्यादा ये अधिकार में जानतो काचे देवधामिया हमन जोन बले अधिकार के जानतो रहे देवधामी पकड़ू आओ

0: हुन चुनाल हमसे अधिकार के पता ही नहीं चले, लेकिन आजकल उनके बलि नहीं जान सो हम चो लोग मन। और आज जो मानवाधिकार जन पुस्तक में निकली से सारी चीज के ये केवल ये माहौल ने बोले नहीं जान सो, ये भी मानव अधिकार के एक बात में सांगे से देखा ठीक है अधिकार आसे हम ये बस्तर चो लोग ये अधिकार के पढ़े लिखे नहीं है, तभी तो हम चो लोग दूसरे देश दूसरे स्टेट में ना दूसरे जिला में जाओ उन्नी बस सोत न जाता। अब दूसरे जिला चेते उन बस सोत उनके मालूम होली, लेकिन ठीक है हम चो तांचो व्यवस्था खिंडी अलग है कानूनी हिसाब ने बोले ते बोले बोले हुनके डरा डोका करुण बाती है ताने बस सोत। ये भी एक और गोटक में गोट सांगे से हम चो लोग मन कोनी कोनी लोग बहुत अच्छे समझदारी बोल काम कर ला सो। ये भी जसन बोलने से की मैं थोड़ी देर पहले मैं गोटी गोटी आलू आगे हम चो लोग मन जंगल के चलाते रहो है कि नहीं, कोनी बोले सांगला भी पोड़कुली को तो नहीं जानो ते फारिस बीतावन सांगला को ये नहीं जला तो रहा है, ओ जंगल के जंगल जल लेने हम के नुकसान है हम जो जीवना खाओ ना नहीं चले। आज हुनमन के हुसन काचे सरकार बाट ले हुन महुआ के बिन तो काचे जाल बल जाए से नहीं जला सो सीधा सीधा पर्यावरण शुद्ध है से कि नहीं। अब हुनी ये शहर चो लोग मन देखा हम चो गाँव चो लोग मन तो फटाका के नहीं जानो, ये तने रात और दिन बारह महीना फटाका फूटे से कितलो प्रदूषण फैलासो, ये के बोलते बीता काज कोनी नहीं यार। हमन मन की ये चीज की सोचुन सोचुन हमें मन खिंडी खिंडी जान जल बड़ा इतलो गुस्सा है ऐसे कि हम बताओ नहीं सकूं। सबले ज्यादा पर्यावरण नारे और उनके बाद में मानव अधिकार के नी समझो सो बाहर चलो क्यों नहीं ताने आसो थुन मन, भले ही हम चो लोग पढ़ा लिखा नहीं आते लेकिन इतलो मालूम आसे हम की ये चीज करतोर नो है उनके अधिकार ने बोले आसे जाल बल नहीं करो थुनके ये चीज है।
1: हाँ ये तो अच्छा गोटा है कि आमचो ये जो अधिकार है बोलू बे आमचो संस्कृति ले मिलली से बाजू बे आए कि नहीं मिसली से परंपरा ले उन चलते है ऐसे
0: मैं हुनी का चीज मैं बोले सी कि हम जो मानव अधिकार देवी देवता संग जुड़ ली से हो एकदम, लेकिन हम जो लोग मन उनके ही नहीं आले हम कई बोले अधिकार के तन पे हुनता ने बेड़ा बनाता रहे कसन करते रहे आले ना को के पूछवा सिरहा लगे जा ना गुनिया लगे जा आले असन असन आए कहीं बोले कसन आए सांग के हुतन कर लो मैं हम जीव खोई दी कि नहीं होए हम तो मानव अधिकार चो हिस्सा है कहूं हां उनके जोड़ उन दखले ने एकदम फिट बैठ हुआ ये चीज है
1: बल्ले ने कहा कि

0: पूछवा सियान मन अल्ला सीढ़ा लगे जा ना गुनिया लगे जा आले असन असन आय कहीं बोले कसन आय सांग कहूं तन कर लो मैं हम जीव खोई दी कि नहीं होए हम तो मानव अधिकार चु हिस्सा है कहूं ढूंढ के जोड़ून दखले एकदम फिट बैठ हुआ ये चीज है
1: बल्ले ने कहा कि

0: चो तकलीफ नहीं हो, खेतीबाड़ी चो अच्छा उपजन हो, ये सब चो बोले गोटोक मानव अधिकार ने आसे उनचो लाभ आम के धरतोर बोले आम के खुद के हो ऐसे।
1: ये बे बोलू सरकारी सरकार वाटले कई योजना है, कई योजना हो सरकार वाटले तो आम्ही काय सरकारचे योजना की चो लाभ धरतो काजे आम्ही डरून से। जसन की खाद बीज येतरे आमचो आगे खाद येतो जाणून खाद बीज के आम्ही उठात काय बोल डरू नाही येचो बियाज बाडूगा ये आय तका बिया ये बीतिया असं होतील हुआ आहे। उन हक अधिकार का हम नीचे अंतरगुण आमच बेड़ा कड़ा बोल उतार उपजन उपजन बोलता ज्यादा नहीं होता रहे और आमच घर कुड़िया बोले किरकी आसन रहे हैं घर कुड़िया बोले चा बना के नहीं सकते तो उन घर कुड़िया अच्छा बना तो काजे बेड़ा खड़ा के अच्छा बना तो काजे आमच बैंक वाट लेवल गोट के योजना हो ऐसी उन बैंक तान योजना के बल धर तो काजे आम के डर है आमच अधिकार उतार हम बोलते बोलून चिंत बोलते काजे आम डर और उन अधिकार के आम के सबके जो है कर्जा देते बोले अधिकार आ से बैंक के और उन अधिकार के आम के धरतर वाला से और आगे जानू आम जो अमन मतलब गोटो फटा साइकिल बल नहीं रहे उन फटा साइकिल नहीं रहे हम जमीन ने हिंट दे रहे हिंट जाते रहो मानतर का है कि थोड़े थोड़े अब अधिकार बल जानुक बल हो से सिकुक बल हो से दकुन बल सिक को जानुक बल हो से और आम ही अभी धीरे धीरे आर्थिक उन्नति बांट ले आम जी घर कुड़िया बोल बैंक बांट ले आम सहायता मीरे से घर कुड़िया आचा बनाऊ से आम चो आना जाना आवागमन काज बोले फटफटी बोले धरू से साइकिल धरू से और किन्नी का सरकारी नौकरी ने आसू जाल बैंक बांट ले चार चक्का गाड़ी बोल धरू से आप लोग कपड़ा लता बोले और स्कूल पीला मन के स्कूल पटात काजे हम उन मन के बोले हम अच्छा सज धज बनान बाती स्कूल ने हम भर्ती कराऊ से क्योंकि हक के जानू से कि पीलावन के आगे पढ़ा लेने आम के काय लाभ मेरे दे आम के काय अधिकार के जान दे ये सारी चीज के जो है हम ये के धीरे धीरे सीख को है से और ये जब तक हम हक अधिकार के नहीं जानो हम जस अंचूस नहीं रो दे आरस नहीं रो खो दे तो हम आर्थिक उन्नति सामाजिक उन्नति और मैं गोटो के ये बात रखें से कि एक सामाजिक रोड़ा बोले ये जो है हक अधिकार जान तो काजे और हक धर तो काजे एक एक प्रकार का रोड़ा है। जसन की कुमार मन कुमारी बनाऊ है सोना सोनार चांद सोनारी बनाए से है और कई बोले जूता चप्पल बिकत बिता उन अलग जाति चे लोग बना दे तो हम जूता चप्पल बल बिकतो अधिकार आम लगा से और सोना बोले हम ही बिकत काजे हम सोनार नहीं होले बोले हम कोई भी ले आमच अधिकार ने आम बिक सकवा और हांडी कुंडरी बोले बना सकवा ये अब एक प्रकार समाज में एक व्यवस्था कर ला कि कुमार लोग हांडी बनाऊआ सोनार लोग सोना चांदी काम करुआत ये सारी चीज जो है ना सामाजिक व्यवस्था में आगे जो है रैली ये बोले एक प्रकार हक अधिकार का जो रोड़ा है तो एक बोले आम के गुचात्माती हक अधिकार के जान तो जरूरी हो
0: बल्ले ने कहा कि आप लोग खुद चो उन्नति बाढ़ती काजे बोले कहीं बोले धंधा पानी कर जीवना के अच्छा उच्च स्तर ने चला उखला तो जगन्नाथ बघेल भाई जसन की ये बे जसन जसन आमचो बोले बस्तर संभाग ने बोले ने सपाय समाज चो लोग मन गठन कर सोत आपलान समाज चो विकास काजे आपलान उन्नति बाढ़ती काजे तो मैं तुम जानू चाहे से कि समाज चो बोले कहीं ना कहीं तो सन कर्तव्य हो सके कि मानव अधिकार चो घोट के आप लोग समाज तक बोले अमरा होत मैं सपाय समाज चो लोग का जे तुम चो बाटले पूछू चाहे से कि उनमें कसन अमरा उख ला सक दे कसन प्रचार प्रसार कर सक दे
2: ये मानव अधिकार के सब समाज ये बीती के जसन समाज चो अगर विकास करते रहे या देश चो विकास करते रह जाले गोट की समाज चो लोग तक रुक ला नहीं हुए उनचे काज काय लागे दे कि हर समाज चो लोग के गोट के संग मिलुक पड़े दे ये भी काय अलग अलग समाज चो लेने ये भी सर ये दे ये दादा सांगते रहे

0: हांडे जो काम भले टाटी बड़ टाटी जो लकड़ी जो काम सब लोग करो, जो बांस कला सब लोग करो, नृत्य कराम सब लोग करो। अगर सब लोग सब काम के जे दिन करू के मर्यादा बोले के समाज में को गरीब ज्यादा नहीं रहते, कोई अमीर नहीं रहते। ये भी कहे कि व्यापार बोले हम जो समाज के लोग नहीं करे सो ज्यादा, ये भी दिखा हम के नहीं करते रहे बोलूम बाती। अब जब तक मतलब सब समाज के लोग हम व्यापार नहीं करवा, सब समाज के लोग हम चले पढ़ाई लिखाई नहीं करवा कपड़ा, ये भी कहा है कि जैसे पढ़े लिखे लोग कपड़ा लता कहा हुआ थी, पढ़े लिखे लोग अच्छा कपड़ा पहनते रहे, गाँव के लोग मन कहा हुआ थी कि कम कपड़ा पहन दे सो। अब कम कपड़ा पहन लो कहा जाए बस ने बल जाऊं से जो कम कपड़ा पहन लो, जो पुलिस का जच्चे फाइक बिताई लो, अच्छे फुलपेंट बिताई लो, सूट बिताई लो, बस तान का करे सो उनको गुच्छा में बहती उनका हम फुलपेंट भी तक बिचार उच्च अधिकार को वंचित हो लूता है। और जे जे महिला से आप लोग पीला के दौर में बता सब बसू रहे थे उनके उनकी बल सीट नहीं मिले से। और जे मतलब अच्छा कपड़ा लता जो पहन लो से और जो बस ने जाए से और उनके का कि जो महिला के सीट नहीं मिले लेकिन उन चुका सीट मिले थे। मतलब एक बच्चा जो शिशु को गोटक आते दर ले से गोटक आते दर ले कितने परेशान जा से असन चीज ने बोला का है कि कम पढ़े लिखे या कपड़ा लता के कारण ने बोला हम जो कहा कि अधिकार ले वंचित होते जाओ से। ये सब चीज मन के कहा कि हम जो समाज के लोग के मिलुम बाती प्रशिक्षण देव बाती गाँव गाँव बैठक करूम बाती असम बीती इनके सांगुक पढ़े दे। और दूसरा कहा है वैसे कि आप जो ये दादा सांग लो जैसे हम जो सामाजिक रूढ़ी पर रूढ़ी ने बोले जैसे समाज ने बोले ऐसे जैसे महिला मन के खूब जगह का है काम अधिकार ले वंचित कर ला से गाँव ने गाँव मन ने बोले जैसे चरु जात्रा था ने मनुख मन जाए सो गोटे कुकड़ा धरून जाए सो अरुतल चावर धरून जाए सो उनके चकना मंद पूरा पीवन बात है सो बाल मन को बोले नहीं उतर मास्क नहीं काट रहा है। मतलब उतर बोले उन मंच वंचित करे सो समाज मतलब धार्मिक अधिकार ले बोले उतर पूरा मनुख मंच पूरा अधिकार आसे पूरा मंद मास खाऊक ला सको लेकिन बाल चे उन अधिकार ले वंचित कर ला जाम समाज ने। ये भी मन के कहा कि गांव ने बैठक करूं बती अधिकार मन के कहा महिला मन के बल देते जाते रहे देवत मतलब सब समानता वाली बोले न दे। और मनुख मन कहा कि उनके मन के मास बात खाते रहे उन्हीं का जून मन का कर दे कि और आप लोग का जैसे भी चलो बोलते भले घरे खातो का खाई नहीं रहे भले उन मन का ज्यादा खात करते जाते उन्हीं का कहा कि ये सब चीज मन के कहा कि सब समाज के लोग बोलू सब धंधा के सब समाज के लोग करते और सब जैसे धार्मिकता ने बोली राजनीतिकता ने बोली उनके सब लोग महिला पुरुष सबके बराबर होले। जब तक समाज में ऊंच नीच रह दे या असमानता रह दे तो फिर हम कहे कि आधे लोग गरीब होते आधे लोग अमीर होते जो सोकार होता गेला बोले गरीब लोग के दबा जा दे। व्यापार बोले आधे समाज के लोग कर दे आधे समाज के लोग नहीं कर ला बोले आधे जे समाज के लोग अच्छा व्यापार नहीं कर ला बोले उन गरीब हो दे और जे समाज के लोग मन अच्छा व्यापार कर ला बोले उनमें अमीर हो दे। और ये भी दिखा है कि ये भी तारा जगता हुआ फिर उत्तम पास कहा है कि जो गरीब के लोग के खातों का नहीं मिल ली बोले उनमन के रिशोक मुरिया दे रिशोक मुरिया दे उनमन सौकार हो तो गरीब होते जाओ से बोलते और जे गण सौकार लोग बोले गरीब लोग के दम का अकला मुरिया आजत वंचित करू के मुरिया आजत उन्हीं का जाम जो समाज ने अच्छा ले बुद्धिजीवी लोग मन के तरह पढ़े लिखे लोग मन के उन बाती जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे आसे उन मन के ज्यादा तरह आम के बच्चे आम के दूसरा और गोटक चीज करते रहे आम के जैसन एता च लोग का है कि हम जैसन बस्तर च लोग बस्तर में चासू हम बस्तर में आसू गुना घर द्वार का है कि गोट की घर के बना लू तू ताल मतलब हमें चिमना आसू हम अच्छा सोकर आसू बोलू हमें च लोग एताल जाऊन बता हम दिल्ली या बम्बई या कलकत्ता गेलो उता मतलब 15 मंजिल 20 मंजिल जो घर आते हाँ। तब उन व्यक्ति जो मतलब दिमाग में ये है देखी नहीं मके बल असन घर बनाते रहा जब तक उनके मन में विचार नहीं है दे तब तक मतलब उन आप लोग काम करते का नहीं सोचे का नहीं तो फिर ये उन्हीं माहौल होते जाए दे कि नहीं आम के मतलब सवेरे मुर्गा बाजार जाते रहे या सेल्फी करते रहे ताड़ी बिकते रहे हम के ताड़ी बिकुन बद के भी सो करते हो लाइन या मतलब दूसरा का है कि मुर्गा बाजार जाओ बदाम के करनी हो सर जो मुर्गा बाजार रोज जाए से उन फिर का ना जो फिर बाल मुनि संग झगड़ा
1: उन तो आए वो
0: जसन का जाम के कहा है कि बाहर ही बोले था निकरू पड़े दे और ओक सकली बोले काम के विदेश बोल जाओ पड़े दे जब तक विदेश नहीं गेलू बोले हम के व्यापार काज नहीं करू सकू
1: बल्ले ने कहा कि
0: वैज्ञानिक जो आसे उन जो विचार आम चे लगनी है
1: हाँ हाँ तो बल्ले ने कहा कि आम के मानव जाति के अगर विकास करता रहे उच्च स्तर ने जीवना जीवता रहे जाले आम चो देश संगे संगे विदेश ने

0: जौन बाते हुताचो जौन बले धंधा पानी आए सब चीज के दखुक लाए पड़े दे अंदाज उक लाए पड़े दे तेबे का है कि आमचो मन ने बले बले कहीं काम कर तो भावना ये उकलाए सके दे आए कि नहीं तो देखा बले ने आमचो गांव चो समाज चो जितलो बले जाति बिरादी चो लोग आसो तुन मन सुन सोसो थी तो आमचो गोट ने किनिक बले उन मन चो जोन मन ने गोटो भावना विचार ये दे बदले दे तो आज इतलो अच्छा तुम्हें बलदेव मोरे दादा जगन्नाथ बघेल मंधराम नाग बले ने आपला विचार जो सांगलास ये रेडियो अमरली बल्ले कहीं ना कहीं बल्ले सार्थकता ये दे तो अल तुम खूब खूब जुआर
1: जुआर।
2: अभी आप सुन रहे थे हल्बी परिचर्चा, विषय था मानव अधिकार आज की आवश्यकता। प्रतिभागी थे बलदेव मौर्य, जगन्नाथ बघेल और मंधर राम नाग। संपादक थे बलबीर सिंह कच्छ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा। पहला गीत लीजिए सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी बर्मन का। फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। बैराग लीजिए, सुनिए इस फिल्म का गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत एसडी बर्मन का। फिल्म का नाम है आराधना और इस गीत को स्वर दिया है किशोर कुमार ने।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है जूली। आनंद बख्शी के शब्दों को सुरों में ढाला है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत अभी आप सुन रहे थे, फिल्म जूली का ये गीत। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साईरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometre long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of

0: Cricket, India were 124 in 13.3 overs against England in the first T20 international of the five-match series at the Riverside Ground in Chesterlow Street when reports last came in. Earlier, Indian skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bat first. Spinners Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi have returned to the playing 11 for India, while Vaibhav Suryavanshi has been kept on bench. The men in blue will look to bounce back from the shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।